मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 10वीं तिथि यानी 27 मई सन 2026। सुबह के 5:58 और 40 सेकंड हुए हैं। अब हमारे आज के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। FM बैंड 103.5 MHz पर हिंदी समाचार के बाद आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत और रोमानिया ने कल नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति की दूसरी बैठक की। इसमें दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के बारे में बातचीत की गई। दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण, क्षमता विकास और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर आपसी रक्षा सहयोग योजना को अंतिम रूप दिया। भारत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में चीन और पाकिस्तान के अवांछित संदर्भों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक के लिए अगले 6 महीने में ड्रोन रोधी प्रणाली स्थापित करेगी। राजस्थान में बीकानेर की सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कल ये घोषणा की।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: सरकार ने प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। ये वृद्धि राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें कल से लागू हो गई। अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी कुल क्षमता 1200 किलोवाट होगी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव होंगे। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम व्यू।

62.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब सुनते हैं आज का चिंतन। मनुष्य को सदा वर्तमान में जीना चाहिए। पिछली बातों को स्मरण करके या भविष्य के बारे में व्यर्थ चिंता करके मात्र समय और शक्ति की हानि होती है। इसीलिए हमें वर्तमान क्षण में जीना चाहिए और हर पल का सदुपयोग करना चाहिए। कर्म और प्रभु भक्ति का ध्यान करना चाहिए। यही मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य भी है। अभी आप सुन रहे थे चिंतन। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदना।

मनुष्य को आसक्ति से मुक्त होना चाहिए। व्यर्थ की मोह माया के कारण मानव अपने पद से भ्रमित हो जाता है, और जब हम शुद्ध अंतकरण से प्रभु भक्ति करते हैं तो परम पद की ओर अग्रसर होते हैं।

श्रोताओं, द्वारिकाधीश प्रभु श्री कृष्ण ने गीता में हमें कर्म करने का संदेश दिया है। इस धराधाम पर हर व्यक्ति एक खास प्रयोजन से जन्म लेता है। हर मनुष्य में कुछ अद्भुत शक्ति होती है, बस आवश्यकता है उसे पहचानने की, समझने की, और फिर उसी दिशा में अपने कर्म करें। तब आपको सफलता भी मिलेगी और जीवन भी शांत और संयमित होगा।

भगवान शिव सबके परमपिता हैं। आप अपनी संतान पर असीम करुणा और कृपा बरसाते हैं। आप ही दानी और उदार हैं, इसीलिए आपको आशुतोष और ओढ़नदानी भी कहते हैं भक्तजन। अकारण अनुग्रह करना, अपनी संतान से निश्चल प्रेम करना भोले बाबा का स्वभाव है। आपके समान कल्याणकारी और रक्षक इस धरा पर कोई नहीं है।

प्रभु के नाम का सुमिरण और नेक कर्म करने से ही इस भवसागर से हमारी नैया पार हो सकती है। जीवन में अनेक ऊंची नीची लहरें आती जाती रहती हैं, परंतु हमें अपने लक्ष्य से भ्रमित नहीं होना चाहिए, तभी हम अपना मानव होने का धर्म पूर्ण रूप से निभा सकते हैं।

शांति परम धर्म है। ये शांति उसी व्यक्ति को प्राप्त होती है जो संयमित रहते हुए, सभी विकारों से दूर रहते हुए अपने कर्म पर ध्यान लगाता है और मानव कल्याण के लिए सदा अग्रसर रहता है।

अभी आप सुन रहे थे ईश्वर स्तुति का कार्यक्रम वंदना। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान।

गंगा तट पर श्री राम तथा सीता को रात्रि विश्राम के लिए धरती पर सोते देख निषाद राज को बहुत दुख हुआ। उनके आहत मन को सांत्वना देने के उद्देश्य से रात भर लक्ष्मण ज्ञान वैराग्य की मीमांसा करते हुए भक्ति का उपदेश देते रहे। इस प्रकार श्री राम के गुणों की प्रशंसा करते हुए सवेरा हुआ। स्नान आदि से निवृत्त होकर श्री राम ने बड़ का दूध मंगाया और छोटे भाई सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। ये देख सुमंत्र की आंखों में आंसू उमड़ आए। महाराज दशरथ ने उन्हें यह कहकर श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ भेजा था कि वन दिखाकर गंगा स्नान करा वो उन्हें साथ अयोध्या लौटा लाएं। श्री राम को महाराज का यह संदेश सुनाकर सुमंत्र बालकों की भांति रो पड़े। राम ने अपने चरणों में गिरे सुमंत्र को उठाकर उन्हें धीरज बंधाते हुए कहा, हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों का अध्ययन मनन किया है। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म पालन का अवसर सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश होगा। प्रतिष्ठावान व्यक्ति के लिए अपयश तो करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाला होता है।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि की बातें।
1: किसान बनर भाइयों राम राम। भाइयों, कृषि की बात हम आज जिक्र करेंगे अरहर फसल की देखभाल इस बारे में। और फिलहाल भाइयों, कोई भी फसल हम लगाओ हैं, किस फसल की हम तैयारी करें हैं, और जो भी अपनी परंपरागत फसलें हैं या फिर इन्हों देखा है कि जो भी अपने दिनचर्या के काम हैं, भाई हर एक फसल में कितने न कितने पानी पात की ज़रूरत पड़े है। कहीं ना कहीं ये देखे हैं आके भाई पानी के साथ साथ कितने निराई है, गुड़ाई है, भाई कितने स्प्रे का काम है। तो ये दिनचर्या के अपने ऐसे काम हैं कि खेती बाड़ी जब तीन किसान भाई पूरा ध्यान दें और सोच समझ की, जब आजकल आधुनिक युग में और महंगाई का टाइम में कार्य नहीं करेगा तो फसल बाड़ी आज का दिन भी देखी जा है कि भाई थोड़ा बहुत घाटे का सौदा भी हो सके है। क्योंकि जब पुराना टाइम होया करता, पुराने बखत होया कर दे, तो भाई उस टाइम के ऊपर खेती बाड़ी में इतना खर्चा नहीं होया करता। और जब आजकल का आधुनिक युग में भाई चाहे हम तेल की डीजल की खपत लगा लिया हाँ, नए नए कृषि यंत्र साल दर साल निकलते जा हैं उनकी लगा लिया हाँ, कोई ट्रैक्टर हरो कल्टीवेटर रोटावेटर, भाई बहुत से खर्चे खेती बाड़ी में आजकल आधुनिक युग में होने लगे। पहले बिल्कुल साफ सुथरी शुद्ध अपनी खेती होया करती, बलदा का काम होया करता और भाई देसी खाद होया करती। लेकिन आज रासायनिक तत्वों का इतना युग चल रहा है कि चाहे भाई यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड जहरीली दवाएं दे मार चल रहा है। तो थोड़ा किसान भाई ने भाई टाइम न चल दिया इसकी नु देखे हैं कि समझदारी के साथ सूझबूझ के साथ खेती बाड़ी में जब खर्चे करेगा घटाओगा पूरा लेखा जोखा अपने के किसान भाई नु रखेगा कि भाई हमने कौन सी फसल ते कौन सा लाभ बढ़िया मिला है, हमारे पास खेत की सा है, खेत की तासीर किसी है, मिट्टी पानी की जांच साल दर साल बहुत ज़रूरी है। ऊपर ते फिर जो भी काम हम करा हाँ, कोई स्प्रे का काम करा हाँ या कुछ और करा हाँ, तो मौसम ने भी हमेशा ध्यान में रख के चल लें, अनसमझी में कोई ऐसा खर्चा ना ला बैठे कि भाई जिससे किसान भाई की आमदनी पर थोड़ी बहुत ठेस पड़े। चाहे वो अरहर फसल की बात आओ है या फिर कोई और हमने फसल लगा रखी उसकी बात आओ है, तो अरहर में तो यह देखा जाए कि भाई कोई ख़ास तौर पर इसी देखभाल तो है नहीं, बाकी भाई निराई गुड़ाई अपना टाइम पर पानी देना यो बहुत ज़रूरी है। और तो पछे भाई अपना फूलाओं हैं जब हल्की मट्टी हमने चढ़ानी पड़े है, थोड़ा ध्यान रखें कि भाई अपनी फसल गिर ना जावे। अरहर फसल बुढ़ाई वहाँ पर बोई जा है भाई जरा अपनी इनू देखें कि पानी नहीं खड़ा होता, वो जल निकास वाली भूमि हो हमारे पास, ये देखिए जहाँ आजकल सिंचाई प्रबंधन की बात आओ तो भाई आवश्यकता अनुसार रहना हम ज़्यादा पानी की जरूरत खास तौर पर तो होती नहीं है। फूल आने के टाइम पर हमने करीबन 50 से 60 दिन के बाद में और फलियाँ बढ़ते समय अगर नमी कम हो तो हल्की सिंचाई हमने करनी पड़िया करें। जल निकास खेत में भाई पानी जमा ना होता हो क्योंकि इसकी जड़ें सड़ जाए हैं। निराई गुड़ाई भी भाई अपना बहुत महत्व रखे है। पहली गुड़ाई बुआई के लगभग 30-35 दिन बाद में हमने करनी है और जब पौधे में फूल आने लग जाएँ तो उनके आसपास हल्की मट्टी हम जरूर चढ़ा दें। इस तरह तेज़ हवा या फिर सिंचाई के दौरान पौधे गिरते नहीं हैं। तो ये देखे हैं चाहे प्रमुख कीटें की अगर बात आओ है, रोग नियंत्रण की बात आओ है, तो फली छेदक है अपना, तो यो सबसे बड़ा नुकसान हो जाए। इस तरह इसके नियंत्रण के लिए भाई फूल आंधी हमने नीम का तेल है या फिर न्यू देखे हैं कि कीटनाशक का छिड़काव जो है करना पड़ेगा हमने। उकरा रोग जिसने हम कह दिए हैं, इसमें पौधे अचानक सूख जाए हैं और उसके बचाव के लिए भाई बुआई तो पहले बीज का उपचार हमने करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो बीज का उपचार है वो हरेक फसल में बहुत ज़रूरी हो है, आगे ही अपनी फसल जो है सुरक्षित रहे है। पोषक तत्वों की बात करी जाए तो बुआई के समय भाई खेत की तैयारी अच्छी करें, अगर देसी खाद है तो उसका हमने प्रयोग सही ढंग से करना है। मिट्टी की जांच के आधार पर भाई नाइट्रोजन फास्फोरस और आज अपनी जो पोटास है इनकी मात्रा का हमने सदुपयोग करना है। और सूझबूझ के साथ अगर खेती किसान भाई करे है, तकनीकी युग का ज्ञान हो गया है, थोड़े ही खर्चे कम करे है, तो चाहे वो हर एक फसल हो किसान भाई इसते लेखा जोखा रहा कि ठीक पैदावार ले लेगा। तो आज भाइयों कृषि की बातों में इतना ही। आपका दिन शुभ हो।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि की बातें, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप सुनेंगे समाचार, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
2: पूर्व आईपीएस अधिकारी इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। केन्द्रेण अनुप्रवेशेण अन्यैः कारणैः च जनसांख्यिकीय परिवर्तनस्य समाह्वानान् निवारणाय उच्चस्तरीय समित्याः निर्माणं विहितम्।

0: सामाजिकान्तर्जालीये पटले केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः ह्यः अवदत् यत् सर्वोच्च न्यायालयस्य पूर्वन्यायाधीशः प्रकाश प्रभाकर नावलेकरः समित्याः अध्यक्षः भविष्यति। जनगणना आयुक्तेन सह पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तवः, अर्थशास्त्री डॉक्टर समीका रवि इत्येषा च समित्याः सदस्यरूपेण नियुक्तः अस्ति। गृहमन्त्रालयस्य संयुक्त सचिवः एकः वैदेशीयः समित्यां सदस्य सचिवरूपेण कार्यं करिष्यति। गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन उक्तं यत् ड्रोन यन्त्रैः मादकद्रव्याणां शस्त्राणां च तस्करणं निवारयितुं अग्रिमेषु षण्मासेषु एव सर्वकारः ड्रोन अवरोधप्रणाल्याः नियोजनं प्रचालयिष्यति। राजस्थानस्य बीकानेर जनपदस्य सांचू सीमा पोस्ट इत्यत्र बीएसएफ सैनिकान् संबोधयन् सः अवदत् यत् यद्यपि सीमापारात् उद्भूताः विभीषिकाः महत्वपूर्णानि एव सन्ति, तथापि देशस्य अन्तः एतादृशानां विभीषिकानां साहाय्यं कुर्वताम् आन्तरिकतत्त्वानां विषयेऽपि समानं ध्यानं दातव्यम्।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: ऑस्ट्रेलिया देशस्य विदेश मंत्रिणा पेनी वोंगह इत्येषा ह्यः नवदिल्ल्यां प्रधानमंत्रिणा नरेंद्र मोदिना सह मिलितवती। श्रीमोदी रक्षा व्यापार प्रौद्योगिकी इत्यादिषु क्षेत्रेषु वर्धमानस्य भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक सामरिक सहभागित्वस्य विषयेपि आपूर्ति श्रृंखलायाः स्थितिस्थापकतायाः विषये च चर्चितवान्। प्रधानमंत्री अवदत् यत् भारत ऑस्ट्रेलिया देशौ स्वतंत्रं मुक्तं सुरक्षितं समृद्धं च हिंद प्रशांत क्षेत्रस्य कृते निरन्तरं कार्यं करिष्यतः। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः सुश्री वोंग इत्यनया सह 17वें विदेश मंत्रिणां फ्रेमवर्क संवादेत्यस्य सह अध्यक्षतां कृतवान्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् ते हिंद प्रशांत प्रदेशे पश्चिम एशियायाः स्थितिम् अन्येषु क्षेत्रीय वैश्विक बहुपक्षीय विषयेषु च मतानाम् आदान प्रदानं कृतवन्तः। भाजपेति दलाध्यक्षः नितिन नवीनः ह्यः नवदिल्ल्याः दलस्य मुख्यालये नो बीजेपी इति उपक्रमस्य अन्तर्गतं 12 देशानाम् अभियानप्रमुखैः सह वार्तालापम् अकरोत्। श्रीनवीनः ब्राजील, जर्मनी, इण्डोनेशिया, मलेशिया, मॉरिसस, न्यूजीलैंड, सेशेल्स, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम इत्यादीनां देशानां प्रतिनिधीनां स्वागतम् अकरोत्, तथा च भाजपेति दलस्य यात्रायाः विचारधारायाः संघटनात्मक शक्तेः लोकसेवायाः प्रतिबद्धतायाः च विषये अवधानं प्रदत्तवान्। केन्द्रीय वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूष गोयलः दृढविश्वासं प्रकटितवान् यत् भारत कनाडा आर्थिक सहभागित्वस्य अग्रिमः अध्यायः विश्वासेन प्रेरितः भविष्यति, येन द्वयोः राष्ट्रयोः संयुक्त समृद्धि भविष्यति। गतरात्रौ कनाडा देशस्य टोरेंटो नगरे राजनैतिक पुनरुत्थापनात् वाणिज्यिक वितरण पर्यन्तम् इति मंत्रिस्तरीय पूर्ण सम्मेलनस्य उद्घाटन सत्रं संबोधितवान् इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
3: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
2: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ विदेश मंत्रियों की 17वें द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। भारत और रोमानिया ने कल नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति की दूसरी बैठक की। इसमें दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के बारे में बातचीत की गई। दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण, क्षमता विकास और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर आपसी रक्षा सहयोग योजना को अंतिम रूप दिया। भारत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में चीन और पाकिस्तान के अवांछित संदर्भों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। बोर्ड ने कहा कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को अपनी मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी और इसकी कुल क्षमता 1200 किलोवाट होगी। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में शुरू होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashwani, the news read by V.C. Pramod. The centre has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. The committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Navlekar. Census Commissioner along with former IAS Officer Durga Shankar Mishra, former IPS

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम रूपरेखा।

आज रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है, जिसका अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।

दैनिक आयोजन युवा संसार का समय रहेगा शाम 5:30 पर। आज के विषय रहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू पुण्यतिथि, रक्तदान, शिक्षा का दान, महादान और साथ ही आप सुनेंगे करियर काउंसलिंग। दोपहर 1:10 पर आप सुनेंगे पत्रों पर आधारित कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। रात्रि 10:00 हम पेश करेंगे पत्रों पर आधारित कार्यक्रम मन चाहे गीत। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 7:30 पर। सुगम संगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे रात्रि 8:25 पर। कार्यक्रम एक फिल्म से का समय रहेगा रात्रि 9:15। कार्यक्रम कृषि जगत का समय रहेगा शाम 6:20। आज का विषय रहेगा अनाज में सही नमी बनाएं और साथ ही आप सुनेंगे भेंट वार्ता एक किसान से। शाम 7:00 हम आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम ग्रामीण संसार। विषय रहेगा पानी को व्यर्थ न बहाएं। साथ ही आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम बालक मंडली। दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेत खलिहान। विषय रहेगा टमाटर फसल की देखभाल।

दोपहर 12:30 पर आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम और दोपहर 2:45 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रूपरेखा। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम हमारी सेहत। आज आप सुनेंगे भेंटवार्ता हमारा मानसिक स्वास्थ्य। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर योगेंद्र।
1: श्रोताओं, आज एक गंभीर विषय पर बातचीत करेंगे, क्योंकि जो आज का युवा है, आज का युवा बहुत परिवर्तनशील है। आज के समय में उसके सामने कई प्रकार की समस्याएं भी आ रही है और इन समस्याओं में वो आगे बढ़ रहा है, क्योंकि समय टेक्नोलॉजी का आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आ गया है। और इस दौर में आज हमारा समाज जिस प्रकार से प्रगतिशील है, और उसमें चाहे वो किशोर हो चाहे युवा हो,

0: अपने आप को बदलाव के दौर में वो महसूस कर रहे हैं, जिसमें चाहे वो शारीरिक बदलाव तो होते ही हैं, वो कैसे समायोजन होता है, इसके साथ साथ में जो एक और पहलू है मानसिक रूप से उनके अंदर परिवर्तन आने का। तो इस विषय पर बातचीत करने के लिए, इस पहलू को छूने के लिए आज डॉक्टर योगेंद्र मलिक जी हमारे साथ हैं। आप मनोरोग विशेषज्ञ PGIMS रोहतक से आए हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: सर धन्यवाद। राम राम विनय जी, विनय भाई।
0: जी
1: आज का जो मुद्दा आपने उठाया वो
0: हाँ,
1: बहुत ज़रूरी है।
0: तो सबसे पहले इसमें ये बताइए कि किशोरावस्था को तो हम सब समझ रहे हैं भाई, शुरुआती चरण से आती है किशोरावस्था, लेकिन यूथ जो युवा है, युवा को भी, क्योंकि पिछले दिनों से पूरी जागरूकता है, एक नया कॉन्सेप्ट आया जेन जी का। जेन जी को हम कैसे अलग करें, यूथ है जेन जी है, कैसे अलग करके देख सकते हैं इन सबको?
1: हाँ सर, ये आपने बहुत ही ज़रूरी आज सवाल पूछा। यूथ का मतलब होता है युवा, और एक टर्म होती है एडोलोसेंट, उसको कहते हैं किशोरावस्था।
0: जी
1: बेसिकली क्या है कि हमारा जब जब हम 11 साल से और 20 साल के लोगों को लेते हैं तो हम उनको बोलते हैं किशोरावस्था।
0: ठीक है,
1: और युवा हम बेसिकली बोलते हैं आमतौर पे 15 से 27 साल के लोगों
0: ठीक
1: को।
0: है, हाँ
1: और जेनजी जो चीज़ है वो एक जनरेशन का नाम है सर,
0: ठीक है,
1: जनरेशन जेड बोलते हैं इसको,
0: हाँ
1: और जेड से ही एक शब्द आता है जूमर,
0: हाँ
1: ये भी इसको बोलते हैं।
0: हाँ
1: ये वो लोग हैं जो 1997 से लेके 2012 के बीच में पैदा हुए हैं।
0: ठीक है,
1: अगर हम इसको एकदम ऐसे साइंटिफिकली बोलें तो जो 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए उनको हम जेनजी बोलेंगे। आमतौर पे आप ये लगा लो कि जिनकी उम्र आज वही 15 से 30 साल के बीच है,
0: हाँ
1: ठीक है। अब ये जो इनको जेनजी और जनरेशन जेड क्यों कहा गया, इनको दूसरे शब्द में हम डिजिटल डिजिटल नेटिव भी बोलते हैं,
0: हाँ
1: मतलब जो डिजिटली युग में पैदा हुए, डिजिटल युग में, डिजिटल इंडिया में पैदा हुए।
0: ठीक
1: बेसिकली
0: है, हाँ
1: ये वो दौर था जब हमारे देश में स्मार्टफोन, इंटरनेट, यूट्यूब चैनल्स और सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा प्रभाव हुआ।
0: ठीक है,
1: तो इन ये जो जनरेशन है जेड, ये ज़्यादातर सोशल मीडिया, इंटरनेट और स्मार्टफोन से ही घिरी हुई है, और उसी के कारण इसमें बहुत सारी परिवर्तन आते हैं। और अगर हम एकदम सिंपल भाषा में कहें तो ये वो लोग हैं जो रियल को फोकस ना करके रील पे फोकस करते हैं।
0: जी
1: आपने
0: बिल्कुल,
1: बहुत आजकल सुना होगा कि लोग रील देखते रहते हैं जी, रील।
0: हाँ अलग
1: तो
0: अलग
1: ये वो
0: सोशल
1: लोग
0: मीडिया पे,
1: हैं
0: ठीक है
1: जो रियल को फोकस ना करके रील पे फोकस कर रही है, रियल
0: जी,
1: लाइफ बोलते हैं।
0: हाँ
1: और इनमें जो मेन समस्याएं हैं ना सर,
0: हाँ
1: वो हैं दिशाहीनता, और दूसरा दिखावे की संस्कृति, अपने आप को बहुत बड़ा दिखाना। मैं इनको सबको सर डिटेल में बताऊंगा।
0: जी,
1: और
0: लेकिन उससे पहले हम ये समझना चाहेंगे, आप
1: जी
0: दिशाहीनता की बात कर रहे हो, दिशाहीनता के साथ साथ में एक ऐसे कल्चर की बात कर रहे हो जिसमें शो ऑफ बहुत ज़्यादा हो रहा है, दिखावा बहुत ज़्यादा हो
1: जी
0: रहा
1: जी
0: है,
1: जी जी
0: लेकिन इसके साथ साथ में एक बात ये भी हो रही है कि भाई ऐसा क्यों होता जा रहा है, सवाल ये है सबसे पहले।
1: जी सर, ये बहुत बहुत बढ़िया सवाल आपने फिर से किया। जैसे मैंने बताया दिशाहीनता और दिखावे की संस्कृति, शो ऑफ जिसको आप बोल रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इन बच्चों में इसलिए आ रहा है इस जनरेशन में, क्योंकि इसके साथ साथ एक दूसरा पहलू भी है सर जो समझना ज़रूरी है। जैसे कि परिवार अलग हो रहे हैं, हर चीज़ हमारे को इमिडिएटली मिल रही है, उसी समय मिल रही है। जैसे सपोज करो आपको किसी रिश्तेदार के घर कोई घटना होगी या समाज में कोई ऐसी घटना होगी तो उसका पता लगने के लिए हमें टाइम लग जाता था पहले,
0: जी
1: अब टाइम नहीं लगता। अब क्या है, तुरंत हमें डिजिटल प्रभाव से या सोशल मीडिया से वो चीज़ पता लग जाती है। तो ये जो लोग हैं ये ज़्यादातर ना तो परिवार के साथ इतना घुल मिल पाते हैं, ना ही अपने दोस्तों के साथ घुल मिल पाते हैं। ये ज़्यादातर डिजिटल जो हमारे प्लेटफॉर्म है उन्हीं पे विश्वास करते हैं और उन्हीं से देख के सीखते हैं। तो इसीलिए एक और भी बात कही जाती है कि जो नई पीढ़ी है ना, हमने बड़े बुजुर्ग कहते हुए सुने होंगे कि भाई वो कहीं खोसे गए हैं,
0: हाँ
1: तो ये खोसे जाना ही दिशाहीनता है।
0: जी,
1: और दूसरी जो सर आपने बात कही कि दिखावा
0: हाँ
1: और जो शो ऑफ है, ये भी सर ये यूट्यूब से, सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा सीख रहे हैं, और बहुत ज़्यादा पेरेंट्स की जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करने के लिए ये तरह तरह की चीज़ें प्रयोग में लाते हैं, जिसके कारण इन बच्चों का जो भविष्य है और कल्याण है वो बहुत ज़्यादा मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से दबाव में है।
0: डॉक्टर साहब दो बातें स्पष्ट कर पा रहे हैं। पहली बात तो ये कि जो जेनरेशन जेड है, अब 97 यानी कि 1997 से लेके अब तक तो 29-30 साल तक तो युवा पीढ़ी आज की पूरी उसके जो आयु वर्ग है उसमें सम्मिलित हो रही है, और इसके साथ साथ में जनरेशन जेड का आप बता रहे हो कि वो आजकल एक दिखावे की दुनिया में जी रही है जो कि सोशल मीडिया का प्रयोग है या फिर डिजिटल मीडिया का प्रयोग है। लेकिन इसमें एक सवाल ये उभर के आ रहा है कि ऐसी कौन सी बात है कि जो आज का युवा है जिसको हम जनरेशन जेड बोल रहे हैं, जेन जी बोल रहे हैं, वो सोशल मीडिया से घिरा हुआ है, क्योंकि आप एक मनोरोग विशेषज्ञ हो तो इसको थोड़ा सा विश्लेषण करके बताइए कि दिमाग में ऐसा क्या केमिकल लोचा हो रहा है कि जिसकी वजह से वो बार बार रील को स्क्रॉल कर रहा है, सोशल मीडिया पे बार बार विजिट कर रहा है और अपनी दुनिया वहीं तक सीमित रख रहा है।
1: देखो सर, अगर इसको बिल्कुल एकदम रियल सेंस में समझें तो बात यह है कि हर आदमी की ना एक अपनी इमेजिनेशन पावर होती है।
0: हाँ।
1: वो सोचता है, कोई भी बच्चा है जैसे युवा है, वो सोचता है भाई मैं ये कर दूंगा समाज के लिए, वो कर दूंगा, तो उस तरीके से उसकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं और जो फैमिली की एक्सपेक्टेशन है, देखो हम ये बात हमने बिल्कुल नहीं बोलनी, सिर्फ युवा ही दिक्कत में नहीं है, जो फैमिली टूट रही है और फैमिली में जो असमानताएं आ रही हैं और जो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस हैं बच्चों के प्रति, जैसे सिंपल भाषा में बताऊं, किसी बच्चे के 99% नंबर आए 10th में या 12th में, तो उसके पेरेंट बहुत ज़्यादा अपने आप को उत्तेजित, बहुत ज़्यादा लक्की और बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा महसूस करते हैं समाज में, जबकि एक बच्चे के जिसके नंबर कम आ गए थोड़े से, उसके पेरेंट्स थोड़े छुपे छुपे से और बच्चों पे कटाक्ष, बार बार उनको ताने देना, इस तरीके की चीज़ें करते हैं।
0: ठीक है,
1: तो ये इस मुद्दे को इस तरीके से समझना जरूरी है कि फैमिली का भी बहुत ज़्यादा रोल है और जो उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, और दूसरा जो खुद से ही ये बच्चे इस तरीके से एडिक्ट हो रहे हैं क्योंकि इनको अपने आप को शो ऑफ करना है। जैसे आपने सुना होगा कि रील बनाने से भाई कुछ पैसे की भी, फाइनेंशियली भी पैसा मिल जाता है।
0: हाँ।
1: कोई हम कहीं कोई फोटोग्राफ वगैरह लेके या किसी चीज़ की अवेयरनेस फैलाने के लिए करते हैं तो वहाँ से भी मिल जाता है। दूसरा, आजकल आपने देखा है कि स्कूल का जो होमवर्क है या जो अपने डिपार्टमेंट्स के जो काम है वो भी ज़्यादातर हमारे ये इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से हो रहे हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा इनमें घुलते चले जाते हैं।
0: जी, आपने एडिक्शन की बात की है, सोशल मीडिया का एडिक्शन होने के पीछे जो मानसिक कारण है वो बताइए।
1: सर देखो, ऐसा है, इसमें जो मेन बात आती है वो आती है वनरेबिलिटी की। वनरेबिलिटी का मतलब होता है कि कौन कितना सेंसिटिव है। जैसे मान लो हमारे 10 बच्चे हैं या 10 युवा हैं, तो सभी को एडिक्शन नहीं होगा सर। एडिक्शन उसी को होगा जिसकी वनरेबिलिटी है या जिसमें कुछ ना कुछ सेंसिटिविटी है। जैसे मान लो किसी के घर में कोई समस्या है, कोई एग्जाम में फेल हो गया, या किसी को किसी प्रकार का फाइनेंशियल बर्डन आ गया, या घर में कोई और नशा करता है, उससे परेशानी के कारण वो सारा टाइम फोन देखता रहता है।
0: हाँ।
1: तो इस कारण से सर ये चीज़ें डेवलप होती हैं, ये एक दिन में नहीं होती, ये एक लंबा प्रोसेस है जिसके तहत ये एडिक्शन डेवलप होता है।
0: ये एडिक्शन डेवलप होता है, कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि रील स्क्रॉल करते रहते हैं, सोशल मीडिया पे अकाउंट बना के कुछ कुछ अलग अलग देखते रहते हैं घंटों घंटों तक, तो कई बार ऐसा होता है कि उसको दिमाग को खुशी मिलती है उससे, मन खुश रहता है। तो क्या इससे ऐसा है कि भाई जैसे एक एडिक्शन होता है, कोई भी एडिक्शन करने के बाद मन को खुशी होती है, उसकी हैबिट बन जाती है, तो क्या इस प्रकार की कोई मनोस्थिति होती है इसमें?
1: हाँ, ये भी है सर। देखो, कोई भी एडिक्शन है जो वो इसमें ये जो खुशी वाली बात है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, पर सोशल मीडिया के एडिक्शन में इतना इसका रोल नहीं है। ये जो दूसरे एडिक्शन है जैसे भाई शराब पीना, गांजा है, ठीक है, और दूसरा जैसे वीट वगैरह लोग लेते हैं, ठीक है, उसमें या जो नशे के इंजेक्शन लगा लेते हैं, उसमें ज़्यादा खुशी और टॉलरेंस डेवलप होने के ज़्यादा वो रहते हैं। सोशल मीडिया में ऐसा कोई खुशी वाला कोई ज़्यादा कंपोनेंट नहीं होता।
0: ठीक है, अब एक और इसका अलग पहलू है, क्योंकि आपने शुरू में बात की थी कि परिवार टूट रहे हैं, तो सिंगल फैमिली हो रही है। सिंगल फैमिली का मतलब है कि भाई एक परिवार में माता पिता और बच्चे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि परिवार का माहौल और परिस्थितियां कुछ ऐसी हो जाती है कि बच्चों को सफ़र करना पड़ता है उसमें, और बच्चों को अकेलापन भी हो जाता है, जो आपने मुद्दा उठाया, तो कई बार बच्चे तनाव भी हो जाते हैं जिससे उनमें दिशाहीनता आती है। इसका बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है?
1: हाँ सर, इसका जैसे कि परिवार में अगर तनाव है तो जाहिर सी बात है कि भाई बच्चे में भी तनाव आएगा,
0: हाँ
1: लेकिन बच्चा क्या है इतना मैच्योर नहीं होता,
0: हाँ
1: वो इतना उसका जो दिमाग है वो इतना विकसित नहीं हुआ होता कि वो हर चीज़ को सीख सके।
0: बच्चे को हम जेंजी से भी ले सकते हैं जो
1: हाँ
0: 17 की
1: जेंजी,
0: उम्र
1: तो
0: की,
1: हाँ
0: 20 की उम्र में है।
1: जी, तो उनका जो है उनका पर्सनालिटी जो होती है बच्चों की, स्वभाव जो होता है वो अलग तरीके का होता है, जैसे मैंने बताया मैच्योर नहीं होता भाई, वो
0: हाँ
1: पूरी तरह से विकसित नहीं होता, तो
0: हाँ
1: वो कई बार ऐसा सोच जाते हैं अपनी बात को बताने से फैमिली से डरते हैं कि भाई फैमिली पहले से ही तनाव में है,
0: हाँ
1: हम बताएंगे तो और ज़्यादा तनाव में हो जाएगी,
0: हाँ
1: तो वो किसी का सहारा लेते हैं,
0: ठीक
1: जैसे
0: है,
1: भाई किसी अपने दोस्त से पूछ लिया या किसी सीनियर से पूछ लिया या सोशल मीडिया से उन्होंने पढ़ लिया। ज़्यादातर लोग आजकल सोशल मीडिया से पढ़ रहे हैं और गूगल वगैरह के माध्यम से, एआई के जो ऐप्स हैं उनसे ये अपने आप से सवाल पूछ लेते हैं कि भाई इसका हमारे पे क्या प्रभाव पड़ेगा, जो कि सर नैतिक तौर पर थोड़ा ठीक नहीं है।
0: हाँ
1: और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम उदास होते हैं या हमें कोई ऐसे सो कॉल्ड डिप्रेशन की शिकायत होती है या उदासी की शिकायत होती है तो हम डरते हैं कि भाई लोग क्या कहेंगे,
0: ठीक है,
1: ठीक है, लोग हमारी अपेक्षा करेंगे, लोग हमारे को बुरा सोचेंगे, तो वो बता नहीं पाते और इसी डर के कारण वो इन मीडियाओं का सहारा लेते हैं। और इसी बीच कई बार उनको अगर सही दिशा निर्देश ना दिए जाएं या ठीक जो गाइड करने वाले लोग ना मिलें तो वो इसी कारण शराब, सिगरेट और इसके एडिक्शन में भी आ जाते हैं। लेकिन
0: हाँ
1: इनको जो हमने जो मेन बात है कि इन सब चीज़ों को हम या आम आदमी पहचानने कैसे,
0: ठीक है,
1: ये इम्पोर्टेंट बात है सर। तो
0: हाँ
1: जैसे कोई भी बच्चा है या यूथ है या जनरेशन जेड का कोई भी हमारा किशोर है या युवा है, तो हमारी जो परिवार के लोग हैं या जो उसके जो जहाँ वो काम करता है कार्य क्षेत्र पे, वहाँ जो उसके सहपाठी हैं या उसके दोस्त हैं, वो सबसे जरूरी सिर्फ चार बातों का ध्यान रखें। नंबर एक कि उनके स्वभाव में कोई बदलाव ना आ गया हो,
0: हाँ
1: जैसे भाई आपने बताया कि भाई वो बहुत ज़्यादा खुद से ना रहने लगे हों,
0: हाँ
1: बहुत ज़्यादा अपने आप को बड़ा ना दिखाने लगे हों,
0: हाँ
1: या इसके बिल्कुल उल्टा।
0: मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा
1: जी सर,
0: इसमें,
1: जी
0: क्योंकि इसमें एक बात ये आ जाती है कि अगर पारिवारिक परिस्थिति ऐसी है कि जिसमें तनाव है, तो अगर कोई 18-20 साल का युवा है, 25 तक का युवा है, वो कॉलेज गोइंग है, वो यूनिवर्सिटी में जाता है, कॉलेज में जाता है, वहाँ पे उसका एक ग्रुप होता है, सर्कल होता है,
1: जी सर
0: और वहाँ पे जाके क्योंकि फैमिली की तरफ से सहारा नहीं मिलता, तो वहाँ पे जाके वो कुछ ना कुछ अपने सर्कल में ढूंढता है, जिसका आपने पहले जिक्र किया
1: जी
0: है,
1: सर
0: तो फिर एक भटकाव की परिस्थिति हो जाती है। और कई बार अगर सर्कल भी ऐसे ही लोगों से भरा हुआ मिला कि जिससे जो डायरेक्शन है, दिशाहीन था, वो और ज़्यादा बढ़ जाए,
1: जी सर
0: तो फिर ये परिस्थिति विकट हो जाएगी।
1: जी सर तो इसमें इसमें विकेट हो जाती है। और दूसरा जो इसमें इम्पोर्टेंट जो जरूरी बात आती है
0: हाँ
1: उसको हम कई बार बोलते हैं सर ग्रुप प्रेशर
0: हाँ
1: या पीयर प्रेशर, मतलब
0: ठीक है
1: साथियों का प्रेशर।
0: जी,
1: जैसे आपने बताया कि भाई कोई बच्चा उदास है,
0: हाँ
1: अब उसको हो सके कि उसको अगर अच्छे साथी मिल जाएं, अच्छे उसको दिशा निर्देश देने वाले मिल जाएं, तो वो यही कहेंगे कि भाई आप किसी प्रोफेशनल से हेल्प ले लो
0: ठीक
1: या
0: है
1: भाई आप गेम खेल लो या भाई आप रेगुलर एक्सरसाइज कर लो।
0: जी,
1: लेकिन ज़्यादातर आमतौर पर ऐसे लोग नहीं मिल पाते और जनरली हमारा जो जनरेशन जेड का ग्रुप है उनमें लोग यही कह देते हैं कि यार इस तनाव से मुक्त करने के लिए तू एक सिगरेट पी ले
0: हाँ
1: या तू एक पैग ले ले
0: जी,
1: या चल आज गाड़ी तेजी से चलाती हैं,
0: हाँ स्पीड
1: तो
0: ड्राइविंग
1: हाँ
0: करते हैं,
1: स्पीड ड्राइविंग करते हैं,
0: हाँ
1: तो वो इस घेरे में फिर घुल जाते हैं और ये बार बार रिपीट होता रहता है।
0: जी,
1: आज कुछ गलत हुआ उसके कारण मनोदास हुआ, फिर आपके कल परसों आपने फिर कुछ और गलत कर दिया, सपोज करो आपने शराब पी ली या सिगरेट पी ली या आपने आप रात को रात भर सोए नहीं, आप गूगल पे या सोशल मीडिया पे इसका कोई तरीका ढूंढते रहे कि इस स्थिति से कैसे निकले जाए, तो ये
0: हाँ
1: रिपीटेशन जो है ना सर और जो प्रेशर है बच्चों का, आई मीन जो ग्रुप का, यही मेन जो है वो मानसिकता की तरफ लेके जाता है और भावनात्मक अकेलापन की तरफ लेके जाता है।
0: इमोशन की आपने बात की है, इमोशन से पहले एक और बात कुछ होना चाहेंगे। जो यूथ होता है, ये यूनिवर्सली माना जाता है कि यूथ के अंदर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती
1: जी
0: है,
1: जी
0: तो इसका मतलब वो एडवेंचरस भी सबसे ज़्यादा
1: जी
0: होते
1: जी
0: हैं।
1: जी
0: कोई भी बात हो तो अपने आप को कूल दिखाने के लिए किसी भी प्रकार के वो एडवेंचर को हाथ में ले लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की होता है।
1: जी
0: तो इसके पीछे क्या कोई गहरा मानसिक कारण होता है? क्योंकि कई बार उदाहरण के तौर पे ग्रुप है, सर्कल है, या फिर उसके साथी हैं और कोई लोग हैं, उसको कोई टास्क ऐसा दे देते हैं कि जो हो सकता है उसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर सकता हो, और वो एडवेंचर के लिए उसको कर देते हैं, कूल बनने के लिए, कूल दिखाने के लिए अपने आप को। तो मानसिक कारण क्या होते हैं ये?
1: हाँ सर, ये देखो इसके तो रिसर्च में भी जो शोध होते हैं उनमें भी

0: जी
1: यूथ में ये इम्पल्सिविटी या जो उतावलापन है
0: हाँ
1: ये बहुत ज्यादा है, और ये ज्यादातर इस तरीके से होता है जब हम किसी ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं या हमने बहुत सारी सुख सुविधाएं नहीं देखी होती, और हम जैसे आपने पहले बताया कि हम कॉलेज में पढ़ने चले जाते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं, वहाँ दूसरे लोगों को देखते हैं, तो वहाँ ये बहुत सारी चीजें जो है वो एक्टिवेट हो जाती हैं और इनको सहारा मिल जाता है।
0: उतावलापन क्या खुद को लोगों के सामने प्रस्तुत करना परोसना वो स्थिति है या अपने आप को शांत करने की ये परिस्थिति है?
1: नहीं सर, देखो अपने आप को शांत करने की तो नहीं है, ये भी एक टाइप का इम्पल्सिविटी जो है, उतावलापन है या चंचलता है, ये भी एक प्रकार का मानसिक रोग है, पर
0: जी
1: इतना कई बार ये जरूरी नहीं होता कि इसका इलाज कराना पड़े।
0: हाँ
1: पर जब ये रिस्क टेकिंग में इन्वॉल्व हो जाए,
0: हाँ
1: जैसे कि भाई रिस्क टेकिंग का मतलब होता है कि भाई जैसे शराब पीना सीख लिया, मैं थोड़ा सा आपको दोबारा से पिछली बात पे लेके जाऊंगा। मैंने आपको बताया था कि युवा में जो हमने मानसिक समस्याएं पहचाननी है, चाहे
0: हाँ
1: वो हमारे दोस्त हैं या जहां हम काम कर रहे हैं वो लोग हैं
0: जी
1: या परिवार के लोग हैं,
0: हाँ
1: एक तो बहुत जल्दी स्वभाव में चेंज आना
0: हाँ
1: कि भाई आज खुश था कल उदास नजर आने लग गया,
0: हाँ
1: या आज उदास था कल बहुत खुश हो गया।
0: हाँ
1: दूसरा रिश्तों में दिक्कत आना
0: हाँ
1: या रिश्तों में कड़वाहट आ जाना,
0: हाँ
1: जैसे भाई माता पिता की बात ना मानना,
0: ठीक है
1: या अपने वर्क प्लेस पे अपने सीनियर की बात ना मानना, या अपने पीयर ग्रुप में या जो ग्रुप है उनका दोस्तों का उसमें गाली गलौज कर
0: कई
1: देना,
0: बार ऐसा होता है कि चिड़चिड़ापन रहना
1: चिड़चिड़ापन आ जाना, तो
0: जी
1: ये जो है ये एक इम्पोर्टेंट कारण है। तीसरा है कि सडन एकदम से उसकी परफॉर्मेंस खराब हो जाना,
0: जी
1: जैसे स्कूल में ना आना, जो टास्क दी उसको पूरा ना करना, या वर्क प्लेस पे कोई काम दिया है उसको पूरा ना करना, और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है जो हमने कभी भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए, जो कि इसका रेड सिग्नल बोलते हैं जिसको
0: हाँ
1: हम बेसिकली, वो है अगर अचानक से आप युवा कोई या किशोर बच्चा जो हमारे घर में है वो ये कहने लग जाए मेरा मरने का मन है
0: हाँ
1: या मैं मरना चाहता हूं,
0: जी
1: चाहे बेशक से उसके चेहरे पे उदासी ना हो,
0: हाँ
1: चाहे बेशक से उस फेस है वो तनावपूर्ण ना हो,
0: हाँ
1: वो तनाव में भरा हुआ ना नजर आ रहा हो, पर वो
0: जी
1: ये कह रहा है कि मुझे मेरा मरने का मन है, ये
0: हाँ
1: जीवन ठीक नहीं है, ये
0: हाँ
1: क्या बकवास जिंदगी है, तो
0: हाँ
1: उस समय पे हमारा सबका फर्ज बनता है कि हम उसको जल्दी से जल्दी किसी मानसिक स्वास्थ्य में ले जाके उसकी जांच कराएं,
0: अलर्ट हो
1: ये
0: जाए।
1: अलर्ट हो जाएं,
0: हाँ
1: और ये ही चार चीजें हैं जिससे हमें युवा में पता लगता है।
0: जी
1: और जैसे मैं दोबारा दोहराऊंगा सर, जनरेशन जेड में यही ज्यादा समस्याएं हैं, जैसे चंचलता, नशा, अपराध की प्रवृत्ति, एकदम स्वभाव का चेंज हो जाना, वर्क प्लेस पे झगड़ा फसाद कर लेना, घर में लोगों के साथ रिश्ते में कड़ाड़ कर देना, ना कि जैसे अवसाद, डिप्रेशन या कोई पागलपन की बीमारी होना,
0: जी
1: ये इतना नहीं है।
0: जी तो थोड़ा संक्षेप में बताइए, इनका एक अच्छा बेहतर समाधान क्या हो सकता है?
1: हाँ सर, ये इनका सबसे अच्छा समाधान ये है कि सबसे पहले तो हम ये पहचाने कि ये बीमारी है या नहीं है, और इसको पहचानने के लिए फिर से वही परिवार के लोग और जो आसपास के लोग हैं वही इसको पहचान पाएंगे, जैसे मैंने चार चीजें बताई, अगर ऐसा कोई लगता है तो।
0: ठीक है
1: और
0: हाँ
1: अगर ऐसा कोई मिल जाता है तो जनरली जैसे हमारे पास हमारी ओपीडी में भी लोग आते हैं, और यूथ और जनरेशन जेड है वो ये कहती है कि जी हमें दवाई नहीं लेनी
0: जी
1: डॉक्टर साहब, हम दवाई नहीं लेना चाहते,
0: हाँ
1: तो इसमें सर हम दो कैटेगरी करते हैं
0: हाँ
1: कि सच में ही किसी को अगर डिप्रेशन, एंजाइटी या नशे में वो लिप्त है तो हम दवाई का सहारा लेते हैं और थेरेपी का भी सहारा लेते हैं।
0: जी
1: पर जैसे आपने बताया कि इसका समाधान कैसा किया जाए, इसका समाधान है सर कि हमें एक मॉडरेट लेवल पे, मतलब एक अच्छी खासी सी सुबह शाम एक्सरसाइज करनी चाहिए, व्यायाम जरूर करना चाहिए,
0: ठीक है
1: और व्यायाम ये नहीं है कि सर हम जिम में जाके ही व्यायाम करें,
0: जी
1: जैसे बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं जो कि मानसिक स्वास्थ्य को कंट्रोल में रखते हैं,
0: हाँ
1: उसमें जैसे माइंडफुलनेस की टेक्निक्स हैं,
0: हाँ
1: हमने घर में ही बैठ के ओम ओम करके एक जाप कर
0: मेडिटेशन
1: लिया,
0: करो
1: मेडिटेशन कर लिया,
0: हाँ
1: योगा कर लिया,
0: हाँ
1: ठीक है, या एक ही जगह बैठ के हमने अपना ध्यान केंद्रित कर लिया,
0: ठीक
1: एक
0: है
1: तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है सर।
0: हाँ
1: दूसरा ये है कि हम अपनी दिशा से ना भटकें और हम उन लोगों को अपने संपर्क में लेके आए जो कि एक सादगी भरी जीवन जीते हैं और जो ठीक सलाह देते हैं।
0: जी
1: तीसरा है सर कि हम सोशल मीडिया से दूर रहें और उनकी भ्रांतियों से दूर रहें, क्योंकि कई बार वहां जो सूचना होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, वो इतनी करेक्ट नहीं होती,
0: फैक्ट चेक करना जरूरी
1: फैक्ट
0: है
1: फैक्ट चेक करना जरूरी है,
0: ठीक
1: और
0: है।
1: उसके लिए हम एक योग्य आदमी से सहायता लें। और
0: और
1: एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये भी है कि हम

0: परिवार से जुड़े रहे
1: जी,
0: परिवार से कोई चीज ना छुपाए
1: हाँ।
0: या अपने दोस्तों से कोई चीज ना छुपाए,
1: और परिवार की भी ये जिम्मेदारी है कि वो भी लगातार अपने बच्चे को देखते रहें, उसमें क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, और उसको मॉनिटरिंग करते करते उसका साथ ना छोड़े।
0: हाँ, और जो मानसिक समस्या अगर आप महसूस करते हो तो उसको आप एक स्टिग्मा या उसको एक आप अपने आप में डरेना बताने से, उसको एक अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझें कि हमने इसको बताना है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूंगा, कोविड में हाँ। कोविड में लोग बहुत खुल खुल के आ रहे थे
1: जी।
0: कि जी हमें ये समस्या है, हमें ये समस्या है, तो मानसिक समस्याओं को वो खुलेआम बता रहे थे। तो यही मेरी युवा से और जनरेशन जेड से दरख्वास्त है और रिक्वेस्ट है कि वो अपनी समस्या को छुपाएं ना, सबको बताएं, चाहे वो परिवार को बताएं या साथी को बताएं या प्रोफेशनल हेल्प लें।
1: जी बिल्कुल। आखिरी सवाल, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चाहे हम जेन जी कहें, युवा कहें या किशोर कहें, उसके लिए एक चेतावनी है?
0: सर देखो, हर चीज के दो पहलू होते हैं। कई जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी भी है, कई जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भ्रमित भी करती है या उसका इतना फायदा नहीं होता।
1: ठीक है,
0: पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मेंटल हेल्थ को देखें तो जनरली हम आजकल ओपीडी में देख रहे हैं कि लोग अपनी समस्या को जैसे किसी भी एआई मोड पे बता देते हैं और एआई मोड कुछ ट्रीटमेंट बता देता है, फिर हम उसको फॉलो करते हैं।
1: जी,
0: तो मेरी यही दरख्वास्त है कि उससे बचें। आर्टिफिशियल और मानसिक स्वास्थ्य, ये सर एक अलग से बड़ा टॉपिक है।
1: जी, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ज्यादा निर्भरता ठीक नहीं है?
0: ठीक नहीं है, वो हमें भावनात्मक रूप से अकेलापन महसूस कराती है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे हम डिजिटली तो जुड़ जाते हैं
1: हाँ।
0: हम स्मार्टफोन से तो जुड़ जाते हैं
1: हाँ।
0: उससे तो हमारा बहुत लगाव हो जाता है, पर हम भावनात्मक इमोशनल रूप से अपने आप को डिटैच कर लेते हैं।
1: बिल्कुल जी। तो डॉक्टर योगेंद्र मलिक जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और आपने युवाओं के विषय में और उनके मानसिक स्वास्थ्य के विषय में आज के दौर में जो भी संदर्भ बनते हैं, इस विषय पर आपसे एक अच्छी बातचीत हुई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारी सेहत, आपने सुनी भेंटवार्ता हमारा मानसिक स्वास्थ्य, विशेषज्ञ थे डॉक्टर योगेंद्र। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुबह सवेरे।

कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है और साथ ही स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त हितेश का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज है 27 मई और आज है पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि। साथियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक प्रसिद्ध वकील और स्वतंत्रता सेनानी थे। उनकी माता का नाम स्वरूप रानी था और उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा इंग्लैंड के हैरो स्कूल और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पूरी की थी। आप जानते ही हैं, वे पेशे से वकील थे लेकिन देश की पुकार पर उन्होंने वकालत छोड़ दी थी। वो महात्मा गांधी से प्रेरित होकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कूदे थे। उन्होंने कई बार जेल की यात्राएं सही और स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व भी किया। उन्हें वर्ष 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था और 1964 तक वे प्रधानमंत्री रहे। आधुनिक भारत के निर्माण में उनका योगदान अविस्मरणीय है। उन्हें आधुनिक भारत का शिल्पकार भी कहा जाता है। उन्होंने देश के विकास के लिए पंचवर्षीय योजना भी शुरू की थी। शिक्षा के प्रसार के लिए उन्होंने IIT और एम्स जैसे प्रमुख संस्थानों को स्थापित किया था। उनकी विदेश नीति का मुख्य आधार गुटनिरपेक्ष आंदोलन और पंचशील के सिद्धांत थे। वे बच्चों के बेहद प्यारे थे और बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। इसीलिए 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में उनका जन्मदिन सेलिब्रेट किया जाता है। वे एक उत्कृष्ट लेखक भी थे, जिनकी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब है। आज ही के दिन 1964 में इस महान नेता का निधन हो गया था। उनके आदर्श, लोकतंत्र में विश्वास और शांति का संदेश हम सभी के लिए सदा प्रेरणादायक रहेगा।

साथियों, भारत बहुत ही प्यारा, विविधताओं से भरा देश है। मौसम की बात करते हैं तो भी यहाँ अलग अलग समय पर विभिन्नताएं देखी जाती हैं। कभी गर्मी, सर्दी, बरसात, पतझड़, बहार, हर मौसम का अपना लाभ होता है। अब मई और जून का जो समय होता है वो अत्यधिक गर्मी का होता है। इस समय लू चलती है जो जीना दूभर कर देती है, लेकिन इसके भी अपने लाभ हैं। किसान जून के महीने में गर्मी और संभावित प्री मानसून की नमी का उपयोग धान, कपास और बाजरे की बिजाई के लिए तैयार करने और प्रमाणित बीजों का प्रबंधन करने के लिए करते हैं, और इस मौसम में मिट्टी में मौजूदा हानिकारक कीड़े और खरपतवार भी नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथियों,

रखना चाहिए कि कैफीन या चाय कॉफ़ी पीने से परहेज़ करना चाहिए। किसी भी तरह की कोल्ड ड्रिंक्स से दूरी बनाए रखनी चाहिए क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए बेहतर नहीं है। हम कह सकते हैं कि सादा और हल्का भोजन खाना, आसानी से पचने वाला खाना खाना हमें गर्मी से बचाता है, और पानी पीने का लगातार ध्यान रखें।

साथियों, गर्मी के मौसम में हमें देखना चाहिए कि धूप में अत्यधिक परिश्रम नहीं करना चाहिए। साथ ही बच्चों और बुज़ुर्गों का भी खास ख्याल रखना चाहिए। पालतू जानवरों का, पक्षियों को, इनका भी ख्याल रखना चाहिए और इन्हें साफ़ पानी और दाना देना चाहिए। साथियों, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि बाहर से आने पर तुरंत ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। पहले हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे शरीर का तापमान सामान्य हो जाए और हल्के और पौष्टिक आहार में दही और सलाद का सेवन इस मौसम के लिए काफ़ी लाभदायक रहता है।

ओआरएस का घोल भी शरीर के लिए लाभदायक है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भरपूर मात्रा में होते हैं। रात को हल्का और जल्दी भोजन करने की आदत हमेशा ही अच्छी होती है साथियों, और सोने से पहले भारी व्यायाम करने से भी बचना चाहिए। साथियों, अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए, मक्खी मच्छर से बचना चाहिए ताकि हम बीमारियों से बच सकें, और मौसम के बदलते मिजाज पर हमेशा नज़र रखनी चाहिए। प्रकृति के सानिध्य में रहें, छायादार पेड़ों के नीचे भी समय बिताना चाहिए, और ख़ुद को स्वस्थ रखो और गर्मी के मौसम का आनंद लो।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर ही आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप सुनेंगे समाचार जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। CBSE ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन अफवाहों को खारिज किया जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई थी। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया। और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नवलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
4: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठी मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे, ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
3: इस समिति के कार्यों के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
5: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय विश्वास पर आधारित होगा जिससे दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित होगी। कनाडा में आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास से व्यापक आर्थिक साझेदारी के अंतर्गत नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर कार्य हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता पर श्री गोयल ने कहा कि भारत अगले 3 दशकों तक विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज निर्णय सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में एसआईआर प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। एक रिपोर्ट।
6: याचिकाओं में एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी गई थी। इसमें कहा गया था कि एसआईआर प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326 जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 और इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्वाचन आयोग को दी गई शक्तियों के दायरे से बाहर थी। याचिकाकर्ताओं की ये भी दलील थी कि एसआईआर प्रक्रिया ने बड़ी संख्या में गरीब और विस्थापित लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर प्रक्रिया से प्रभावित मतदाताओं के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देने और कठिनाई को कम करने के लिए अंतरिम निर्देश जारी किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने 1983 में बिहार में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा बरकरार रखते हुए कहा है कि इस घटना की क्रूरता न्यायिक अंतरात्मा को झकझोर देती है। न्यायमूर्ति संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कल कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय दोनों ने सही कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह की सहानुभूति या नरमी की गुंजाइश नहीं है। न्यायालय ने कहा कि घटना मार्च 1983 में मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव में हुई थी, जहां कम से कम 58 लोगों की भीड़ ने चंद्रशेखर चौधरी के घर में आग लगा दी, जिसके बाद 5 लोगों की बेरहमी से हत्या की गई और कई लोग घायल हो गए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने सोशल मीडिया पर किए गए इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। बोर्ड ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के वास्तविक मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पोर्टल पूरी तरह से एक अलग URL पर काम करता है। एक रिपोर्ट।
7: CBSE बोर्ड ने कहा है कि cbse.onmarks.co.in केवल एक टेस्टिंग साइट है जिसमें सैंपल डाटा होता है, जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से आंतरिक टेस्टिंग और समीक्षा के उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसमें परीक्षा से संबंधित कोई भी वास्तविक जानकारी नहीं होती है। बोर्ड ने कहा है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
3: अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। एक रिपोर्ट।
7: अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। मार्च में नासा ने वर्ष 2032 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर परमाणु और सौर ऊर्जा से संचालित एक स्थायी अड्डा बनाने के लिए $20 अरब के कार्यक्रम की घोषणा की थी। जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन को इन मशीनों का निर्माण करने के लिए चुना गया है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
3: कोलकाता की एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की हिरासत में भेज दिया है। इन आरोपियों को केंद्रीय एजेंसी द्वारा सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। भारतीय वायुसेना ने अधिकारी काडर के तकनीकी शाखा में भर्ती के लिए अभियांत्रिकी स्नातक अभिक्षमता परीक्षा GATE के अंकों के आधार पर चयन करने की योजना बनाई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि GATE के अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को वायुसेना चयन बोर्ड में परीक्षा के लिए सीधे चयनित किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली 10 डब्बों वाली DEMU रेलगाड़ी को चलाने की स्वीकृति दे दी है। ये निर्णय रेलवे क्षेत्र में हरित और टिकाऊ परिवहन को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाइड्रोजन रेलगाड़ी के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कृष्णकांत शर्मा।
8: यह रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी। इसमें दो ड्राइवर पावर कार और 8 पैसेंजर कोच शामिल हैं, जिनकी कुल क्षमता 2500 यात्रियों की है। इसकी कुल विद्युत क्षमता 1200 किलोवाट है। यह ट्रेन शून्य कार्बन उत्सर्जन करती है। इसकी परिचालन गति 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसमें यात्रियों के लिए आधुनिक डिजिटल डिस्प्ले, ऑटोमेटिक दरवाजे और एयर कंडीशनिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम की यात्रा के दूसरे दिन आज नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति नाथुला में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उन्हें क्षेत्र में जारी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे। राष्ट्रपति बाबा हरभजन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। अमरीकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका और ईरान के बीच मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान की भूमिका की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध के कारण उसे तटस्थ नहीं माना जा सकता। श्री ग्राहम ने दावा किया कि ईरानी सैन्य विमान पाकिस्तानी हवाई अड्डे का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल के बारे में पाकिस्तानी नेताओं की टिप्पणियां चिंताजनक हैं। ये टिप्पणियां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में अब्राहम समझौते में पाकिस्तान के शामिल होने से इनकार के बाद आई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है और अगले 2 से 3 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका व्यक्त की है। वहीं केरलम में मॉनसून 1 या 2 दिन की देरी से आ सकता है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 255 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस 162 रन पर सिमट गई। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल राजस्थान के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और लीजिए अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
9: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने क्वाड समूह की एकजुटता और सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए सख्ती को सुर्खियों में जगह दी है। साथ ही कई स्थानीय मुद्दे भी मुखपृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित किए गए हैं। वीर अर्जुन की सुर्खी है, क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ाएगा निगरानी। पत्र ने भारत, अमरीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्रियों की तस्वीरों को भी समाचार के साथ प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने घुसपैठ से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन संबंधी अमित शाह के ऐलान को सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, धर्मशाला नहीं है भारत। पत्र लिखता है, जनसांख्यिकी संरचना बदल जाने से स्थानीय समुदायों में ये भावना बढ़ रही है कि घुसपैठिए सरकारी योजनाओं और राजनीतिक संरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, जिससे भाषा और भूमि को लेकर तनाव बढ़ रहा है। जनसत्ता ने दिल्ली में सीएनजी के दाम 2 रुपए प्रति किलोग्राम और बढ़ाए जाने को पहली खबर बनाया है। अमर उजाला ने भी इस खबर को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर जगह दी है, जबकि दैनिक ट्रिब्यून ने दिल्ली रेस क्लब को राहत न मिलने और जिमखाना पर सरकार के कुछ नर्म रुख को पहली खबर बनाया है।
3: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन अफवाहों को खारिज किया है जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया। महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम वीसी प्रमोद, द हेडलाइंस। सेंटर फॉर्म्स हाई लेवल कमिटी टू स्टडी डेमोग्राफिक चेंज कॉज बाय इन्फिल्ट्रेशन एंड अदर रीजंस। सुप्रीम कोर्ट टू डिलीवर इट्स वर्डिक्ट टुडे ऑन पिटिशंस चैलेंजिंग स्पेशल इंटेंसिव रिविजन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स। CBSE rejects claim circulating on social media about breach of its on-screen marking system, saying it was only testing site and not actual platform. IMD issues red alert for severe heatwave conditions in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Vidarbha today. NASA releases details of robotic landers, hopping drones and vehicles it aims to send to Moon as part of its plan to build lunar base. And in IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru storm into final beating Gujarat Titans by 92 runs in qualifier 1 at Dharamshala. The centre has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic changes caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Navlekar. Census Commissioner along with former IAS Officer Durga Shankar Mishra, former IPS officer Balaji Srivastava and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary, Foreigners 1 in Home Ministry, will serve as the member secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty, but also to national security, law and order, profound changes in social structure, and the preservation of tribal society. A report.
11: The high-level committee will conduct a comprehensive assessment of demographic changes occurring across India due to illegal immigration and other unnatural causes. It will also analyze patterns of abnormal population shift at the levels of religious and social communities and will present a planned and time-bound solution for the same. Prime Minister Narendra Modi, in his Independence Day speech from Redford last year, had announced about the high-level committee on demographic change.
4: I want to talk about the country's challenges and challenges. देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी।

0: due to infiltration is also a major story covered on the front page of most newspapers. The Times of India headlines, government panel to examine demographic changes. And the Hindu says, panel set up to study demographic change. The Indian Express headlines, HDFC Bank camouflaged crores as marketing spent to pay higher interest to state firm. The paper adds that violating RBI and bank norms, 45 crore extra interest was paid to Maharashtra State Road Development Corporation as sponsorship for road safety drive. The Indian Express, in its editorial titled India First Can Converge with America First, writes that against the backdrop of an uneasy phase in India-US relations over the past year or so, US Secretary Marco Rubio's visit to India signaled reassurance to New Delhi that Washington remains committed to a long-term strategic partnership. During his joint press conference with Rubio, Indian Foreign Minister Jaishankar acknowledged that the Trump administration has been forthright about pursuing an America First policy and said that Delhi too is guided by an India First approach. Convergence of interests may sustain cooperation, but India standing in a fractured world will ultimately rest on the strength it builds at home, the paper concludes. And with that, it's back to you, Pramod.
1: Thank you, Tanvi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Center forms high-level committee to study demographic change caused by infiltration and other reasons. Supreme Court to deliver its verdict today on petitions challenging special intensive revision of electoral rolls. CBSC rejects claims circulating on social media about breach of its on-screen marking system, saying it was only testing site and not actual platform. IMD issues red alert for severe heatwave conditions in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Vidarbha today. And in IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru storm into final, beating Gujarat Titans by 92 runs in qualifier 1 at Dharamshala. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। हमारे आज के कलाकार हैं पाले राम दहिया और साथी। पहले सुनते हैं चंद संदेश।
3: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हमसफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

फिर छत्ती के मैं स्वर्ग लोक जाम देवता हर हर रटिया करे बहिना भी के मैं ना भकवन जाम।

विचार भेद कहते वाणी पिंडी के मैं अतुल बना जा रात गया सपने जानी एरा फिर गोड्या के मैं सतल बना जा शेष नाग राजा रानी भाई एडी के मैं बना रसातल जा रहा।

कती फिर बोले एक बेटा चाहिए मारी जिस्त हो जाऊं परम गति फिर बोले एक बेटा चाहिए फिर न्यू बोले

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत। हमारे आज के कलाकार थे पाले राम दहिया और साथी। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम मन भावन।

कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है और साथ ही स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त हितेश का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, गीतों का भी एक अद्भुत संसार होता है जो कभी हमारे नजरिए को तो कभी अंदाज को बदल देते हैं। कुछ गीत हमेशा मन को भा जाते हैं और इस गर्मी के मौसम में भी सुहाने लगते हैं। एक सुकून भरा मनभावन गीत आपकी नजर।

सच है साथियों, ज़िंदगी को खुशनुमा बनाने का तरीका हमें खुद ही ढूंढना पड़ता है। हमारा मन खुद खोज लेता है कि हमें किस काम में, क्या करने में, क्या सुनने में, क्या कहने में अच्छा लगता है, सहज लगता है। बस वही करें नेक दिल से। ये खूबसूरत नगमा आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर और आशा भोसले की युगल स्वरों में। फिल्म का नाम था आवाम और संगीत दिया था रवि ने।

मधुबाला और किशोर कुमार पर फिल्माया गया ये मस्ती भरा नगमा आपने सुना। फिल्म चलती का नाम गाड़ी से, आवाज़ थी किशोर कुमार की, गीत के बोल लिखे थे मजरू ने और खूबसूरत संगीत था एसडी बर्मन का।

शंकर जयकिशन का संगीत पद ये नगमा आपने सुना फिल्म मेरे हुजूर से। मखमली आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी की और गीत के बोल लिखे थे हसरत जयपुरी ने।

दोस्ताना फिल्म का ये मधुर गीत आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने और मौसिकी थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

0: कर लूं।
1: साथियों, हम भी यही चाहते हैं कि हमारे सभी श्रोताओं को भी अपार खुशियां मिलें। ये मधुर नगमा आप सुन रहे थे फिल्म एक बार मुस्कुरा दो से। आवाज़ थी किशोर कुमार की, गीत के बोल लिखे थे इंदिवर ने और संगीत से सजाया था ओपी नैयर ने।

इंदिवर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया था कल्याण जी आनंद जी ने। फिल्म का नाम था अपराध और आवाज़ें थी आशा भोसले और किशोर कुमार की।

ये नगमा आपने सुना फिल्म हमराज से, आवाज़ें थी महेंद्र कपूर और आशा भोसले की। गीत के बोल लिखे थे साहिर ने और संगीत दिया था रवि ने।

ये नगमा आप सुन रहे थे फिल्म किस्मत से, आवाज़ थी महेंद्र कपूर की और धुन बनाई थी ओपी नैयर ने।

0: जाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है।
1: कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है?
0: इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना।
2: टेंशन क्यों, मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: संदेशों से पहले आपने सुना फिल्म कालिया का नगमा, आवाज थी आशा भोसले की, और कार्यक्रम का अंतिम नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बदलते रिश्ते से, आवाजें हैं किशोर कुमार और सुमन कल्याणपुर की।

0: इसी गीत के साथ आज का कार्यक्रम मन भावन यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप सुनेंगे समाचार जिन्हें दिल्ली से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
1: सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज निर्णय सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में एसआईआर प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने सोशल मीडिया पर किए गए एक दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। बोर्ड ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के वास्तविक मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पोर्टल पूरी तरह से एक अलग यूआरएल पर काम करता है। एक रिपोर्ट।
3: सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि cbse.onmarks.co.in

0: केवल एक टेस्टिंग साइट है जिसमें सैंपल डाटा होता है, जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से आंतरिक टेस्टिंग और समीक्षा के उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसमें परीक्षा से संबंधित कोई भी वास्तविक जानकारी नहीं होती है। बोर्ड ने कहा है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय विश्वास पर आधारित होगा, जिससे दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित होगी। कनाडा में आयोजित मंत्रिस्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास से व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर काम हो रहा है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जिंद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी क्षमता 1200 किलोवाट होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम यात्रा के दूसरे दिन आज नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति नाथुला में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उन्हें क्षेत्र में जारी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे। राष्ट्रपति बाबा हरभजन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस के साथ खेलेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्स, न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार दिन के 12:30:12 हो चुके हैं। इसी के साथ आरंभ होती है हमारी आज की दूसरी प्रसारण सभा। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है NCERT प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार कर लीजिए, और जो स्वीकार न किया जा सके उससे दूर हो जाइए, लेकिन हर हाल में खुद को खुश रखिए, क्योंकि खुश रहना आपकी जिम्मेदारी है।
3: बहुत ही सुंदर विचार, आपको धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कलां दुर्ग से संजय कुमार साहू जी का।
2: ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
3: और पगबंधी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे।
2: भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी।
3: ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, आज एक बार फिर से हम रोचक जानकारी लेकर आए हैं दुनिया के एक और बेहद प्रसिद्ध फूल की। तो विमलेश जी, कल हमने बात की थी चेरी के फूलों की।
2: जी, तो अब ये बताइए हमारे श्रोताओं को, आज हम किस फूल की बात करेंगे?
3: विमलेश जी, आज हम बात करेंगे ट्यूलिप फूल की। ये भी दुनिया के प्रसिद्ध फूलों में से एक है।
2: वाजी जी, भला ट्यूलिप फूलों की सुंदरता को कौन नहीं जानता।
3: बिल्कुल।
2: तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से मेरा ये है, ट्यूलिप फूल मूल रूप से किस देश का है, यानी इसकी उत्पत्ति का स्थान कहाँ माना जाता है?
3: विमलेश जी, वैसे दुनिया भर में ये माना जाता है कि ट्यूलिप फूल मूल रूप से नेदरलैंड्स या हॉलैंड का है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है।
2: जी,
3: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि सच्चाई क्या है।
2: जी, श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि दरअसल ट्यूलिप फूल मूल रूप से मध्य एशिया के कजाकिस्तान देश का माना जाता है। यहाँ से ट्यूलिप तुर्की पहुँचा और फिर सारे यूरोप में फैल गया। तो अजीत जी, अब बात करते हैं ट्यूलिप नाम कैसे पड़ा, अब आपकी बारी।
3: जी, अब मेरी बारी। तो बता दूं कि ट्यूलिप शब्द आया है तुर्की और फारसी शब्द दुलबंद से, जिसका अर्थ होता है लंबी पगड़ी। यदि इस फूल की खुली पंखुड़ियों के मोड़ को देखें तो ये सच में मोड़दार लंबी पतली तुर्की पगड़ी जैसा ही दिखता है। 16वीं शताब्दी में जब ये फूल तुर्किस्तान के ओटोमन साम्राज्य में पहुंचा तो राजनयिक और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित लोगों ने इसके समान दिखने वाली टोपियां बनवाई, जिसे तुलिपा कहा जाता था। बाद में ये शब्द फ्रेंच, डच और अंग्रेजी भाषा में मिलकर ट्यूलिप बन गया।
2: जी, रंग, आकार और पंखुड़ियों के आधार पर इस फूल की 3000 से भी अधिक प्रजातियां दुनिया में पाई जाती हैं।

0: कैसे उगाया जाता है?
1: अजीत जी, सबसे रोचक बात तो यह है कि ट्यूलिप फूल बीज से नहीं उगता था, लेकिन कंद या बल्ब से उगाया जाता है। एक स्वस्थ कंद कई वर्षों तक फूल उगा सकता है। जहाँ तक इन फूलों के खिलने का प्रश्न है, ये फूल मार्च से मई तक खिलते हैं।
0: जी श्रोताओ, इन फूलों की दुनिया भर में भारी मांग है। ये व्यावसायिक या कमर्शियल फूल माने जाते हैं और इनका व्यापार करोड़ों डॉलर का है।
1: अजीत जी, जब आपने कमर्शियल फूल की बात की तो मुझे एक बहुत ही रोचक घटना याद आ गई।
0: हाँ, वो क्या?
1: 17वीं सदी में नेदरलैंड्स में एक अनोखी आर्थिक घटना हुई जिसे ट्यूलिप मेनिया कहा जाता है।
0: ये घटना क्या थी?
1: उन दिनों यूरोप में ट्यूलिप फूलों की भारी मांग थी। मांग इतनी अधिक थी कि कहते हैं कि ट्यूलिप फूल के मात्र एक कंद की कीमत लगभग एक घर की कीमत के बराबर हो गई थी।
0: ये तो बड़ी रोचक जानकारी विमलेश जी। श्रोताओं, नेदरलैंड्स के रंग बिरंगे फूलों के खेत दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध हैं। मीलों तक लहराते हुए ट्यूलिप फूलों के खेतों को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। जहाँ तक भारत की बात है, भारत का सबसे प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन।
1: तो अजीत जी, समाप्त करने से पहले एक और बड़ी रोचक बात श्रोताओं से साझा कर लेते हैं। ट्यूलिप के फूल आमतौर पर गंधहीन होते हैं। कुछ प्रजातियां ही हैं जिनमें बहुत हल्की सुगंध आती है। तापमान और रोशनी के अनुसार अपनी पंखुड़ियां खोल या बंद कर सकते हैं। ये अक्सर रात को लगभग बंद हो जाते हैं
0: और सुबह होते ही अपनी पंखुड़ियां खोलकर सूर्य का स्वागत करते हैं, मानो कह रहे हो गुड मॉर्निंग सन।
1: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी ट्यूलिप के सुंदर फूलों की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो हमारा प्रश्न है श्रोताओं कि मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा?
0: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
0: और अब बारी है श्रोताओ आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है समझदारी।
1: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि आपस में प्रेम और सहयोग की भावना के साथ रहने में ही समझदारी और सबकी भलाई है।
0: जी।
2: वकार पढ़ने में बहुत होशियार था। एक दिन उसने अपने वालिद से 50 रुपए मांगे। उसके वालिद ने पूछा,
3: बेटा तुम 50 रुपयों का क्या करोगे?
4: अब्बा, मुझे इन रुपयों की जरूरत है। मुझे एक पेंसिल, एक रबर और एक पेंसिल तराश खरीदना है।
3: अच्छा ठीक है, मैं कल तुम्हें ये सब चीजें खरीद कर दे दूंगा।
4: अब्बा, मुझे इन चीजों की अभी जरूरत है। मुझे स्कूल का काम करना है।
3: लेकिन बेटा, क्या तुम ये सब चीजें खुद खरीद लोगे? क्या तुम्हें रुपयों को जोड़ना और घटाना आता है?
4: जी हाँ, मुझे रुपयों को जोड़ना और घटाना अच्छी तरह से आता है।
3: अच्छा, जरा ये तो बताओ कि इन रुपयों से तुम ये चीजें किस किस तरह खरीदोगे?
4: इन 50 रुपयों से मैं 20 रुपए की एक कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, 5 रुपए की रबर और 5 रुपए की पेंसिल तराश खरीदूंगा।
3: बेटा अब जोड़ कर बताओ कि कुल कितने रुपए हुए?
4: 20 रुपए की कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, ये हुए 25 रुपए। अब इन 25 रुपयों में 5 रुपए रबर के जोड़ दिए तो हो गए 30 रुपए। इन 30 रुपयों में 5 रुपए पेंसिल तराश के जोड़े तो कुल हुए 35 रुपए।
3: शाबाश बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक हिसाब लगाया है। अच्छा तो ये बताओ कि 50 रुपए में से तुमने 35 रुपए का सामान खरीद लिया, अब तुम्हारे पास कितने रुपए बाकी बचे?
4: 50 रुपयों में से 35 रुपए घटाए तो बचे 15 रुपए।
3: तुम्हें तो जोड़ना और घटाना खूब आता है। ये लो 50 रुपए और ये सभी चीजें खरीद कर ले आओ।

0: अब कुछ हमारे सोचने और करने के लिए। जब हम छोटे बच्चों के हाथ में कुछ पैसे देते हैं तो क्या बाद में उस पैसे का हिसाब उनसे पूछते हैं? यदि हमारा जवाब हाँ है तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे में समझदारी, जिम्मेदारी और ईमानदारी का जज्बा बढ़ता है। और हाँ बच्चों, जब घर के बड़े आपको पैसे देते हैं तो क्या आप उन्हें खुद जाकर पैसे का हिसाब देते हैं? यदि हाँ तो फिर भाई इसके लिए तो आपको शाबाशी देनी चाहिए। बड़े पूछें या ना पूछें, आप हिसाब जरूर दीजिए। आई ना बात समझ में?
1: मश्क।
2: होशियार,
1: समझदार।
2: पेंसिल तराश,
1: पेंसिल को छीलने वाला शार्पनर। सोचिए और बताइए, वकार ने अपने वालिद से 50 रुपए क्यों मांगे?
2: वकार को क्या क्या चीजें खरीदनी थी?
1: सब चीजें खरीदने के बाद वकार के पास कितने रुपए बाकी बचे?
2: बेटे से सही हिसाब सुनकर वालिद ने क्या कहा?
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम समझदारी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय डॉक्टर रिजवानुल हक, तकनीकी निर्देशन बटी लैंग लिंगडो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, ध्वनियांकन मयंक कुमार, निर्देशन विमलेश चौधरी, निर्माण जगबंधु जाना तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। अभी आपने सुना कार्यक्रम समझदारी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है कैप्टन विक्रम बत्रा।
3: इस कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के दौरान अपार वीरता का प्रदर्शन करने वाले परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा के शौर्य का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार रणनीतिक और भौगोलिक रूप से कमजोर स्थिति में भी उन्होंने सियाचिन के टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया और अपने प्राणों की आहुति दे दी।
4: साथियों, सन 1999 में हुआ कारगिल युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें सेना के युवा अधिकारी अग्रणी रहे। इन रणबांकुरों के साहस और शौर्य भरे कारनामों को जन जन ने पहचाना, और इन रणबांकुरों की भारत की जनता से पहचान करवाई मीडिया ने। सन 1999 में मीडिया ने पूरे देश को सेना के साथ एक आत्मीय बंधन में बांध दिया। लोगों ने घर बैठे सैनिकों को मोर्चे पर लड़ते देखा।
5: साथियों, मैं हूं मेघना उपाध्याय और इस समय कारगिल की युद्ध भूमि से मैं आपसे मुखातिब हूं। जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं, चारों ओर हमारी सेना का भारी जमावड़ा है। तो आइए बात करते हैं हमारे एक सैनिक से। तो आपने बताया कि आप छुट्टी पर जा रहे थे?
6: जी, पर हमारे लिए देश और पलटन पहले हैं, घर बाद में।
5: आप तो काफी समय से घर से दूर हैं, क्या घर की याद नहीं आती?
6: हाँ, याद तो आती है, परंतु देश की रक्षा हमारे लिए सब कुछ है। समाचारों से पता चल रहा है कि पूरा देश हमारे साथ है। जिस माँ के हम बेटे हैं उससे भी बड़ी माँ है हमारी भारत माँ। उसकी सुरक्षा को छोड़कर घर चले जाएं, हो नहीं सकता।
5: तो देखा साथियों, ऐसे हैं हमारे सैनिक, हमें इन पर नाज है।
7: वाह, अरे वाह, क्या बात कही है।
6: क्या बात है,
7: सुनकर ही जोश आ गया।
6: हाँ
7: भाई विक्रम, तुम तो अभी अभी छुट्टी पर आए हो, और अब ये लड़ाई, शायद तुम्हें भी युद्ध में जाना पड़े। संभल कर रहना भाई।
8: युद्ध में तो जाने ही है दोस्त, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। मैं या तो विजयी तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
4: ये शब्द थे कैप्टन विक्रम बत्रा के, जो कारगिल युद्ध के दौरान शेरशाह के नाम से भी मशहूर हुए। युद्ध के समय

बहादुरी के किस्से सुन सुनकर लोग दंग रह गए। वे एक के बाद एक खतरनाक मिशन पर जाते रहे और देश एकजुट होकर उनकी सलामती की दुआ करता रहा। ऐसे थे 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा। विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के छोटे से नगर पालमपुर में हुआ। हिमाचल एक ऐसा राज्य जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इतना ही नहीं, ये मनोरम राज्य जांबाजी के लिए भी प्रसिद्ध है। यहां के रणबांकुरों ने संकट की घड़ी में कुर्बानियां देकर इतिहास रचा है, दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं। कारगिल युद्ध में इस राज्य के लगभग 30 जांबाजों ने शहादत देकर कुर्बानियों की परंपरा को आगे बढ़ाया है। और इसी पावन भूमि पर जन्म लिया हमारे इस परमवीर विक्रम बत्रा ने। विक्रम बचपन से ही निडर और साहसी थे। सन 1994 में विक्रम ने एनसीसी के सदस्य के रूप में गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया और जब वहां से लौट कर आए तो वे अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुके थे और वो था भारतीय सेना में भर्ती। जुलाई 1996 में विक्रम ने भारतीय सेना अकादमी देहरादून में प्रवेश लिया। आईएमए में ट्रेनिंग के दौरान बहुत सी चीजों ने उन्हें प्रभावित किया, जैसे वहां का अनुशासन, सैनिक प्रशिक्षण और उन पंक्तियों ने जो अकादमी की बरसों से चली आ रही परंपरा है। अपने देश की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण हमेशा और हर बार सर्वप्रथम है। फिर है आपके सैनिकों का सम्मान, कल्याण और सुविधा। आपकी अपनी सुविधा, आराम और सुरक्षा हमेशा और हर बार आखिर में आते हैं। ये पंक्तियां विक्रम की भावनाओं, विचारों और कार्यों में रच बस गई थीं। 6 दिसंबर 1997 को उन्हें 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स टुकड़ी में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया। युद्ध आरंभ हो गया था। एक जून 1999 को उनकी टुकड़ी कारगिल चली गई। कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने कई सैनिक अभियानों में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया और हर मिशन में सफलता ने उनके कदम चूमे। कारगिल युद्ध के समय उन्होंने कई मिशन में भाग लिया। कई पर्वत चोटियों यानी पॉइंट्स पर अपूर्व शौर्य दिखाते हुए उन पर कब्जा किया। मिशन 1, दिन 12 जून 1999। कारगिल में तोलोलिंग नामक स्थान पर भीषण युद्ध चल रहा था। 25,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये चोटी सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण थी। इस चोटी से दुश्मन श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को लगातार निशाना बना रहा था। कैप्टन विक्रम बत्रा की यूनिट को वहां लड़ रहे

0: फिर सैन्य दल की सहायता के लिए भेजा गया। दो रात भयानक युद्ध चला और हमारी सेना ने कैप्टन विक्रम बत्रा के नेतृत्व में हम्प पर कब्जा कर लिया। वहीं से विक्रम ने अपने भाई विशाल को, जिसे वे प्यार से कुशु कहते थे, एक पत्र लिखा।
1: प्यारे कुशु, तुम रोज सुन रहे होगे कि यहां घमासान युद्ध चल रहा है। मैं 15,500 फीट की ऊंचाई पर दुश्मनों से लड़ रहा हूं। जान को पूरा खतरा है, कुछ भी हो सकता है। आज हम जीत तो गए हैं, लेकिन आज का दिन हमारी बटालियन के लिए दुख से भरा है, क्योंकि आज हमने एक अफसर को लड़ाई में खो दिया है। प्यारे कुशु, मां पिताजी को संभालना, क्योंकि यहां कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा भाई विक्रम।
0: ऐसा था इस युवा सैनिक अधिकारी का हृदय। विजय के उल्लास में भी अपने साथियों को खोने की कसक उनके मन में थी। मिशन 2, दिन 19 जून 1999, स्थान 5140। 15,000 फीट ऊंची ये वो चोटी थी जहां से दुश्मन हमारे दो हेलीकॉप्टर गिरा चुका था। इसे जीतना बेहद जरूरी था, क्योंकि ऊंचाई पर होने के कारण इस पॉइंट से दुश्मन हमारी सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहा था। हमारी सेना के लिए केवल एक रात का समय था। विक्रम ने अपने सैनिकों को उस पर्वत की खड़ी ढलान पर चढ़ने का आदेश दिया। सैनिक चुपचाप पहाड़ी पर चढ़ते रहे। सुबह के 3:15 का समय था। हमारे सैनिक शत्रुओं के बंकरों के समीप थे। तभी दुश्मन की ओर से रेडियो सिग्नल आया।
2: शेरशाह, तुम क्यों आ गए बीच में? अरे तुम में से एक भी जिंदा नहीं लौटेगा।
3: एक घंटे में ही तुम्हें मालूम चल जाएगा कि ऊपर कौन रहेगा।
2: अरे देख लेंगे।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा का दुश्मनों के बीच भी इतना नाम था कि वे इन्हें उनके कूट नाम से भी जानते थे। दुश्मन को ये तो खबर थी कि भारतीय सैनिक उनकी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं, पर शायद इस बात से वो बेखबर था कि हमारे सैनिक उनके इतने करीब हैं। विक्रम ने अपनी घड़ी की ओर देखा। 3:24 हो गए थे। 4:30 सूर्योदय हो जाएगा। उनके पास केवल 1 घंटे का समय था। बस फिर क्या था, उन्होंने दुश्मनों के बंकर पर धावा बोल दिया। और कुछ ही देर में विक्रम और उनके साथियों ने दुश्मन को वहां से खदेड़ दिया। पॉइंट 5140 पर अब हमारा कब्जा था। इस विजय के बाद एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा,
4: कैप्टन विक्रम, पॉइंट 5140 की विजय के बाद कैसा एहसास हो रहा है?
1: मैं और अधिक चोटियों पर कब्जा करना चाहता हूँ। ये दिल मांगे मोर।
5: क्या बात कही है?
4: ये दिल मांगे मोर। How nice. विक्रम जी, आप पर सारे देश को नाज है और हमारी कामना है कि इसी तरह आपका विजय अभियान चलता रहे और चलता रहे।
1: धन्यवाद।
0: इस प्रसारण को पूरा देश देख रहा था। लाखों दर्शकों ने उनका उत्साह भरा उत्तर सुना।

ऐसे समय में जब लोगों की आंखें आंसुओं से नम थी और दिल डर से सहमे हुए थे, विक्रम बत्रा के इस एक जवाब ने सबके चेहरों पर एक मुस्कान छोड़ दी। देश का बच्चा बच्चा अब उन्हें जानने लगा था।

0: और अब आई बारी उस मिशन की जिसने विक्रम बत्रा को अमर बना दिया। मिशन 3 टाइगर हिल्स पिंपल पोस्ट 6 जुलाई 1999 की शाम। 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स की कमान एक बार फिर कैप्टन विक्रम बत्रा के हाथों में थी।
1: हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार एक बात पक्की है कि हमें दुश्मन पर पीछे से हमला करना होगा।
2: जी
1: चलो अब मंजिल पर पहुंच गए हैं। इशारा मिलते ही टूट पड़ना।
3: जी सर।
1: देखो तुम यही पोजीशन संभालो।
3: जी सर।
1: और तुम दाहिनी तरफ जाओ।
3: जी सर।
1: हमला करो दुर्गा माता की।
0: दुश्मन उनके खूंखार हमले से घबराकर पीछे हटने लगा था। तभी विक्रम ने देखा कि उनका एक सहयोगी अफसर दुश्मनों से घिरा हुआ है। जब वो उन्हें बचाने के लिए बंकर से बाहर दौड़े, उनके एक सूबेदार ने उन्हें रोकना चाहा।
4: सामजी, सामजी आप मत जाइए, मैं जाता हूं।
1: नहीं, नहीं। तू भी बचवा रहा है, पीछे हट।
4: नहीं लेकिन साहब जी,
1: मैंने कहा ना पीछे हट जा। मैं जा रहा हूं।
4: साहब जी, साहब जी।
0: अभी विक्रम लेफ्टिनेंट नवीन को घसीटते हुए बंकर की ओर ले ही जा रहे थे कि दुश्मन की एक गोली उनकी छाती में आ लगी।
1: क्या हुआ तुम्हें? नहीं नहीं नहीं, नहीं।
0: और तभी उन्होंने वीरगति पाई। उस दिन भारत ने पिंपल पोस्ट पर तो विजय पा ली, परंतु भारत मां का एक शेर सपूत शहीद हो गया। उनका पार्थिव शरीर पूरे सैनिक सम्मान के साथ जब उनके जन्म स्थान पालमपुर में लाया गया तो इस अमर शहीद के दर्शनों के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी।

0: आज उस शिखर का नाम कैप्टन विक्रम बत्रा शिखर है। उनके असाधारण शौर्य के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया। याद आती है एक बार फिर वही बात जो कैप्टन विक्रम बत्रा ने युद्ध में जाने से पहले अपने मित्र को कही थी।
1: मैं या तो विजयी तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने दोनों वचन निभाए।

ने दुश्मन को पराजित कर भारत के झंडे को 0.5140 पर फहराया और 0.4875 नंबर शिखर पर युद्ध में प्राण देकर बड़ी शान से तिरंगे में लिपट कर घर आए।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैप्टन विक्रम।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत SIR करवाने की शक्ति रखता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागजी की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल इसलिए अमान्य नहीं किया जा सकता कि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। CBI ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सरकार ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस के संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला के मामलों के मद्देनजर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार युगांडा से हाल ही में लौटे एक व्यक्ति को बंगलुरु के सरकारी महामारी रोग अस्पताल में जांच और चिकित्सा के लिए अलग रखा गया। जांच में उसकी रिपोर्ट नकारात्मक आई है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे घबराएं नहीं, गलत सूचना न फैलाएं और जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा के अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल ने कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान के बीच लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि इन मुश्किल दिनों में वे पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें। आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि योग भारत के प्राचीन ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है और निवारक

0: स्वास्थ्य देखभाल तथा संतुलित जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्री जाधव ने आज खजुराहो में आयोजित योग महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 25 दिन पहले आयोजित बैठक में भाग लेते हुए ये बात कही। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आज दोपहर के कारोबार में 41 अंक बढ़कर 76,051 जबकि निफ्टी 21 अंक के वृद्धि के साथ 23,935 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से रिले।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉक्टर शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
3: आज देश के सामने एक चिंता एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
2: रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली 10 डिब्बों वाली DEMU रेलगाड़ी चलाने की स्वीकृति दे दी है। यह निर्णय रेलवे के क्षेत्र में हरित और टिकाऊ परिवहन को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी। इसमें 2 ड्राइवर, पावर कार और 8 पैसेंजर कोच शामिल हैं, जिनकी कुल क्षमता 2,500 यात्रियों की है। इसकी कुल विद्युत क्षमता 1,200 किलोवाट है। यह रेल शून्य कार्बन उत्सर्जन करती है। इसकी परिचालन गति 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसमें यात्रियों के लिए आधुनिक डिजिटल डिस्प्ले, ऑटोमेटिक दरवाजे और एयर कंडीशनिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली DEMU रेलगाड़ी हरियाणा को देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली यह रेलगाड़ी न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेल संरचना के विकास की गवाह बनेगी बल्कि इतिहास भी बनाएगी। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और ईंधन की बचत की दिशा में और भविष्य की परियोजनाओं को देखते हुए यह गाड़ी मील का पत्थर साबित होगी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर आज भिवानी, तोशाम व कैरू में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पंडित नेहरू के चित्र पर पुष्प अर्पित कर देश के प्रति उनके योगदान को याद किया। फरीदाबाद स्थित ESIC मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ने उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए एक 3 वर्षीय बच्चे में दुर्लभ बीमारी विस्कॉट एल्ट्रिज सिंड्रोम का सफल बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया है। यह ESIC स्वास्थ्य प्रणाली में इस प्रकार का पहला सफल उपचार बताया जा रहा है। विस्कॉट एल्ट्रिज सिंड्रोम एक दुर्लभ आनुवांशिक प्रतिरक्षा संबंधी बीमारी है जिसमें बच्चों को बार बार संक्रमण, त्वचा रोग, प्लेटलेट्स की कमी और रक्तस्राव जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शाहबाद नगर पालिका ने सरकारी फीस तय समय सीमा के भीतर जमा न करवाने वाले 4 ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें काली सूची में डाल दिया है। इसमें SS सहकारी सोसाइटी सहित अन्य ठेकेदार शामिल हैं। नगर पालिका के सचिव बांबुल ने बताया कि संबंधित ठेकेदारों द्वारा निर्धारित समय के भीतर सरकारी फीस जमा नहीं करवाई गई थी, जिसके चलते यह कदम उठाया गया। उन्होंने कहा कि काली सूची में

0: डाले गए ठेकेदार नगरपालिका के किसी भी टेंडर के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने सोशल मीडिया पर किए गए एक दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
1: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर न्यूज जोन AIR और DTH पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। दोपहर के 1:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके अनुरोध पर, फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी की चिट्ठियों का कार्यक्रम में स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं आप सभी की फरमाइश के साथ। आप हैं बेमेतरा छत्तीसगढ़ से पूर्णिमा सारथी, पूजा आरती भव्या और सुषमा सारथी हैं इनके साथ। प्रमिलागंज आलोट रतलाम मध्य प्रदेश से आप हैं बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, माया, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल पामल और ऋषि वर्मा हैं इनके साथ। नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत, सीमा और शारदा साथ में इनकी दामिनी। डोंगरगांव राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से खत मिला है। लिखने वाले श्रोता हैं राष्ट्रपाल गजपिए, राधिका, अनिष्का, तन्मय गजपिए। हिंगोली महाराष्ट्र से हमारे श्रोता हैं शाहानी, बोडके, नंदा, हनुमान, उत्तम और स्वराज। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर सुनवा रहे हैं आशिकी फिल्म से गाना। आवाज़ें हैं अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की। समीर के बोल हैं, नदीम श्रवण का संगीत है।

गांव जाखूद राजस्थान से आप हैं शंभु दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा खटक। आप हैं ताज मंजिल लक्कड़ बाज़ार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिब पवार, मोहम्मद हसनैन पवार। बाज़ार चौक ग्राम रिवाल से आप हैं शंकरलाल गंगराडे, वनीता छोटू, पूजा रोशनी, अजय वामिका। ग्राम छैगांव से ज़िला खंडवा से आप हैं अशोक कुमार, वंदना, भूपेंद्र, झवर, तनुश्री, आरोही और कान्हा। कनेरा मोहल्ला पटियाला से आप हैं मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। पुणे से श्रोता हैं हमारे पंकज दे, आर्य, प्रियंका, बीटी वाडोदे, चंद्र प्रभा वाडोदे। आप सभी श्रोता सुनना चाहते हैं मिस्टर आशिक फिल्म से गाना, कुमार सानू की आवाज़ है, इंदिवर के बोल हैं, जतिन ललित का संगीत है।

आपके अनुरोध पे कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं जंगल लव फिल्म से गाना। अनुराधा पौडवाल की आवाज़ है, समीर के बोल हैं, आनंद मिलिंद का संगीत है और इस गीत को सुनवाने के लिए फरमाइशी खत आप सभी के मिले। सुरेश वाड़ी औरंगाबाद से आप हैं, प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा प्राजक्ता, प्रांजलि, सोहम बोरगांवकर, मुक्तसर से बब्बू सिंह धीमान, बलविंदर कौर, रवनीत और निशु, आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मैंडी, सौरभ और शाइना, साथ में इनके निवान, मलोट से खत लिख भेजते हैं राज।

कुमार, इंदौरा, गैरी, विकास, इंदौरा, प्रियंका, रमन, ऋतु, भविष्य, मिशेल, किंशुक और दिव्यांशी इंदौरा। आप हैं रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ राजस्थान से। जगमाल सिंह डागला, हैप्पी, जेएस नायक, शोभा और समस्त डागला परिवार।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: ये था एक संदेश और इस संदेश के बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सुनाते हैं आप सभी की फरमाइश। आप हैं मुकाम हिप्परसोगा तालुका औसा लातूर हुनसे उस्मान शेख, शायरा बानो शेख, दस्तगीर शेख, फैजनवी शाकिर, इस्लामबी शेख, करिश्मा सिमरन, सिमर सानिया, शाकिल पठान, बिस्माली शेख, गदर शेख, नीलोफर शेख, हिप्परसोगा तालुका नांदेड़ से चांदनी आयुष सैयद, अमन सैयद और माहिरा सैयद, मॉडल टाउन करनाल से आप हैं सुधीर नूतन, नरेंद्र तनेजा, संदीप जगीदुआ और सुनीता शर्मा, मोहल्ला हलवायान शेरकोट बिजनौर से खत लिख भेजते हैं, मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी परवीन, बिट्टू साजदा रानी और हिना कौसर। आप सभी श्रोता सुनना चाहते हैं जुनून फिल्म से गाना, आवाज़ें हैं अनुराधा पौडवाल और विपिन सचदेवा की, समीर के बोल हैं, नदीम श्रवण का संगीत है।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

होगी प्यार की जीत, ये था फिल्म का नाम जिसका गीत हमने सुना। आवाज़ें थी जसपिंदर नरूला और रूप कुमार राठौड़ की। समीर ने इस गीत को रचा था और धुन बनाई थी आनंद मिलिंद ने। इस गीत को सुनवाने के लिए फरमाइशी खत आप सभी ने लिख भेजी। गांव जींद से आप हैं सुरेंद्र सांगवान, अंकित सांगवान और सचिन सांगवान। योगनगर पंजाब से नरेंद्र मेहता, वरेंद्र मेहता, गिरिराज मेहता, हनी मेहता और सिमरन मेहता। कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान, निखात परवीन, आरजू अरमान, आलम और तस्रीम। डाबर कॉलोनी भिवानी से आप हैं रमेश सिवानीवाल, सौरभ सिवानीवाल और रमेश वर्मा। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, आइए सुनते हैं विरासत फिल्म से गाना, जिसमें आवाज़ें हैं कुमार सानू और जसपिंदर नरूला की, जावेद अख्तर है नगमा निगार और मौसिकी अनु मलिक की और पसंद आप सभी की। आप हैं दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीटा देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार। पंखा रोड दिल्ली से पिंटू दीवाना, सतनाम कौर, हनी सिंह और राकेश सेट्टी। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेहंदी शर्मा, सौरभ शाइना शर्मा और निवान हैं इनके साथ। पुणे से खत लिख भेजते हैं पंकज वाडुदे, आर्य और शैलेश। और ये श्रोता हैं इंदौर एमपी से वंदना मराठी, गणेश कार्तिक, भाऊ परी, संजना मालती, स्वाति।

जानी दुश्मन जी हाँ, ये है फिल्म का नाम जिसका गीत आइए सुनते हैं। आवाज़ें हैं उदित नारायण, अलका याग्निक और प्रशांत की। समीर ने इस गीत को रचा और इसके लिए तर्ज बनाई। आनंद मिलिंद ने सुनवा रही हैं आप सभी की फरमाइश पर। गांधीनगर अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, हिसार से राजेंद्र सैनी और राहुल सैनी की चिट्ठी हमें मिली है। फतेहाबाद से बिट्टू मोहरवाला, गगन अमरपुरी, युवराज और मुनीक, चरखी दादरी से जगनीश सांगवान, करनाल से सुधीर नूतन, संदीप जगमोहन, प्रतिभा शर्मा, ईशप्रीत शर्मा, सोनिया, निपाशा शर्मा, नरेंद्र तनेजा, मीनाक्षी, किरण ठाकुर, जग्गी दुआ और प्रेमलता, मटोर से रामदिया, नीलम, अजय, विजय, तमन्ना, पायल, रामफल और धर्मवीर।

आइए सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गाना जानाशी फिल्म से, आवाज़ें सोनू निगम और अलका याग्निक की, और पसंद आप सभी की। सच्चा रोड से आप हैं वेद बिहारी, बागपत यूपी से एहसान अली, तुरनाला से आप हैं वाशिम सुखदेव राउत, पतरोड़ा अनूपगढ़ से मंगल जनागल, रोशनी अंकुर, इंदु और सुनील जनागल।

से फिल्म के गीत के साथ ही संपन्न हुआ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आपके अनुरोध पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर, न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर। 2 बजने को हैं, अब आप सुनेंगे अंग्रेज़ी में समाचार और उसके बाद 2:15 पर हिंदी में समाचार। रिले कर रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली से।

0: drinking water at various locations. Jitendra Dwivedi, Akashwani News, Jaipur.
1: The India Meteorological Department has issued a yellow alert for heat wave conditions today over parts of Delhi, with maximum temperature expected to be hovering between 43 and 45 degrees Celsius. The Met Department has also predicted severe heat wave conditions over Haryana, Chandigarh, Madhya Pradesh, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh and Vidarbh. The theme of the International Day of Yog 2026, to be observed on the 21st of next month, will be Yog for Healthy Aging. Union Minister of State for Ayush, Independent Charge Mr. Pratap Rao Jadhav, said this while attending the Yog Mahotsav 25-day countdown to International Day of Yoga 2026 in Khajuraho today. The United States Senator Lindsey Graham has questioned Pakistan's role as a possible mediator between the US and Iran, saying it cannot be seen as neutral because of its long-standing opposition to Israel. In a social media post, Graham claimed that Iranian military aircraft were being kept at Pakistani air bases and said the comments by Pakistani leaders about Israel were disturbing. Graham also urged Pakistan to clearly respond to US President Donald Trump's call to join the Abraham Accords. The remarks came after Pakistan's Defense Minister Khwaja Mohammad Asif rejected the idea of Pakistan joining the Abraham Accords in an interview with a TV channel. He said Pakistan would not support any agreement that goes against the country's fundamental ideologies. India's permanent representative to the United Nations, Parvathaneni Harish, has strongly criticized Pakistan at the UN Security Council, accusing Islamabad of continuing cross-border terrorism and warning that it would face consequences for sponsoring terror activities against India. Harish made the remarks during the UN Security Council open debate on upholding the purposes and principles of the UN Charter and strengthening the UN-centered international system.
2: Pakistan, by waging several wars and inflicting unprovoked aggression against India, and through its continued sponsorship of cross-border terrorism, has violated the principles of sovereignty and territorial integrity and peaceful coexistence. Cross-border terrorism by Pakistan and its doctrine of bleeding India by a thousand cuts exposes its hollow rhetoric. Pakistan's harnessing of the malevolent forces of terrorism, religious extremism, violent radicalism, and anti-India rhetoric has continued unabated since its creation.
1: At least 31 people were killed and 40 others injured in Israeli raids across southern Lebanon. According to Lebanon's Ministry of Public Health, the strikes targeted yesterday in several towns and villages amid escalating cross-border tensions between Israel and Hezbollah. On to sports. In IPL cricket, Sunrisers Hyderabad will face Rajasthan Royals in the eliminator match this evening at New Chandigarh Mohali. The match will start at 7:30 p.m. The winner will take on Gujarat Titans in qualifier 2 on Friday for a place in the final. In badminton, India's top player H.S. Pranoy produced a superb comeback performance to defeat Indonesia's Jonathan Christie in the opening round of the Singapore Open 2026 at the Singapore Indoor Stadium. Benchmark domestic equity indices were trading in negative territory during the afternoon session today. The Sensex dipped 102 points to 75,908 and the Nifty 50 slipped by 14 points to 23,900 when reports last came in. However, in the broader market at the National Stock Exchange, Midcap 100 index was trading almost 0.3% up. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Supreme Court upholds Election Commission's power to conduct SIR of electoral rolls, says it is in consonance with Representation of the People Act 1950. Prime Minister Narendra Modi urges citizens to take precautions amid rising temperatures. IMD predicts severe heat wave conditions over Haryana, Madhya Pradesh, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh and Vidarbh. India-Canada reaffirms shared objective of expanding bilateral trade to $50 billion US dollar by 2030. CBI arrests two more accused in NEET UG 2026 examination paper leak case. US Senator Lindsey Graham questions credibility of Pakistan's role as possible mediator in US-Iran talks, cites Islamabad's long-standing opposition to Israel. And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad to face Rajasthan Royals in eliminator match in Chandigarh this evening. And with that, we end the midday news.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के चुनाव आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। उन्होंने इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध का हवाला दिया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
4: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य को हासिल करना है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विपरीत थी। न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि इस प्रक्रिया से मतदाता सूचियों में पहले से मौजूद व्यक्तियों की नागरिकता की अनुमानित मान्यता समाप्त हो जाती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
3: भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी बीएलओ 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे।
5: कमीशन की तरफ से दिल्ली में एसआईआर टाइम शेड्यूल लॉन्च हो चुका है जो कि 20 जून से शुरू होगा और 7 अक्टूबर को हमारा फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा। तो इसमें जो हाउस टू हाउस विजिट है बीएलओज की वो हमारी 30 जून से शुरू होगी और 29 जुलाई तक चलेगी। इस हाउस टू हाउस शेड्यूल में बीएलओ हर इलेक्टर के यहाँ जाएंगे जो भी उनका एड्रेस इलेक्टोरल रोल में है और दो फॉर्म लेके जाएंगे इनुमरेशन फॉर्म। एक फॉर्म में इलेक्टर ने अपनी डिटेल भरनी है और अपने पास रखना है, दूसरा फॉर्म भर के बीएलओ को दे देना है और दोनों फॉर्म पे बीएलओ काउंटर साइन करेंगे एक्नॉलेजमेंट के लिए।
3: दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि मतदाताओं को भरे हुए जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी मिलेगी। श्री कुमार ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच पड़ताल की व्यवस्था है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: SIR का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से न छूटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। मतदाताओं की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए जागरूकता अभियान और विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि मतदाताओं को जनगणना प्रपत्र जमा करने में सहायता मिल सके। आम जनता की सुविधा के लिए दिल्ली में वर्ष 2002 में हुए अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इस प्रक्रिया में 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच की व्यवस्था रहेगी और राजनीतिक दलों को बूथ स्तर के एजेंटों के माध्यम से इसमें शामिल किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है, जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। उन्होंने सुझाव दिया कि जो भी प्यासा हो उसे एक ग्लास पानी जरूर पिलाएं। प्रधानमंत्री ने सभी से ये भी कहा कि वे अपने परिवार और प्रियजनों के संपर्क में रहें और उनका हालचाल पूछते रहें। दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और जितना हो सके आराम करें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से इन मुश्किल दिनों में पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखने का अनुरोध किया। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कुछ स्थानों और दिल्ली में भीषण लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कोंकण और गोवा, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच आज राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। एक रिपोर्ट।
0: झुलसाने वाली गर्मी से प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा प्रभावित है। जयपुर, कोटा, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और दौसा सहित कई शहरों में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा गया। करीब 33 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ कोटा की रात सबसे गर्म रही। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए प्रशासन की ओर से सड़कों पर पानी का छिड़काव करने, आश्रय स्थल बनाने और पीने के पानी की व्यवस्था लगातार की जा रही है। चिकित्सा संस्थानों में भी लू और तापघात के मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने के साथ आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गंगटोक में होने वाले सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी इस समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नीट प्रश्न लीक मामले में लातूर के रहने वाले डॉक्टर मनोज शिरोडे को भी गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के अनुसार उन्होंने एक कोचिंग केंद्र के मालिक के बेटे सहित तीन छात्रों को आरोपी पीवी कुलकर्णी से रसायन विज्ञान के प्रश्न दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। गिरफ्तार किया गया दूसरा आरोपी तेजस हर्षद कुमार शाह है, जो पुणे स्थित एक कोचिंग सेंटर डॉक्टर अभंग प्रभु मेडिकल एकेडमी में फिजिक्स का फैकल्टी है। उसे नीट परीक्षा के लीक हुए भौतिक विज्ञान के प्रश्न के आरोपी मनीषा हवलदार से मिले थे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने केरला में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर जांच शुरू कर दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज सुबह से तिरुवनंतपुरम में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर निरीक्षण शुरू कर दिया है। केरलम में 10 से अधिक जगहों पर तलाशी और निरीक्षण की कार्रवाई चल रही है। हालांकि ईडी की ओर से अब तक इन कार्रवाइयों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। इस बीच केरलम हाईकोर्ट ने कल प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। यह याचिका केरलम के कोच्चि स्थित एक निजी कंपनी के अधिकारियों द्वारा दायर की गई थी। ईडी की जांच उस निजी कंपनी के परिसरों में भी जारी है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पुलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यान्वित क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत कनाडा व्यापार को मजबूत करने में कनाडा में रह रहे भारतीय प्रवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।
8: भारत और कनाडा के बीच साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत उनकी मजबूत लोकतांत्रिक नींव है। दोनों देश इस बात पर विश्वास करते हैं कि जब सशक्त संस्थाएं कानून के शासन को मजबूती से कायम रखती है, तब दुनिया के सामने यह एक उदाहरण बनता है कि अच्छे मित्र और भरोसेमंद साझेदार किस तरह साथ मिलकर काम करते हैं। दोनों देशों की सरकारों, संस्थाओं, व्यवसायों और आम लोगों के बीच जो आपसी विश्वास और सहयोग है, वही इस रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाता है।
3: संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नैनी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। श्री हरीश ने कहा कि पाकिस्तान को यह स्वीकार करना होगा कि सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करने के परिणाम उसे भुगतने होंगे।
9: पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध, बिना उकसावे की आक्रामक कार्रवाइयों और लगातार सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देकर संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। हजार घाव देकर भारत को कमजोर करने की उसकी नीति आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता और भारत विरोधी गतिविधियों को लगातार बढ़ावा देने की उसकी सोच को दर्शाती है।
2: Anti-India rhetoric has continued unabated since its creation.
3: पाकिस्तान का अब्राहम समझौते में शामिल होने से इनकार करने की रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कड़ी आलोचना की है। रिपब्लिकन सेनेटर ग्राहम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान से संबंधित किसी भी कूटनीति में पाकिस्तान की भूमिका अनुचित है। आईपीएल क्रिकेट में आज मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से खेलेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमेरिका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज़ पर न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। 2:30 और 16 सेकंड हुए हैं। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार प्रस्तुत है कार्यक्रम खेत खलिहान।

कार्यक्रम सुनने वाले सारे वन भाइयों ने अशोक भाई की राम राम। भाइयो, हमें वंशानुगत खेती करते आने लग रहे हैं, परंपरागत खेती है जो, उसके साथ साथ अगर हमें सब्जी फसलें भी लगा लें तो और भी ज़्यादा हमें फ़ायदा हो जाए। एक तो कम समय की है, सारिया हमने काम पाया रहे और किसान भाई की खर्चा भी इसमें चलता रहे, क्योंकि जल्दी जल्दी इसकी बिक्री भी होती रहे और किसान की जेब में पैसे भी आते रहे। तो इसमें मैं जैसे टमाटर की बात करा, आज का हमारा विषय भी है कि भाई टमाटर फसल की देखभाल पर। एक तो इसमें ये ध्यान रखें जो अध पके हैं ना फल, उन न तोड़ लें, और जैसा कि भाई एक दो दिन में ये पक जाएंगे वो फल तोड़ के ना और बाज़ार में भेज दें। तो उसमें देखो ये हो जाएगा कि भाई एक तो जब मान लिया कति पक्के ले लेंगे और फिर उसमें आपस में दबाव रहेगा, उन्हें घालेंगे किसी चीज़ में, कैरेट वगैरह में, तो वो फूट जाएंगे, फूटने का डर रहेगा। इसलिए अपना थोड़ा ऐसा कर लें कि भाई थोड़ा कि भाई हाँ कल ये पक जाएंगे, आज उन्हें तोड़ दें और बाज़ार में भेज दें तो बढ़िया रहेगा। और एक चीज़ ये रखा अपनी फसल की नियमित उसमें सिंचाई करते रहे, क्योंकि जैसे सूखा आज गया ना, क्योंकि एक तो गर्मी पड़ लग रही, इतनी तेज़ लू चलने लग रही है, और ऊपर से जब उसमें पानी हमने नहीं लगाया तो फसल में जो पैदावार है वह नहीं होगी, यानी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा हमारे। और फिर एक ये देखें जब कीटनाशक दवाइयाँ की जब प्रयोग करना पड़े, जब न्यू दिखा नहीं करी है जरूरत से उस टाइम पर करना है हमने, और करें यूँ ध्यान रखें कि भाई जब मान लिया कि एक हफ्ते तक, मान लिया आज हमने स्प्रे कर दिया, एक हफ्ते तक हमने उसके फल नहीं तोड़ने हैं, फिर उस ये देख लें कि वह दो तीन दिन में पाकेगा, उस फल ने तोड़ लें और अपना कर लें, फिर उसके बाद उसमें स्प्रे कर दें भाई। हाँ, इसमें कई बार ये देखा जो विषाणु रोग तो ग्रसित हो जाए, पौधे हो जाए ग्रसित, उसने पौधे ना अपना न्यूका न्यू खाड़ कर किधर दूर ले जाकर उसको नष्ट कर दे, या तो जला दे या फिर उसने ऐसा कर दे कि वह जमीन में गहरा दबा दे उसने, नहीं तो फिर यह होगी कि आगे जाकर उसने और भी ज़्यादा जो विषाणु रोग है ना उसमें एक पौधा दूसरे पौधे में फैलता जाएगा। तो ये उसमें हमने पूरा ध्यान रख लेना। अच्छा, इस तरह ये देखा जो भी मरोड़िया है आ जाए, वो आ जाए, उन फलों ने अपने तोड़ लेने, वो पौधे ने तोड़ कर और अपना एक लोग ले जाकर नष्ट कर दें, ये बढ़िया रहेगा। क्योंकि बीमारी वाला पौधा मान लिया हमने वहीं पाड़ तो दिया और उस वहीं डाल दिया, अपने खेत में डाल दिया, तो वह बीमारी और ज़्यादा उसमें फैलती जाएगी। तो इसमें यूँ ध्यान रखना है हमने। हाँ, फिर साथ ही साथ ये देख ले जो पानी का है ना, उसमें सिंचाई का, सिंचाई नियमित रूप से करते रहें, सिंचाई में कोई थोड़ी भी कोताही ना बरतें। हाँ, इतना कर दें, हल्का पानी लगा ले, लेकिन जल्दी जल्दी करें, हफ्ते में 10 दिन में जो ही जरूर दिखे कि भाई हमारी फसल में जरूरत होगी पानी की, उसी टाइम पर उसमें पानी लगा दें भाई। क्योंकि देख लग रहे हो आप कितनी तेज़ धूप पड़ने लग रही है, लू चलने लग रही है, लुआ में अगर जब मान लिया थोड़ी ही कमी रहेगी, नमी की कमी रहेगी, तो पौधे ख़त्म हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, और फिर पैदावार तो होगी ही नहीं उसमें। और इस टाइम पर जब यूँ देखो कि वह फल देने लग रहे हैं, उस टाइम पर जब मान लिया नमी की कमी रहेगी, तो फिर मुश्किल मुश्किल। इतने दिन हमने इनकी खुबात करी, देखभाल करी और सारे काम करे हैं, और आखिर में आकर अगर हम इस तरह की जब कोताही बरत दिया तो फिर भारी नुकसान उठाना पड़ जाए हमें। तो इसमें टमाटर में तो हमने ये रखना कि रेगुलर या नियमित रूप से उसमें सिंचाई करते रहें, जो भी पौधे इसमें दिखें कि ग्रसित पौधे हैं विषाणु रोग थे, उन उखाड़ कर अपना एक लोन ले जाकर या तो जला दें या फिर ज़मीन में गहरा उन्हें दबा दें इसमें। और ज़्यादा कति ना देखें कि पके उड़े उसने तोड़ेंगे, पके हुए उसने तोड़ कर थोड़े अध कच्चे हैं अध पके हैं तोड़ कर उन्हें कर लें। और सबसे बढ़िया तो ये रहा भाइयों, बार बार आपने कहा कि एक बाज़ार का जो सिस्टम समझ में आ जाएगा ना किसान भाई ने, तो उसमें बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। तोड़ के ले जाए अपने, उनका वर्गीकरण कर ले जाए कि वह छोटे एक तरफ है और बीच वाले एक तरफ और बड़े एक तरफ, फिर उसमें ये देखें जो ज़्यादा पक रहे वो एक तरफ, कम पक रहे वो एक तरफ, थोड़े ज़्यादा कच्चे वो एक तरफ, यूँ हम उसका वर्गीकरण कर लेंगे तो जाते ही हमने उनके अलग अलग भाव मिल जाएंगे और किसान भाई ने उसका बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। तो भाई ये वे आपने बात इसमें और भी कराएं, लेकिन उससे पहले आपने एक

0: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: आरबीआई कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: तो भाइयों, आपने छैल गबरू फिल्म का गाना सुने, गायक कलाकार थे सविता और उनकी सखियां। और भाइयों, जिक्र कर रहे थे टमाटर फसल की देखभाल का, तो इसमें चेपा, सफ़ेद मक्खी और रस चूसने वाले कीड़े आ जाए हैं, तो उनकी रोकथाम के लिए हमने 400 मिलीलीटर मेलाथियान 50% ताकत की दवाई है, 200 से 250 लीटर पानी में इसका गुड़ बनाकर छिड़काव कर देना है। फल छेद कीड़ा भी है, यूँ भी काफ़ी नुकसान कर दे, इसकी रोकथाम के लिए 75 मिलीलीटर फैनुअल रेट है 20% ताकत की, या फिर 200 मिलीलीटर डेल्टा मैथ्रीन लेश का 2.8% ताकत की है, या एक दवाई और लेश का 60 मिलीलीटर साइपर मैथ्रीन, ये 25% ताकत की दवाई रहेगी। 200 से 250 लीटर पानी में इसका घोल बनाकर छिड़काव कर देंगे तो हमने जो ये फल छेद कीड़ा है इससे छुटकारा मिल जाएगा। हाँ, एक बात का और ध्यान रखें भाई, खरीफ फसल के लिए हम टमाटर की बीज है ना, हम नर्सरी में बिजाई कर सका। इसके लिए जिस तरह वो किस्में बताई थी आप, तीन इशार अरुण है, इशार ललित है और इशार लालिमा है, इनमें से कोई सी एक किस्म लेकर है। और हाँ, एक एकड़ के लिए इसका बीज रहेगा 200 ग्राम, और नर्सरी तैयार करने खातर जो अपना बेड बनाया है उसने थोड़ा हाथ ज़मीन तो ऊंचा कर लें, ताकि जब बरसात का मौसमी बागा होगा तो उसमें इसमें हमारी फसल में कोई नुकसान ना हो उसमें। हाँ, एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, और भाई अपने ये करें भी हैं, बीज का उपचार ज़रूर कर लें। इसका थायराम या कैप्टन दवाई है, इसका ये कर लें कि वह 1 ग्राम दवाई और उसमें 400 ग्राम बीज लेना है टमाटर का। इसमें हाँ, उसमें ये देखें कि हमने, क्योंकि एक एकड़ के लिए 200 ग्राम है, या तो आधा ग्राम कर लें, या अपने दो भाई मिलकर कर लें कि जिन्हें 2 एकड़ में बिजाई करनी है उसमें, ये कर लें। यानी कैप्टन या थीराम है 1 ग्राम दवाई और 400 ग्राम इसमें बीज लग गए, तो ये अपना उसके करके उपचार करके बिजाई करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा हो जाएगा। और ध्यान ये रखना है कि एक तो जो हमारी फसल खड़ी है उसमें नमी का पूरा इंतजाम रखें अपना, ये ना हो कि वह नमी अगर जब कमी रहेगी तो फिर फसल पर सीधा असर पड़ेगा। और दवाई छिड़कने से पहले जिस तरह ये बताया था कि भाई सफ़ेद मक्खी है, चेपा है या रस चूसने वाले हैं, इसकी दवाई का बताया था कि 400 मिलीलीटर मेलाथियान दवाई 50% ताकत की, 200 से 250 लीटर पानी में इसका घोल बनाकर छिड़काव कर दें, और जो फल 2-3 दिन बाद पक दे हो उन तोड़ कर, और उसके बाद ही स्प्रे करें, स्प्रे करके तुरंत उसमें, या 1 हफ्ते बाद ही आपने फल तोड़ कर बाज़ार में भेजने हैं, ये ना करें, क्योंकि हमने सारी चीज़ों का उसमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये इसमें देख लें, चाहे इसमें फल छेद कीड़ा है उसके लिए 500 मिलीलीटर फैनुअल रेट है, या 200 मिलीलीटर डेल्टा मैथ्रीन है, या 60 मिलीलीटर साइपर मैथ्रीन है, इनमें से एक दवाई लेकर 200-250 लीटर पानी में इसका गुड़ बढ़ाकर छिड़काव कर देंगे तो जो फल छेद कीड़ा है इससे छुटकारा हमने मिल जाएगा। और भाई ये देखा कि जो बताया कि जो फल तोड़कर वर्गीकरण करके ले जाओ ना उसमें बाज़ार में, तो हमने इसमें ज़्यादा फायदा हो जाएगा, क्योंकि उसमें सीधे सीधे भाव मिल जाएंगे, जाते हमारा बिक जाएगा। मान लिया जो ग्राह के बड़े लेने हैं उसने बड्डे आप ले रहे हो, जब मान लिया बीज के लेने हैं वो भी आप ले रहे हो, जो छोटे लेने वो भी आप ले रहे हो, और जो मान लिया को सही पक रहा है वो भी आप कृषक हो, सारी तरीके आप उसमें वेराइटी उसके पास ले जाओगे तो आराम से ले लेगा। और भाई ई वे अपना घड़ी का ना देख लो, कार्यक्रम का समय हो रहा समाप्त। अशोक भाई ने दो, सारे बाण भाइया ने राम राम।

0: आप सुन रहे थे खेत खलियान कार्यक्रम, आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं राखी आप सभी का स्वागत करती हूँ कार्यक्रम हमारी बेड़िया में। बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, पर उससे पहले आप हमारा फोन नंबर नोट कीजिए। नंबर है
2: 8527449955। जी हाँ श्रोताओ, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए 8527449955।
1: श्रोताओ, आज हम सुनने वाले हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक लड़की की नहीं बल्कि हर गांव की हर घर की कहानी है। कहानी उस बदलाव की है जो हर बच्चे के जीवन में एक दिन आता है। कभी कभी समय से पहले आता है तो कभी कभी समय के बाद, जिसे हम कहते हैं अर्ली पुबर्टी, यानी जब बच्चे का शरीर जल्दी बड़ा होना शुरू कर देता है। 8-9 साल की उम्र में ही शारीरिक या हार्मोनल बदलाव आने लगते हैं। क्यों होता है ऐसा? गलत खानपान से, मोबाइल व टीवी की आदतों से, या तनाव व सामाजिक डर से? पर सच यह है, ये कोई बीमारी नहीं बल्कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे समझने और सही दिशा देने की जरूरत है। आज की कहानी हमें सिखाती है कि अगर माता पिता, शिक्षक व समाज मिलकर समझ दिखाएं, तो हर बच्चा ये बदलाव बिना डर और लज्जा के स्वीकार कर सकता है। ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव की, जहां मिट्टी में सौंधी खुशबू है पर सोच अब भी पुरानी है।
3: राधा बेटा, सुबह से फिर वही कार्टून लगा लिया, थोड़ा बाहर भी खेल लिया कर, धूप भी जरूरी होती है।
4: माँ, बाहर बहुत गर्मी है, मैं बाद में जाऊंगी, अभी मैं वीन देख रही हूँ, फिर चिप्स खाकर स्कूल जाऊंगी।
3: हर रोज वही टीवी, मोबाइल और बाहर खेलने से परहेज, फिर कहती है सिर दर्द करता है, ना फल खाना है ना दूध पीना है, बस बिस्किट, चिप्स, नमकीन और कुरकुरे और नूडल्स, यही खिलाओ।
4: अरे माँ, स्कूल में भी ना सब यही खाते हैं और मुझे भी ना यही अच्छा लगता है। माँ, जल्दी आओ।
3: क्या हुआ राधा बेटा, गिर गई क्या? ये खून कहाँ से आया?
4: माँ मुझे नहीं पता, मैं तो बस बाथरूम गई थी, पर कपड़ों पे ही ये लाल निशान, मुझे बहुत डर लग रहा है माँ।
3: हे ईश्वर, ये तो मुझे वो बात लगती है, पर इतनी छोटी उम्र में, बस 9 साल में ही।
4: कौन सी बात माँ, मैं क्या बीमार हूँ?
3: नहीं, बीमार नहीं, बस अब ना तो बड़ी हो गई है, अब बाहर खेलने मत जाना और किसी को बताना मत।
4: पर माँ, मैं गंदी क्यों हो गई हूँ? कल तक तो सब ठीक था, आज ऐसा क्या हो गया?
3: अरे गंदी नहीं हुई बेटा, पर अब कुछ बातें बदल गई हैं। तू स्कूल मत जाना कुछ दिन, मैं सविता दीदी से पूछती हूँ कि क्या करना है। कौन है?
5: मैं हूँ सविता।
3: आओ सविता दीदी, अंदर आओ। बस राधा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, स्कूल भी नहीं भेजा मैंने।
5: अरे क्या हुआ राधा को, बुखार तो नहीं है?
3: वो असल में राधा को ना, वो बस हो गई है, मतलब पीरियड। पर दीदी ये तो बहुत जल्दी है ना, अभी तो वो 9 साल की है।
5: हाँ मैं समझ सकती हूँ आपकी चिंता, इसे कहते हैं अर्ली प्यूबर्टी, समय से पहले यौवन आना, आजकल बालिकाओं में ये देखने को मिल रहा है।
3: पर इतनी जल्दी कैसे, हमारे समय में तो 14-15 साल में होते थे।
5: बिल्कुल सही, पर वक्त बदल गया है दीदी, हमारे बच्चों का खान पान, जीवन शैली, माहौल, सब कुछ बदल गया है। बच्चे अब बाहर कम खेलते हैं, मोबाइल टीवी ज्यादा देखते हैं, जंक फूड, चिप्स, बर्गर, नूडल्स, बस यही इनकी जिंदगी है। बस इसी वजह से जो उनमें केमिकल होते हैं वो शरीर को जल्दी बड़ा कर देते हैं, मतलब ग्रोथ हार्मोन को ज्यादा बढ़ा देते हैं।
3: तो इनके खाने से बदलाव जल्दी आता है?
5: हाँ, सिर्फ खाना ही नहीं, कई बार शारीरिक गतिविधि की कमी, तनाव, नींद की कमी, ये सब भी असर डालती हैं। टीवी या मोबाइल की रोशनी से भी शरीर के हॉर्मोन्स प्रभावित होते हैं, और परिवार में अगर किसी को जल्दी पीरियड्स हुए हैं तो ये आनुवांशिक कारण भी हो सकता है।
3: हे ईश्वर, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि ये सब इतनी बड़ी बात है। राधा तो हमेशा घर पर ही रहती है, बाहर खेलने भी नहीं जाती है, बस मोबाइल, कार्टून, चिप्स, यही सब पसंद है उसे।
5: कोई बात नहीं सीमा जी, आप अब समझ गई ना, जो सुधार करना है वो अब हो सकता है। जब समझ जाते हैं तो सुधार करना भी आसान होता है। राधा को डराने की नहीं, समझाने की जरूरत है। उसे बताइए ये बीमारी नहीं है, बल्कि उसके शरीर में प्राकृतिक बदलाव हो रहे हैं।
3: पर दीदी, मैंने तो उसे कह दिया कि मंदिर मत जाना, गलत कहा क्या मैंने?
5: सीमा जी, ये सब पुरानी बातें हैं, लड़कियां गंदी नहीं होती। उस समय बस उन्हें साफ सफाई, सैनिटरी पैड का सही इस्तेमाल और संतुलित आहार की जरूरत होती है। और हाँ, राधा को दूध, हरी सब्जियां, फल, सुबह शाम थोड़ा खेल कूद, ये सब करना बहुत जरूरी है। आप समझाएं उसे।
3: सही कहा दीदी, मैं खुद डरी हुई थी।
5: माँ अगर समझेगी तो बेटी डरेगी नहीं, गर्व से बढ़ेगी।
6: क्या बात है सीमा, आजकल राधा दिखाई नहीं दे रही है, कहीं स्कूल से भागने की आदत तो नहीं पड़ गई इसको?
3: नहीं नहीं काका, वो थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है उसकी।
6: छोटी सी उम्र में बीमारी, अब राधा बड़ी हो गई है।
5: गोपाल काका, ऐसी बातों का मजाक नहीं उड़ाया करते, ये कोई हंसी की बात नहीं है, समझ की बात है।
6: अरे सविता बेटी, मैं तो यूं ही मजाक में बोल देता हूँ, मुझे क्या पता कि बात इतनी गंभीर है।
5: गांव में जब भी किसी लड़की के साथ ऐसा बदलाव होता है तो लोग चुप रहते हैं या मजाक उड़ाते हैं। क्या कभी किसी ने सोचा उस बच्ची पर क्या बीतती होगी?
6: ये बात तो आप सही कह रही है, हम तो हंसी में कह देते हैं, पर बच्ची को तो डर लगा रहता होगा।
5: बिल्कुल, राधा सिर्फ 9 साल की तो है, ये बदलाव प्राकृतिक है, पर उम्र से पहले आए तो हर किसी को डर लगता है। इसकी वजह कोई किस्मत नहीं, हमारी जीवन शैली है।
6: जीवन शैली मतलब?
5: मतलब आजकल के बच्चे जो बाहर खेलते नहीं हैं, बस दिन भर घर पे रहते हैं, मोबाइल, टीवी, यही इनकी जिंदगी बन गई है। पूरे समय बाहर का खाना खाते हैं, फैक्ट्री वाला खाना खाते हैं जिनमें रसायन होते हैं, और वो हमारे हॉर्मोन्स को जल्दी बढ़ा देते हैं, जिससे हमारा शरीर जल्दी बड़ा दिखने लगता है।
6: अरे ये तो हमें कभी बताया ही नहीं गया, हम तो सोचते थे ये ईश्वर का खेल है।
5: ईश्वर ने शरीर बनाया है, पर हमें दिमाग तो दिया है ना काका, समझने के लिए। अगर समय से पहले ये बदलाव दिखें तो डरना नहीं चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत है।
3: मैं भी डर गई थी पहले, मुझे लगा कुछ अब शगुन हो गया, पर दीदी ने समझाया तो अब मन शांत हुआ है।
6: बेटा, तुम दोनों ने मेरी आंखें खोल दी, अब मैं किसी भी लड़की के साथ ऐसा मजाक नहीं करूंगा, बल्कि गांव की और लोगों को भी बताऊंगा। यह शर्म की बात नहीं, ज्ञान की बात है।
5: यही तो चाहिए था काका, अगर गांव में बड़े लोग समझ जाएं, तो लड़कियां भी बिना डर के जी पाएंगी। नमस्ते भाई और बहनों, आज हम सब यहाँ एक बहुत जरूरी विषय पर बात करने आए हैं, समय से पहले यौवन, जिसको हम अर्ली प्यूबर्टी भी कहते हैं। आप सबने देखा होगा कई बच्चियां जो 8-9 साल की उम्र की है, उनमें ऐसे बदलाव आने लगते हैं, शरीर का बढ़ना, स्तनों का विकास, मासिक धर्म शुरू हो जाना। पहले ये 13 से 14 साल की उम्र में होता था, पर अब जल्दी हो रहा है। आप जानते हैं क्यों?
6: क्यों
7: क्यों
6: क्यों
7: क्यों?
5: क्योंकि हमारे बच्चों की जीवन शैली, खान पान, दिनचर्या पहले से बहुत बदल गई है।
8: दीदी, इसका इलाज क्या है?
5: देखिए, इलाज से ज्यादा जरूरी है सही जानकारी और समय पर सलाह। अगर आपकी बच्ची जल्दी बड़ी होने लगे या उसके शरीर में जल्दी बदलाव दिखे तो सबसे पहले डरिए नहीं, शर्माइए भी नहीं, बल्कि डॉक्टर या आशा से बात करिए। साफ सफाई रखिए, पौष्टिक खाना दीजिए और भावनात्मक सहारा दीजिए।
6: अगर दीदी कोई मजाक करे
5: तो उसे समझाइए, काका ये बीमारी नहीं है, शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया है। लड़कियों को शर्म से नहीं आत्मविश्वास से जीना सिखाइए। अगर हर घर में माँ बाप खुलकर बात करेंगे तो कोई राधा फिर ना डरेगी और ना रोएगी।
4: दीदी मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ।
5: हाँ बेटा जरूर बोलो।
4: जब मुझे वो पहले हुआ था तो मुझे बहुत डर लगा था। माँ ने कहा बाहर नहीं जाना, बाहर मत खेलना, पर मैं अब जाती हूँ। मैं गंदी नहीं हूँ, मैं बस बड़ी हो रही हूँ और बड़ी होकर मैं डॉक्टर बनूंगी ताकि दूसरी लड़कियों को भी डरना ना पड़े।
7: राधा मेरी बेटी है और मुझे तुम पर गर्व है। मैं भी हर माँ को यही बताऊंगी कि बेटी को डराए नहीं, समझाए।
6: अरे भाई अब तो मैं भी गांव में सबको बताऊंगा कि वो कोई शर्म की बात नहीं बल्कि जीवन का नियम है।
5: यही तो असली बदलाव है। जब एक माँ, एक बच्ची और एक काका तीनों मिलकर सोच बदल दें, तो पूरा गांव बदल जाता है। हर माँ बाप, हर काका, हर बहन, हर भाई से मेरी यह गुजारिश है, अगर आपके पास कोई बच्ची या बच्चा उम्र से पहले बदलाव से गुजर रहा है तो उन्हें डराए नहीं, उन्हें छुपाए भी नहीं, पर समझाए और अपनाए। बच्चों को ये खुलकर बताइए कि यह बदलाव प्राकृतिक है और उनका शरीर सुंदर व सामान्य है।
7: अब मैं राधा को हर बात खुले दिल से बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर माँ अपनी बेटी से ऐसे ही बात करे, प्यार से, विश्वास से।
4: मुझे अब शर्म नहीं आती है क्योंकि अब मुझे पता है बड़ी होना कोई गलती नहीं है, ये तो एक नई शुरुआत है।
6: और हाँ, अब मैं गांव में किसी भी बच्ची पर हंसूंगा नहीं।
8: दोस्तों राधा की कहानी सिर्फ एक बच्ची की नहीं, उन हजारों की है जो अचानक हुए बदलाव से घबरा जाते हैं क्योंकि हमने उन्हें पहले से तैयार ही नहीं किया। अर्ली पुबर्टी यानी शरीर का जल्दी बदलना कोई डर की बात नहीं बल्कि समझ की मांग है। जब किसी बच्चे में 8-9 साल की उम्र में ही शारीरिक या मानसिक परिणाम आने लगते हैं तो सबसे पहले जरूरी है कि हम डरे नहीं बल्कि समझे और संभाले। हमारे खान पान में रसायन, हमारी भाग दौड़ की दिनचर्या में बदलाव, बच्चों का टीवी व मोबाइल पर रहना और तनाव भरा माहौल, ये सब मिलकर इस बदलाव को जल्दी ला सकते हैं। पर अगर माता पिता ध्यान दे तो यही बदलाव स्वस्थ और सामान्य बन सकता है। याद रखिए, बच्चे तब नहीं डरते जब शरीर बदलता है, वे तब डरते हैं जब बड़ों की चुप्पी उन्हें अकेला कर देती है। अगर हम अपने बच्चों से प्यार से खुलकर बात करेंगे तो वो हर सवाल, हर डर हमसे साझा करेंगे और यही है असली शिक्षा। तो आइए आज से ही एक नया प्रण ले कि हर घर में समझ की बात होगी, शर्म की नहीं। हर बच्चा अपने शरीर को डर से नहीं, सम्मान से देखेगा, क्योंकि जब हम अपने बच्चों को समझ देंगे तो उनका बचपन नहीं छिनेगा बल्कि मजबूत और आत्मविश्वास से भरा भविष्य बनेगा। बदलाव रुक नहीं सकता पर समझ उसे सुंदर बना सकती है। श्रोताओं मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी ने आपको जरूर प्रोत्साहित किया होगा। आप हमसे फोन व पत्र के माध्यम से जुड़े रह सकते हैं। उसके लिए आप हमारा पता व नंबर नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। श्रोताओं इसी के साथ हमारा नंबर भी लिखिए, नंबर है
2: 8527449955। जी हाँ श्रोताओ, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए, 8527449955।
8: इसी के साथ आप सभी से फिर से मुलाकात होगी इसी समय इसी दिन। तब तक के लिए आप सभी को मुझ राखी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार।

आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमारी पीढ़ियाँ आकाशवाणी का। ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर, न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर। दिन के 3:35 हुए हैं। इसी के साथ संपन्न होती है हमारी आज की दूसरी प्रसारण सभा। FM 103.5 MHz पर विविध भारती के कार्यक्रमों का रिले जारी रहेगा। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर। शाम 5:30 बजे तीसरी सभा में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं, शुभ रात्रि, क्षमा कीजिए, चाहते हैं।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर, प्रसार भारती की ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर। यह आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। शाम के 5:30:17 हुए हैं। अब हमारी तीसरी सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं। प्रस्तुत है युवाओं का दैनिक कार्यक्रम युवा संसार।

0: कार्यक्रम युवा संसार सुन रहे हमारे सभी साथियों का स्वागत है। नमस्कार साथियों, आप सभी की साथी याचना।
1: आपके साथी विशाल का भी नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत में आज हम बात करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू पुण्यतिथि के बारे में। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने भारत की आज़ादी और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी पुण्यतिथि प्रत्येक वर्ष 27 मई को मनाई जाती है। इस दिन देश भर में लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके कार्यों को याद करते हैं। नेहरू जी ने भारत को आधुनिक और मजबूत राष्ट्र बनाने का प्रयास किया। उनके नेतृत्व में बड़े बड़े उद्योग, बांध और वैज्ञानिक संस्थान स्थापित किए गए। उन्हें बच्चों से विशेष प्रेम किया, इसलिए बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहते थे। उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू महान नेता और अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। उन्होंने भारत की प्रगति के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया।
0: बिल्कुल सही कहा विशाल आपने। और देखिए तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, एक कुशल राजनेता, महान विचारक और जैसा कि आपने बताया बच्चों की प्रिय चाचा नेहरू। आज हम उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं। इस दिन समस्त राष्ट्र उन्हें श्रद्धापूर्वक स्मरण करता है। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में एक संपन्न कश्मीरी परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही प्राप्त की और उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड के हेरो स्कूल और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में गए। वहाँ से बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त कर वे भारत लौटे और भारत लौटने के बाद नेहरू जी महात्मा गांधी के संपर्क में आए और स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने अनेक बार कारावास का सामना किया परंतु देश की आज़ादी का संकल्प कभी नहीं छोड़ा। जेल में रहते हुए उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जैसी महान पुस्तकों की रचना की और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। साथ ही साथ नेहरू जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। उन्होंने 17 वर्षों तक इस पद पर रहकर देश को एक सुदृढ़ नींव प्रदान की। वे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के गहरी आस्था रखते थे। उन्होंने हमेशा सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया और इसीलिए हम उन्हें जो है आज नमन करते हैं।
1: इसी के साथ साथियों, अभी हम बात करेंगे रक्तदान के बारे में। रक्तदान महादान माना जाता है। रक्त महान जो मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। किसी दुर्घटना, बीमारी या ऑपरेशन के समय मरीज को रक्त की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे समय में रक्तदान करने वाला व्यक्ति किसी के जीवन को बचाने का कार्य करता है। इसीलिए रक्तदान का सबसे बड़ा दान कहा जाता है। रक्तदान से अनेक लोगों की जान बचाई जा सकती है। अस्पतालों में कैंसर, दुर्घटना और कुछ ऐसे इलाजों में मरीजों का अक्सर रक्त की ज़रूरत होती है। यदि लोग नियमित रूप से रक्तदान करें तो रक्त की कमी की समस्या समाप्त हो सकती है। रक्तदान से समाज में समानता और सेवा की भावना बढ़ती है। रक्तदान महादान जो कहा जाता है, रक्तदान मानवता की सच्ची सेवा है। एक यूनिट रक्त किसी व्यक्ति को नया जीवन दे सकता है।
0: बिल्कुल विशाल, रक्तदान वह प्रक्रिया है जिसमें एक स्वस्थ व्यक्ति स्वेच्छा से अपना रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए देता है। और अगर हम देखें तो एक बार में लगभग 350 से 450 मिलीमीटर रक्त दान किया जा सकता है। यह रक्त ब्लड बैंक में सुरक्षित रखा जाता है और आवश्यकता पड़ने पर रोगी को चढ़ाया जाता है। भारत में प्रतिवर्ष लाखों लोगों को रक्त की आवश्यकता होती है। इसके प्रमुख कारण हैं, अगर देखें तो सड़क दुर्घटनाओं में भारत में प्रतिदिन हजारों सड़क दुर्घटनाएं होती हैं जिनमें घायलों को तुरंत रक्त की ज़रूरत होती है। और इसके लिए भी हमारे ज़रूरी होता है कि हमारे जो लोग हैं वो रक्त दान करें ताकि हमें पूर्ण मात्रा में उन घायलों को जो है रक्त दे सकते हैं। इसके अलावा देखें तो प्रसव के दौरान जब बच्चे पैदा होते हैं तो माताओं को भी अगर अत्यधिक रक्तस्राव होने का जो है लक्षण दिखता है तो उस समय भी उन्हें रक्त की आवश्यकता होती है। और अगर हम कुछ बीमारियां देखें तो कैंसर या फिर हमारी जो थैलेसीमिया है उनमें उनके रोगियों को भी रक्त की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और अगर अब हम बात करें कि जो हम कौन से व्यक्ति होते हैं जो हमारे 18 व्यक्ति हैं जो रक्तदान कर सकते हैं वो रहेंगे 18 से 65 वर्ष के बीच की आयु के, और जो उनका वजन होना चाहिए वो कम से कम 18 से 65 वर्ष की आयु का होना चाहिए। और अगर देखें तो जो रक्तदाता होता है उसका जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो लगभग 12.5 से लेकर और 16 उसमें MMHg के बीच में होना चाहिए। और एक व्यक्ति हर महीने एक बार जो है रक्तदान कर सकता है। जब हम रक्त देते हैं तो हम केवल खून नहीं देते बल्कि किसी के जीवन में उम्मीद की किरण जगाते हैं। और साथियों अब सुनते हैं एक गीत जो रहेगा प्रेम पुजारी फिल्म से। इसको जो गाया है वो गाया है किशोर कुमार ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे प्रेम पुजारी फिल्म से गीत, जिसको गाया था किशोर कुमार ने, इसके बोल लिखे थे नीरज ने और इसको संगीत दिया था SD बर्मन ने। और साथियों, आप सभी जानते हैं कि आज बुधवार है और बुधवार के दिन हम आपके लिए लाते हैं कार्यक्रम करियर काउंसलिंग। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि जो सतत विकास है उसमें रोज़गार या फिर आप अपना करियर कैसे बना सकते हैं उसके बारे में।
1: बिल्कुल, आज के समय में सतत विकास का महत्व तेज़ी से बढ़ रहा है। इसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करते हुए आर्थिक और सामाजिक प्रगति करना। इस क्षेत्र में युवाओं के लिए अनेक रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं। सतत विकास के क्षेत्र में करियर न केवल अच्छा भविष्य देता है, बल्कि समाज में और प्रकृति की सेवा करने का अवसर भी मिलता है। इसके क्या लाभ हैं? पर्यावरण संरक्षण में

0: में योगदान मिलता है, समाज की सेवा करने का अवसर मिलता है, सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में नौकरी मिल सकती है। यह क्षेत्र सम्मान और संतोष प्रदान करता है। सतत विकास के क्षेत्र में करियर आज के समय में तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है। इसमें पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा जैसे कार्य शामिल हैं। यह एक उपयोगी और सामाजिक करियर विकल्प है।
1: बिल्कुल सही कहा विशाल आपने कि आज जैसा युग है उसमें जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और वनों की कटाई के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों की कमी जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रही है, तब सतत विकास एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। और सतत विकास का अगर हम अर्थ देखें तो ऐसा विकास जो वर्तमान की पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करे और साथ ही साथ भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी संसाधनों को सुरक्षित रखे। और देखें तो जो अगर हमारा कि इसकी सतत विकास की जो इसमें करियर की मांग है वो क्यों बढ़ रही है, तो इसमें देखें तो सबसे पहले तो पिछले कुछ वर्षों में जब सतत विकास के क्षेत्र में करियर की मांग तेज़ी से बढ़ी है, इसके कई प्रमुख कारण हैं, जिसमें सबसे पहला है कि जलवायु परिवर्तन की गंभीरता, जो बाढ़, सूखा, तूफान और तापमान वृद्धि जैसी समस्याओं ने सरकारों और कंपनियों को पर्यावरण के प्रति जागरूक होने पर मजबूर किया है। दूसरा देखें तो ESG यानी कि एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस नीतियाँ जो हैं वो आज बड़ी बड़ी कंपनियों के निवेशकों और उपभोक्ताओं के दबाव में आकर अपने कारोबार को टिकाऊ बनाने की दिशा में काम कर रही हैं। और तीसरा अगर हम देखें तो जो कारण हैं वो रही हैं हमारी सरकारी नीतियाँ। हमारी भारत सरकार ने भी 2070 है वहाँ तक जो है नेट ज़ीरो उत्सर्जन का लक्ष्य बनाया है और 2030 तक 500 GW नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का संकल्प लिया है। इन सभी कारणों से सस्टेनेबिलिटी यानी कि सतत विकास में पेशेवरों की मांग जो है वो प्रतिदिन बढ़ रही है। और देखें तो इसी कारण हम जो है हमारे इस क्षेत्र में करियर के लिए अनगिनत नए अवसर ढूंढ सकते हैं और उभर भी रहे हैं। और अगर देखें तो जैसा कि विशाल ने बताया कि ये क्षेत्र हमारा केवल रोज़गार के लिए नहीं होगा बल्कि समाज और पृथ्वी की सेवा करने का अवसर भी हमें जो है प्रदान करेगा।
0: बिल्कुल। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवा देते हैं गीत। फिल्म एजेंट विनोद से ये गीत है, गाया है अंशिका अय्यर, अरिजीत सिंह और जोए बरवा ने, लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत दिया है प्रीतम ने। आइए साथियों सुनते हैं गीत।

0: साथियों, अभी आपने सुना गीत फिल्म एजेंट विनोद से। गाया था अंशिका अय्यर, अरिजीत सिंह और जॉय बर्वा ने। लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत दिया था प्रीतम ने।
1: और साथियों, अब अगर हम बात करें कि आपको अगर सतत विकास में जो है अपना रोज़गार या फिर करियर बनाना है, तो उसके लिए कुछ आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं हैं जो आपको करनी होती हैं। सबसे पहले तो आप जो है 12वीं पास होंगे, तो आप किसी भी विषय में आप जो है अपनी 12वीं कर सकते हैं। इसके अलावा देखें तो यह क्षेत्र जो है वो अत्यधिक अंत विषयक है, यानी कि आप किसी भी प्रकार के विषय ले सकते हैं जो विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक पृष्ठभूमियों के लिए जगह बनाता है। देखें तो हमारा जो सबसे पहला रहता है कि हम हमारी स्नातक हासिल करते हैं, उसमें जो प्रासंगिक डिग्रियों में पर्यावरण विज्ञान, पारिस्थितिकी, कृषि, जीव विज्ञान, सतत विकास में आप BSc या फिर BA कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा नॉन मेडिकल बैकग्राउंड होता है, जिसमें आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होता है, उसमें आप बीटेक में एक जो कोर्स होता है वो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग वो कर सकते हैं, जो रहेगा 4 साल का। और अगर आगे बढ़ते हैं और आप मास्टर्स करते हैं, तो उसमें आप कॉरपोरेट ESG, वरिष्ठ प्रबंधन या फिर नीतिगत जो वकालत होती है उसमें भूमिकाओं के लिए अक्सर मास्टर डिग्री चाहिए होती है, जिसमें सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट में आप MSc, MA या फिर MBA की को जो है प्राथमिकता दे सकते हैं। और अगर देखें कि आपको अपने करियर में आगे बढ़ना है, तो उसके इन डिग्रीज़ के अलावा आपको जो है कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं जो आपको आपके करियर में बढ़त देते हैं, वो करने होते हैं कि आपकी इच्छा होती है कि आप करें या फिर ना करें, जिसमें रहेगा ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, लीड यानी कि लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिज़ाइन, या फिर कार्बन ऑडिटिंग जैसे जो हमारे कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं जो फ्रेमवर्क में प्रमाण पत्र हासिल कर सकते हैं आप इन सब में। और अगर देखें तो आप जो ये सर्टिफिकेट्स होते हैं ये कहाँ से हासिल कर सकते हैं, तो ये कुछ छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं, आप कोर्सेरा हो गया हमारा, ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उन पर कर सकते हैं।
0: बिल्कुल याचना, जैसे कि सतत विकास के क्षेत्र में युवाओं के लिए अनेक रोजगार उपलब्ध हैं, जैसे कि पर्यावरण वैज्ञानिक, जल संरक्षण विशेषज्ञ, वन अधिकारी, कृषि विशेषज्ञ, ऊर्जा सलाहकार, रिसर्च और सामाजिक कार्यकर्ता जैसे पद इस क्षेत्र में प्रमुख करियर विकल्प हैं। आज सौर ऊर्जा, वन ऊर्जा, जैविक खेती, कचरा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्य की मांग बढ़ती जा रही है। सरकारी विभागों के साथ साथ निजी कंपनियां और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी इस क्षेत्र में रोजगार प्रदान करती है।
1: और बिल्कुल विशाल, अगर आगे हम देखें कि इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पद होते हैं जिनकी आवश्यकता आज बढ़ी है, तो उसमें सबसे पहला हमारा रहता है सस्टेनेबिलिटी मैनेजर। ये किसी भी कंपनी की पर्यावरण नीतियों की देखरेख करता है और यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करे। इसके अलावा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, यानी कि जब हमने BTech में एनवायरमेंटल इंजीनियर की बात की थी, वो इसमें रहेगा, पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए तकनीकी समाधान विकसित करता है। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर, ये कंपनी को सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारियों का प्रबंधन करने में मदद करते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्लाइमेट चेंज एनालिस्ट, यानी कि जलवायु परिवर्तन के आंकड़ों का अध्ययन करके नीति निर्माताओं को ये सुझाव देते हैं कि कहाँ पर क्या कमी है, इसके अलावा क्या सुधार हो सकता है। ग्रीन फाइनेंस एनालिस्ट जो होते हैं हमारे, वो निवेशकों को जो निवेश करते हैं उनके मूल्यांकन करते हैं निवेशों का, और जो उसमें पर्यावरण के लिए लाभदायक हों उन निवेशों को वो जो है अब एक पहल देते हैं। और आगे भी हम बात करेंगे कि भारत में अगर हम देखें तो इस क्षेत्र में जो हमारे क्या करियर का ऑप्शंस हैं उनके बारे में, तो हमारे अगर भारत में देखें तो कई सरकार ने कई नीतियां भी निकाली हैं, जैसे कि राष्ट्रीय सौर मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जल जीवन किशन और यहीं पर स्वच्छ भारत अभियान जैसी योजनाएं शुरू की हैं जिनमें लाखों पेशेवरों की ज़रूरत होती है।
0: और बिल्कुल, साथ ही इस क्षेत्र में सफल होने के लिए पर्यावरण विज्ञान, भूगोल, कृषि इंजीनियरिंग और सामाजिक विज्ञान जैसे विशेष विषयों का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। इसके अलावा प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता, जिम्मेदारी और मेहनत की भावना भी जरूरी है। सतत विकास का अर्थ है ऐसे विकास जो पर्यावरण का नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करे। इसीलिए इस क्षेत्र में करियर की जो संभावनाएं हैं लगातार बढ़ती जा रही हैं।
1: बिल्कुल विशाल, और अगर देखें तो जैसा कि हम भारत में अवसरों की बात कर रहे हैं तो कुछ कंपनियां भी हैं जैसे कि टाटा ग्रुप हो गई हमारी, महिंद्रा हो गई, विप्रो हो गई, इन्फोसिस, ये कंपनियां सस्टेनेबिलिटी विभाग को तेज़ी से विस्तार दे रही हैं। और अगर देखें तो हमारी कुछ सरकारी भी वो हैं, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, इसके अलावा WWF इंडिया, ग्रीन पीस इंडिया और UNDP जैसी संस्थाएं बड़ी संख्या में भर्ती करती हैं। और अगर हम देखें तो हमारा भारत जो है स्टार्टअप की दुनिया में भी आगे तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इस क्षेत्र में भी वो जो है अपना करियर बना सकते हैं। उसमें रहेगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर एनर्जी और ऑर्गेनिक फार्मिंग से संबंधित सैकड़ों नए उद्यम शुरू हो रहे हैं, उनमें वो अपना करियर जो है वो चुन सकते हैं। और आगे देखें तो इसमें आपने जैसा विशाल बताया था युवाओं के लिए वो एक अच्छा अवसर प्रदान कर सकता है। और अगर देखें तो सतत विकास के क्षेत्र में करियर केवल एक नौकरी नहीं रहेगी, यह एक मिशन है धरती को बचाने का। और जब आप सतत विकास के क्षेत्र में काम करते हैं तो आप अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर और हरित दुनिया बनाने में योगदान देते हैं। भारत जैसे विकासशील देश में जहाँ पर्यावरण चुनौतियाँ बहुत अधिक हैं, वहाँ इस क्षेत्र में पेशेवरों की मांग आने वाले दशकों में कई गुना बढ़ने वाली है। इसीलिए आज ही इस क्षेत्र में कदम रखें और अपने करियर को आप एक जो है महत्वपूर्ण दिशा दे सकते हैं।
0: बिल्कुल, और इसी के साथ साथियों अभी हम बात करेंगे शिक्षा का दान महादान। दान करना भारतीय संस्कृति का महान परंपरा रही है। भोजन, वस्त्र और धन का दान महत्वपूर्ण माना जाता है, परंतु शिक्षा का दान सबसे श्रेष्ठ माना गया है। शिक्षा मनुष्य के जीवन को उज्जवल बनाती है और इसे सही मार्ग दिखाती है। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षा का दान महादान है। शिक्षा मनुष्य को ज्ञान, संस्कार और आत्मविश्वास प्रदान करती है। शिक्षित व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझता है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है और समाज तथा देश की प्रगति में योगदान देता है। शिक्षा ज्ञानता और जो गलत बातों को हमसे दूर रखता है। शिक्षा जीवन का प्रकाश है। जो व्यक्ति शिक्षा का दान करता है वह केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे समाज का भविष्य उज्जवल बनाता है। हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा में जो है सहयोग करना चाहिए। वास्तव में शिक्षा का दान महादान कहा जाता है।
1: बिल्कुल विशाल, अगर हम वास्तव में शिक्षा का अर्थ देखें तो केवल अक्षर ज्ञान या फिर किताबी पढ़ाई तक सीमित नहीं है। शिक्षा का वास्तविक अर्थ है मनुष्य का सर्वांगीण विकास, यानी कि शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और नैतिक। शिक्षा मनुष्य को सोचने, समझने और सही निर्णय लेने की शक्ति देती है। एक शिक्षित व्यक्ति न केवल अपना जीवन सुधारता है बल्कि समाज और राष्ट्र को भी उन्नति में योगदान देता है। शिक्षा का दान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता है। जहाँ पर हम देखें तो एक शिक्षित माँ अपने बच्चों को शिक्षित करती है, एक शिक्षित शिक्षक हजारों विद्यार्थियों का जीवन संवारता है

0: और इस प्रकार शिक्षा का एक दान अनेक जीवनों को प्रभावित करता है। शिक्षा का दान केवल व्यक्तिगत नहीं, यह समाज और सरकार की भी जिम्मेदारी है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देश का प्रत्येक बच्चा विद्यालय जाए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाए। शिक्षित भारत ही समृद्ध भारत होगा और तभी संभव है जब हम सब मिलकर इसके लिए कदम उठाएं। और देखें तो शिक्षा के दान में शिक्षक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। जैसा हमने बोला, एक सच्चा शिक्षक केवल पाठ नहीं पढ़ाता बल्कि अपने विद्यार्थियों के जीवन को दिशा देता है। वह अपना सारा ज्ञान, अनुभव और समय विद्यार्थियों को देता है। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में शिक्षक को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। और जैसा कि हमने बात की कि हमारे समाज और सरकार की भी जिम्मेदारी है, तो उन्हें जो हमारा समाज है वो कुछ ऐसे NGOs बना सकता है, और कुछ ऐसे NGOs हैं भी जिसमें वो हमारे जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं किसी भी वजह से, तो उसमें वो उनकी मदद करते हैं ताकि वो निशुल्क बच्चे पढ़ सकें। इसीलिए हमें कुछ छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए कि हम अपनी जो किताबें हैं वो हमारे काम में नहीं है, वो उन ज़रूरतमंद बच्चों को दे सके जो उनको पढ़ना चाहते हैं।
1: तो साथियों, अब समय हो गया चलने का। फिर से मिलते हैं किसी अन्य कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा संसार कार्यक्रम, आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्स पर। शाम के 6 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी समाचार, जिन्हें हम अपने केंद्र से रिले करेंगे।

0: मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों को मदद करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के दूसरे चरण की मंजूरी को स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा है कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की खंडपीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upsconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्चस्तरीय बैठकें की। श्री गोयल ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2030 तक $50 अरब तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। कई प्रमुख मानवाधिकार संगठनों और छात्र संस्थाओं ने पाकिस्तान में बलूच नागरिकों के जबरन गायब किए जाने की बढ़ती घटनाओं की कड़ी निंदा की है। आरोप है कि इन घटनाओं को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। इन संगठनों ने कहा कि कई प्रभावित परिवारों के लिए ईद का त्यौहार शोक, अनिश्चितता और अपनों से बिछड़ने का दर्द में बदल गया है। और खेलों में IPL क्रिकेट के पहले एलिमिनेटर मुकाबले में आज शाम 7:30 बजे न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इस मैच की विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से मुकाबला करेगी, वहीं हारने वाली टीम प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की।

रात 9:30 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शाम 6:20 पर कृषि जगत में आप सुनेंगे भेंट वार्ता एक किसान से। बच्चों के लिए सजीव फोन कार्यक्रम बालक मंडली सुनिएगा शाम 7 बजे। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे शाम 7:30 बजे। एक फिल्म से कार्यक्रम में रात 9:15 पर और मन चाहे गीत कार्यक्रम में रात 10 बजे। ये थी जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की। अब कल के मुख्य आकर्षण।

रात 9:30 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम कंट्री वाइड और रात 9:45 पर इनसाइट्स। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम प्रसारित होगा दोपहर 12:30 पर। सुबह 7:15 पर विविधा कार्यक्रम में आप सुनेंगे गजल पर साहित्य चर्चा। वार्ताकार होंगे श्री दिनेश कुमार दधीची। युवा संसार कार्यक्रम लेकर आएंगे सुबह 7:25 पर। युवाओं का दैनिक कार्यक्रम, क्षमा करें इसे एक बार फिर से सुने, सुबह 7:25 पर लेकर आएंगे सुबह सवेरे कार्यक्रम। युवाओं का दैनिक कार्यक्रम युवा संसार आप सुनेंगे शाम 5:30 बजे। सुबह 6:50 पर कृषि की बातें कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा अदरक की काश्त। खेत खलिहान कार्यक्रम में दोपहर 2:30 बजे जानकारी दी जाएगी बेल वाली सब्जी फसलों की देखभाल बारे। शाम 6:20 पर कृषि जगत में डॉक्टर राजेश कुमार से पुनः प्रसारित बातचीत का विषय रहेगा कपास फसल की कीड़ों से रक्षा। ग्रामीण संसार में शाम 7:00 बजे बातचीत का विषय रहेगा मलेरिया रोग कारण व उपचार। सुबह 8:30 पर लोक संगीत कार्यक्रम में कलाकार होंगी संतोष नागिया। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुनेंगे सुबह 6:05 पर। श्री रामचरितमानस गान सुबह 6:40 पर। सुगम संगीत कार्यक्रम के प्रसारण का समय रहेगा रात 8:25। फिल्म संगीत आप सुन सकेंगे हेलो रोहतक में सुबह 9:00 बजे। चित्रपट संगीत कार्यक्रम में दोपहर 1:10 पर। शाम 7:30 बजे एक फिल्म से कार्यक्रम में रात 9:15 बजे और मन चाहे गीत कार्यक्रम में रात 10:00 बजे। ये थी हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है।

0: याद रखिए, जल है तो कल है, जल का संरक्षण करें, इसे व्यर्थ बहने से रोकें। आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है, कुछ ही क्षणों बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे चंडीगढ़ केंद्र से।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की मंजूरी दी। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली DEMU रेलगाड़ी चलाने की स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और जींद वासियों ने इस रेल को जींद और सोनीपत के बीच चलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने पंचकुला में बिजली विभाग के कॉल सेंटर का औचक निरीक्षण किया। अधिकारियों को शहरों में 2 घंटे और गांवों में 4 घंटे के अंदर बिजली संबंधी शिकायतों के समाधान के निर्देश दिए। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने धान की सीधी बिजाई पर बल दिया और पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ सहित देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। प्रधानमंत्री की अपील पर हिसार में छबीले लगाकर राहगीरों को पानी पिलाया गया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की मंजूरी दी। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों का समर्थन करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में मदद करेगी।
1: सार्थक पीडीएस स्कीम करीब 25,000 करोड़ का ये प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो राज्य सरकारों के एजेंसीज को FCI गोडाउन से डिफरेंट डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट बियर करने में दिक्कत आ रही थी। भारत सरकार ने फैसला लिया है कि उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे इस प्रोग्राम के तहत। दूसरा, जो फेयर प्राइस शॉप्स है उसमें जो डीलर्स का रिमुनरेशन लंबे टाइम से स्टैटिक था, तो वो भी इसमें आज फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला लिया गया, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली 10 डिब्बों वाली DEMU रेलगाड़ी चलाने की स्वीकृति दे दी है। यह रेलगाड़ी

0: रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी। इसमें 2 ड्राइवर पावर कार और 8 पैसेंजर कोच शामिल हैं, जिनकी कुल क्षमता 2,500 यात्रियों की है। यह रेल शून्य कार्बन उत्सर्जन करती है। इसमें यात्रियों के लिए आधुनिक डिजिटल डिस्प्ले, ऑटोमेटिक दरवाजे और एयर कंडीशनिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली DEMU रेलगाड़ी हरियाणा को देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि यह रेलगाड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेल के विकास के इतिहास में नए अध्याय की शुरुआत है। भारतीय रेलवे द्वारा देश की पहली हाइड्रोजन DEMU रेल को आधिकारिक मंजूरी दिए जाने का जींद वासियों ने स्वागत किया है और इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार जताया है। जींद नगर परिषद की अध्यक्ष डॉक्टर अनुराधा सैनी ने कहा कि यह जींद के लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि आज जब दुनिया ईंधन के किल्लत और प्रदूषण की मार झेल रही है, ऐसे में यह शत प्रतिशत प्रदूषण मुक्त रेल देश को एक नई दिशा दिखाएगी।
1: सबसे पहले तो अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। जींद से सोनीपत तक हाइड्रोजन डेमो ट्रेन को चलवाने के लिए रेलवे ने जो आज मंजूरी दी है, ये बिल्कुल प्रदूषण फ्री है और इंडिया में पहली हाइड्रोजन ट्रेन जींद को मिली है। ये जींद के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है।
0: हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने आज पंचकुला के सेक्टर 20 में बिजली विभाग के कॉल सेंटर का औचक निरीक्षण किया। मीडिया से बातचीत में श्री विज ने बताया कि निरीक्षण के दौरान उन्होंने वहां मौजूद कर्मचारियों से बातचीत की और उनकी कार्यप्रणाली की विस्तृत जानकारी ली।
2: हमने उत्तरी में और दक्षिण में दोनों जगह अपने अपने कंप्लेंट सेंटर खोले हुए 24 आवर ये वर्क करते हैं। कोई भी 1912 पे डायल करके अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकता है। मैं चेक करने आया था कि दर्ज करने के बाद कितनी देर में लाइट ठीक हो। मैंने कुछ शिकायतकर्ताओं से यहाँ से नंबर देखकर बात की है, कुछ सेटिस्फाइड है कुछ नहीं। ऐसे ही रोहतक सर्कल में पेंडेंसी बहुत ज्यादा, लगभग 2200 के करीब सुबह से कंप्लेंटे आ चुकी है। आधी ये ठीक कर चुके हैं, आधी ये भी पेंडिंग है। अगर हमें और लोग लगाने पड़ेंगे लगाएंगे ताकि लोगों की कंप्लेंटे ठीक टाइम पे ठीक।
0: मोरनी क्षेत्र का उल्लेख करते हुए श्री विज ने बताया कि वहां पिछले दिन से बिजली आपूर्ति बाधित थी। इस संबंध में उन्होंने अधीक्षक अभियंता को मौके पर कर्मचारी भेजकर शीघ्र बिजली बहाल करने के निर्देश दिए। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि शहरी क्षेत्रों में बिजली संबंधी शिकायतों का समाधान अधिकतम दो घंटे के भीतर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 4 घंटे के भीतर सुनिश्चित किया जाए। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने आज कैथल में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कुल 12 शिकायतों पर सुनवाई हुई। 4 शिकायतकर्ता बैठक में नहीं पहुंचे, जबकि 7 शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया और 5 शिकायतों को लंबित रखा गया। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में मंत्री ने धान की सीधी बिजाई पर बल दिया।
3: तरह के हालात है उसमें सीधी बिजाई बेहतर रहेगी। किसानों से मेरा अनुरोध है वो सीधी बिजाई करें, उनको कई फायदे होंगे। एक तो पानी में ट्रैक्टर का क्योर लगता है, तेल ज्यादा फूकता है। अगर सीधी बिजाई करेंगे तो कम तेल के अंदर अच्छी तरह से बिजाई हो जाएगी और 8-9 दिन पहले वो अनाज पकेगा, उसके अंदर पानी का खपत भी कम होगी और खाद भी कम लगेगा।
0: उन्होंने बताया कि सरकार किसानों को सीधी बिजाई अपनाने के लिए सीधे उनके खाते में 4500 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि देती है। उन्होंने आम जन से सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान भी किया। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ सहित देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से आम जन से अपील की है कि लू से बचाव के लिए अधिक से अधिक पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय पानी अपने साथ रखें। श्री मोदी ने अगर संभव हो तो राहगीरों को भी पानी पिलाने को कहा। प्रधानमंत्री की अपील पर हिसार शहर में आज अनेक जगहों पर छबील लगाकर लोगों को मीठा पानी पिलाया गया। हिसार से मेडिसिन विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर कुणाल नारंग ने बच्चों, बुजुर्गों, खुले में काम करने वाले किसानों और श्रमिकों को लू से बचने के लिए विशेष एहतियात बरतने की सलाह दी है।
4: हीट स्ट्रोक या फिर लू लग जाना, ये एक मुख्य बीमारी है जो इस समय गर्मी में बहुत पाई जाती है। इसका मुख्य इलाज प्रिवेंशन, सूती कपड़े पहने, वेंटिलेशन को मेंटेन करें, बहुत ज्यादा पानी पीते रहें, गर्मी में अगर काम कर रहे हैं, धूप में काम कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोल पाउडर या पानी का सेवन निरंतर करते रहें, धीरे धीरे आधे आधे घंटे बाद रेस्ट लेकर शेड का यूज करते रहें, छाया में थोड़ी देर आराम करते रहें।
0: विद्यालय शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष शंकर लाल धूपर ने आज अपना पदभार संभाल लिया। पदभार संभालने से पहले उन्होंने बोर्ड परिसर में स्थापित मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष पूजा अर्चना की। पदभार ग्रहण करने के बाद श्री शंकर लाल धूपर ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता शिक्षा व्यवस्था में सुधार और बोर्ड परीक्षाओं को निष्पक्ष व पारदर्शी बनाना होगी। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में नकल और बाहरी हस्तक्षेप को समाप्त करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे, साथ ही बोर्ड की कार्यप्रणाली को अधिक जवाबदेह, तेज और विद्यार्थियों व शिक्षकों के लिए सुविधाजनक बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की नई शिक्षा नीति को हरियाणा में पूर्ण रूप से लागू करना उनकी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा। हरियाणा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के माध्यम से पीएम कुसुम योजना के तहत प्रदेश के किसानों को खेतों में सौर ऊर्जा पंप लगाने के लिए 75% तक की सब्सिडी दी जा रही है। किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। इस पंप की कुल लागत का 30% केंद्र सरकार और 45% राज्य सरकार देती है। किसान को केवल अपनी तरफ से 25% राशि का भुगतान करना होता है। किसान अपनी जरूरत के अनुसार 3 हॉर्स पावर से लेकर 10 हॉर्स पावर तक के सौर ऊर्जा पंप लगा सकते हैं। मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की मंजूरी दी। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली DEMU रेलगाड़ी चलाने की स्वीकृति दी। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
5: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुन वाले सारे बण भाइया ने राम राम। भाइयों गर्मी बहुत तेज चल रही है और इसमें खुद का बचाव, अपने पशुओं बचाव और अपनी फसलों बचाव करना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये देखो ये चलती रही लू तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया आगे आने वाले समय में। इसलिए अपने पशुओं को अपना खुद का बचाव करना है। खेत में जब भी जिस तरह बार बार कहा भाइयों ने कि भाई 9 बजे के बाद खेत में काम ना करें और उसके बाद 6 बजे के बाद ही जाएं खेत में, तो इससे गर्मी से बचा रहा जा सके। वरना गर्मी लग गई तो फिर देखो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बार बार अगर मान लिया कोई मजबूरी है खेत में काम कर रहे हैं तो पानी लगातार पीते रहे, छाया में जब भी थोड़ा ऐसा लगे कि भाई 1-2 मिनट का भी हमने रेस्ट करना तो अपनी छाया में जाकर बैठ के उसने आराम तो कर लें। साथ में देखो भाई ये तो काम तो हमने अपने करने जारी रखने पड़े भाई, ये तो है नहीं कि वह हमें एकदम बैठ जाएँ एक तरफ जाकर, जो काम है अपने वो तो करने पड़ेंगे हमने, लेकिन उसमें एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। इसमें गर्मी का जैसे अपने खेत में जा रहे हैं भाई, खेत में अपना चाहे मतलब 9 बजे तक भी काम करना हमने, फिर भी पानी तो साथ में रखें अपने नलके पर, तो जहाँ से आपने भर लिया वो एक मटका पानी का लिया और अपना वहाँ किसी वृक्ष के नीचे रख ले और उसके ऊपर बोरी बारी भी करके पहले देखो पहले तो कितने उस तरीके से रखे दे। और अपने पेय पदार्थ तो और भी बढ़िया हुआ कर दे, जैसे रबड़ी रुबड़ी बनाना था ये करना था, ये सारी चीज़ें बहुत बढ़िया हुआ कर दी। और वो एक बार रबड़ी पीने के बाद में इस हार बार बार प्यास लगती, और प्यास लगती तो आदमी अगर पानी पिएगा लगातार पीता रहेगा तो उसको कोई लू वगैरह नहीं लग सकती। तो ये तरीके हार दे अपने उसमें खेत में, और वो खूब दाऊँ उसमें दोपहर में भी काम करे रहा हार दे, और जितना जल्दी हो उसके छाया में चले जाए और अपना पानी पीते रहे, ये ध्यान रखना है। और फिर बात जिस तरह कर रहे थे कि बच्चे कुछ भी है किसान भैया ना, तो भाई अपना काम तो करना पड़ेगा भाई, चाहे कोई भी है काम, चाहे गर्मी है सर्दी है बरसात है जो भी मौसम है उसमें हमने करना पड़ेगा। अपने किसान भाई इसमें डाले भी पड़ रहे हैं भाई, लगातार लागे रहना है। और कई बार ये देखा जो अपने किसान भाई हैं, ये देखा भाई काम तो लगातार कर रहे हैं और अलग अलग खेती करने ला रहे हैं, जैसे भाई मान लिया अपनी ये परंपरागत खेती तो करते आ रहे हैं, साथ में उसमें कि भाई कोई कितने फूलों की खेती कर ली, उसके जुड़े हुए धंधे कर लिए, साथ में खेती से साथ जुड़ रहे हैं जैसे मछली पालन है मुर्गी पालन है, यानी एक जागरूक किसान अपने उसमें अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए और अपने एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए बहुत कुछ करता है और हर एक क्षेत्र में करता है। अब ये भी हो गया एक अकेली मान लिया फसल की भाई, जैसे अब है धान लगाएगा भाई कि भाई अकेले धान के ऊपर नहीं है कि भाई हो सकता है कि बरसात ना हो तो मुश्किल हो जाए, तो अपने दूसरी भी फसलें लगा लेनी चाहिए ताकि अगर मान लिया एक फसल में कोई दिक्कत हो जाए तो दूसरी में अपने उसकी भाई की पूर्ति हो जाए। तो एक जागरूक किसान तो ये इसमें बहुत ज़्यादा रखा है, अपने पूरा ध्यान रखता है, चाहे उसके पशुओं से संबंधित हो, चाहे वो अपने मान लिया पशुओं का हरा चारा हो, यानी उनकी पूरी देखभाल रखेगा अपनी खेती के है। जो एक जागरूक किसान के उसमें के काम हुआ रहे देखो उसमें कि वह अपने भरोसे जगह पर बीज लिया होगा, बढ़िया उसका किस्म का बीज लिया होगा, और उसमें ये देखा है कि इसमें किन किन का उसकी वह उसके पैदावार हो सके, कितनी पैदावार हो सके, सारी चीज़ें यानी ध्यान रख के ना जब जाकर वो काम करता है। और वही एक यूँ कह इसका वह जागरूक है किसान है, या यूँ कह इसका कि वह एक पढ़ा लिखा और श्याण और समझदार किसान ये उसके जिसमें सारी चीज़ें बारे में पता हो। तो आज बुधवार है, इसी क्रम में एक के दिन सुनवार भेंट वार्ता एक किसान से, और ये पूर्व प्रसारित बातचीत है, और हमारे आज के किसान हैं श्री सुरेंद्र सोरान। तो सुनो ये भेंट वार्ता एक किसान से।
1: भेंट वार्ता एक प्रगतिशील किसान से। भाइयों इस क्रम में आज एक और युवा किसान साथी को हमने आमंत्रित किया है। आप हैं सुरेंद्र सोरान और गांव आपका दौलतपुर जो कि हिसार जिले में पड़ता है। सुरेंद्र भाई आपका स्वागत है।
2: सर नमस्कार, पहले तो आकाशवाणी रोहतक को मेरा नमस्कार, और आज मैं यहाँ बुलाया हूँ सबसे बड़ा धन्यवाद करता हूँ। और मेरा शुभ नाम सुरेंद्र सोरान
1: जी,
2: गांव दौलतपुर डिस्ट्रिक्ट हिसार, उपराष्ट्रपति से सम्मानित।
1: बहुत बढ़िया सुरेंद्र जी, प्रगतिशील किसान बनने का ये जो सफर है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई?
2: सर इसकी शुरुआत तो काफी लंबे टाइम से चलती आई है
1: जी,
2: 2018 से इस चीज में मैं लगे हुआ हूँ। 2018 में मैंने ग्रीन पोलिया हाउस लगाया था
1: जी। आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई है?
2: शिक्षा मेरी ग्रेजुएशन कम्प्लीट है।
1: अच्छा, ग्रेजुएशन करने के बाद में आमतौर पर ये तमन्ना होती कि हम कहीं ना कहीं नौकरी में जाएं।
2: जी सर।
1: लेकिन आपने ये जो खेती बाड़ी का जो एक पथ चुना, ये इसके पीछे क्या कारण रहा?
2: इसका रीजन ये रहा है कि सर हमारे बड़े बुजुर्ग जो जितने हैं सब प्रारंभिक खेती करते आए हैं
1: जी,
2: तो उसमें कुछ ऐसा बदलाव हमने देखा नहीं जो एक प्रोग्रेस होना चाहिए किसान को
1: जी।
2: हमने उनके प्रति कुछ ऐसा देखा कि हमने एक आगे आना पड़ेगा युवा को, और उस चीज़ से हमने कुछ सीखने का मिला। आगे देखा हर चीज़ तरीके से, किस तरीके से हम मैनेजमेंट कर पाएं
1: जी।
2: फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि जी क्या हमने करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उसको देखते हुए हमने इस लाइन में घुसने की कोशिश की। भाई कुछ ना कुछ तो चेंजिंग करना पड़ेगा
1: जी,
2: जब तक चेंजिंग नहीं करेंगे तो बदलाव नहीं आएगा। और सबसे मोटी समस्या यही है, आज हर किसान की मोटी समस्या है, उसको किसी भी तरीके से ना उसका भाव मिल पाता प्रॉपर तरीके से, ना उसकी बढ़िया तरीके से मैनेजमेंट हो पाती, हर टाइम वो एक कर्जे में डूबा रहता है।
1: बिल्कुल, ये देखा गया है कि कोई व्यक्ति किसी चीज़ का उत्पादन करता है
2: जी,
1: तो उसके अपने भाव होते हैं
2: जी
1: कि मेरे ये रेट हैं
2: जी,
1: लेकिन किसान का जो उत्पादन है उसमें उसके भाव नहीं होते, बल्कि दूसरा व्यक्ति है वो उसका मोल हाँ, लगाता है।
2: आज जो फार्मर्स जो आज बैक है सर
1: जी,
2: वो आज यही कारण है, क्योंकि वो एक आपका मूल्य जो है रेट वो नहीं दे पाता
1: जी,
2: खुद के जो रेट होते हैं वो लगा नहीं पाता, उसका वैल्यू दूसरा लगाता है
1: जी,
2: वो कोड़ियों के दाम में उसके भाव बिकता है। 6 महीने उसको फसल को तैयार करता है, सारे काम कर लेता है, वो मंडी में जाने के बाद उसको दूसरा ही उसको परचेज करता है
1: जी।
2: तो कहीं ना कहीं हर जगह से मतलब एक किसान जो है वो प्रताड़ित है
1: जी।
2: तो हर चीज़ें देखनी है जी, यही है, फार्मर एक पूरा देश को खाना खिलाता है और उसकी कोई नहीं सुनाई करता। अगर कहीं कोई बात चलती है, सुनाई है, तो उसमें ये कहते हैं कि किसान को ये मिल गया सब्सिडी में, ये मुआवजा मिल गया, ये हो गया, ये कभी प्रकृति की मार में आता है
1: जी,
2: कभी ये भाव की मार में आता है, कभी किसी चीज़ में, कभी किसी चीज़ में, तो ये हर टाइम पीछे ही रहता है, किसान इसी चीज़ से बैक है सर।
1: जी सुरेंद्र जी, देखिए जो सरकारी संस्थाएं हैं वो अपना काम कर रही हैं, और जितनी भी सहायक संस्थाएं हैं वो सब किसान के हित के लिए कोई ना कोई अपनी योजना चलाते रहते हैं
2: जी जी।
1: लेकिन बात यह है कि व्यक्तिगत स्तर पर
2: जी,
1: जैसे आपने सोचा कि इसमें आमदनी कम होती है, तो आपने नया क्या विचार सोचा इसके लिए?
2: आमदनी के बारे में हमने ये सोचा सर कि जो खेती चल रही है गेहूँ धान ये, उससे एक तो अपना इन्वायरमेंट खराब हो रहा है
1: जी,
2: सबसे बड़ी बात तो ये, उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो एक पानी का है,
1: बहुत ज़्यादा पानी चाहिए,
2: बहुत ज़्यादा
1: धान में दोनों में
2: पैडी के अंदर तो इतना पानी चाहिए कि सर बहुत ज़्यादा वेस्टेज है वो
1: जी।
2: वैसे आज कुछ पॉलिसियाँ ऐसी हैं जो गवर्नमेंट ने चलाई हुई हैं, माइक्रा पे गई हैं
1: जी,
2: हॉर्टिकल्चर पे गई हैं, कुछ टैंक बनवाए हैं, फार्मर्स को बहुत सारी ऐसी ऐसी सुविधाएं दे रहे हैं।
1: आपने कौन सा तरीका अपनाया?
2: हमने ये इसका फ्लड इरिगेशन को छोड़ के
1: जी,
2: और माइक्रा के ऊपर गए सर, हमने ये देखा कि सबसे पहले
1: टपका सिंचाई विधि जी,
2: तो उससे हमने ये चीज देखा है कि जी पानी का जो जितना बचाव है ना, इससे बहुत है, बहुत ज्यादा है
1: जी।
2: हम एक बार फ्लड में जो पानी देते हैं ना, उस एक बार फ्लड के पानी में हम अगर टपका सिंचाई से पानी लगाते हैं तो 10 बार उसको पानी दे सकते हैं,
1: इतनी बचत है,
2: इतनी बचत है
1: जी। तो आपने फिर क्या नया तरीका क्या निकाला?
2: नया तरीका ये लगाया सर मैंने, पहले इसके मैं सब्जी की कास्त में गया।
1: अच्छा,
2: उसमें मैंने कुछ चीज़ें गई, देखा, सीखा, भाई छोटी छोटी सब्जियां लगा के अपनी मैनेजमेंट की, एक छोटा सा एक एकड़ के अंदर ग्रीन पॉली हाउस लगाया
1: जी,
2: उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर वहां से मैंने एक मोटिवेट मिला कि आप क्यों ना बाग की तरफ
1: जी
2: रुझान हो
1: जी,
2: बाग का एक लंबा टाइम है और जो वेजिटेबल का जो है उसका लेवल नीचे थोड़ा है, कम टाइम में मतलब होती है वो
1: जी।
2: और बाग का स्केल ये कि एक बार लगाने के बाद में लंबा 20-30 साल मतलब उसको हम
1: उत्पादन ले सकते,
2: उत्पादन ले सकते हैं
1: जी,
2: मैनेजमेंट करके
1: जी।
2: सबसे अच्छी बात ये है कि जी अगर कोई भी फार्मर किसान भाई अगर जे बाग लगाना चाहता है तो वो लगाएं, बहुत इसके अंदर चीज़ें सीखने को भी मिलती है।
1: तो आपने कैसे शुरुआत की?
2: शुरुआत सर हमने पहले स्टार्टिंग से किन्नू लगाया।
1: कितने एरिया?
2: 3 एकड़ में, 3 एकड़ के अंदर हमने किन्नू लगाया। उसमें हमने बिना ड्रिप बिना टैंक
1: जी
2: 2 साल तक वो पौधे हमने ट्रैक्टर के साथ पानी का टैंकर ले लेके उनके साथ में मतलब पड़े
1: सिंचाई की
2: जी
1: जी।
2: सिट्रस एक ऐसी है सर जो कि नहर के पानी से ही ज़्यादा मतलब वो अच्छी चलती है, हम बोरिंग पानी नहीं दे सकते।
1: अच्छा
2: हाँ, सबसे बढ़िया बात ये है कि अगर बाग लगा रहे हैं तो उसके लिए नहर का पानी बहुत ज़रूरी है।
1: ठीक है, तो आपने किन्नू का लगाया
2: जी।
1: उसके बाद?
2: उसके बाद हमने उसमें ध्यान देखते हुए हमने टपका सिंचाई पे गए।
1: अच्छा,
2: उसका सारा हमने ड्रिप इरीगेशन करवाया, फिर हमने फ्लड वो टैंक बनवाया, उससे हमने उस चीज़ में देखा कि भाई कितनी बचत है कैसे है सारी चीज़ें। गवर्नमेंट ने भी हमारे को सपोर्ट किया, उसमें सब्सिडी दी
1: जी।
2: तो उसके बाद में आहिस्ते आहिस्ते करते करते हमने देखा कि इसमें तो यार पानी की बहुत बचत है और होना भी चाहिए। 3 एकड़ से आज मैं 11 एकड़ के ऊपर बाग में चला गया।
1: तो कौन कौन से फलदार वृक्ष लगाए आपने?
2: फलदार वृक्ष सर हमने 11 एकड़ के अंदर 2500 प्लस पौधे मैंने लगाए हुए हैं। उसके अंदर जैसे कि 1 एकड़ के अंदर डबल क्रॉपिंग की हुई है आड़ू, आड़ू के साथ में वनस्पति।
1: अच्छा
2: जी, आड़ू का क्या है, आड़ू की सेल्फ लाइफ कम होती है और नाशपाती की ज़्यादा होती है
1: जी।
2: जब तक नाशपाती प्रोडक्शन देना स्टार्ट करेगी, जब तक 3 से 4 साल के बीच में आड़ू प्रोडक्शन देना स्टार्ट कर देता है
1: जी,
2: तो उससे क्या है अपना इनकम सोर्स स्टार्ट हो जाता है, लेबर खर्चे हैं वो निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैसे जैसे वो मतलब उसकी टाइम होगा आड़ू का, तो उसके बाद में उसमें हम प्रोडक्शन लेके अपना खर्च निकाल सकते हैं। तो रही बात नाशपाती की, नाशपाती 7 से 8 साल ले लेती है
1: जी।
2: 7 से 8 साल का जो बैकअप है उसका, उस बीच में फार्मर अकेला अगर उसमें नाशपाती का अगर बाग लगाता है तो वो लॉस में जाएगा, क्योंकि किसान एक ऐसी चीज है कि जी वो इतना लंबा टाइम मतलब बिना इनकम के बगैर वो नहीं चला सकता
1: जी,
2: उसकी इतनी पीछे की बैक नहीं होती। तो उससे मतलब हमने ये सोचा कि इसी खेत के अंदर डबल क्रॉप ली जाए, और उससे हमने पता चला कि डबल करने से ये बेनिफिट होगा। हमने हर जगह, कई जगह मैंने अपने सरकारी इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ली बाग के बारे में, सिट्रस के हैं, अपनी आड़ू की है, वनस्पति की है, वेजिटेबल की है, हर तरीके की मतलब जहाँ जो मेरे को जरूरत थी
1: जी,
2: मैंने उनको पहले सबसे पहले उनको स्किल किया। हाँ
1: जी,
2: हमने वहाँ से करके सारी चीज़ें देखा। मेरे बड़े भाई हैं नरेंद्र शोरण, MBA किया हुआ है, तो वो भी एक बहुत बड़ा मेरा बैक है, हर तरीके सपोर्ट देते हैं
1: जी,
2: हर तरीके से। किसी भी प्रकार की अगर मेरे को कोई जरूरत है
1: जी,
2: तो मेरे भाई मेरे पास में खड़ा है।
1: तो इसके साथ और कौन से पौधे लगाए आपने?
2: इसके साथ में सर मैंने मौसमी लगाया
1: जी,
2: सीडलेस सॉरी चवन्नी छाप।
1: अच्छा,
2: मौसमी का नाम है चवन्नी छाप, वो हमने लगाई। और उसके साथ में लगाया नींबू
1: जी,
2: कुंभकाट।
1: दोनों की इकट्ठी?
2: दोनों की इकट्ठी, मतलब 10x10
1: जी,
2: और एक स्पेसिंग 20x20
1: लाइन से लाइन का फासला
2: जी, एक लाइन से लाइन का ग्रो 20 फुट और एक लाइन में
1: पौधे
2: से पौधे की डिस्टेंस 10 फुट
1: 10 फुट की।
2: हाँ, तो उस 10 फुट के बीच में मतलब नींबू लगा दिया, एक 20 फुट की मतलब 20x20 का हो गया तो वो मौसमी हो गया
1: जी।
2: तो उस तरीके से मैंने ये कंसेप्ट बनाया।
1: ठीक है,
2: मौसमी और जो नींबू है सर, उसका भी ऐसा ही शेड्यूल है
1: जी।
2: मौसमी भी 5 साल के बाद में मतलब प्रोडक्शन देना स्टार्ट करती है, और नींबू जो मैंने कुंभ काट वैरायटी लगाई है इसका मतलब सेम शेड्यूल है।
1: अच्छा,
2: ये सर्दी में ज़्यादा फ्रूटिंग देता है।
1: ठीक है,
2: और उसी टाइम मतलब इसको पानी की और की सारी इन्वायरमेंट सेम होता है। अगर हम इसके अंदर कुंभ काट की बजाय अगर 12 मासी लगाते हैं नींबू
1: जी,
2: तो उसमें हमारे को दिक्कत आती है। जिस टाइम मौसमी के अंदर पानी रोकना होता है, फल सेट होता है, इसके अंदर एक प्रक्रिया होती है
1: जी।
2: हम जब इसके अंदर फल तैयार होता है तो इसमें पहले फरवरी तक उसको पानी देंगे, फिर उसके बाद में मतलब उसका फ्रूट सेट होगा तो उसमें 2 महीने मतलब पानी नहीं देंगे,
1: पानी रोक लेंगे,
2: रोक लेंगे
1: जी।
2: जब तक उसमें फल रुकेगा, दाना मटर के दाने जब तक सेट नहीं होगा तो हम उसके अंदर पानी नहीं लगाएंगे। पानी लगाएंगे तो उससे क्या होगा, वो फ्रूट नीचे गिर जाएगा
1: जी। इसके अलावा और कौन से?
2: इसके अलावा सर मैंने चीकू लगाया
1: जी,
2: चीकू के साथ में अमरूद लगाया था।
1: अच्छा
2: जी, और मेरे मौसम के हिसाब से, मेरे एरिया के हिसाब से मैंने जो चीज़ मैंने लगाई है वो मतलब एक अलग है
1: जी।
2: हर पौधा एक अपने लेवल में एक इन्वायरमेंट के हिसाब से सेट होता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उसमें हमने तरीके से हर चीज़ की मैनेजमेंट देख के भाई प्रॉपर इनका टाइम का फ्लावरिंग का टाइम भी यही है
1: जी,
2: और पानी का शेड्यूल यही है, खाद का पीएच वैल्यू यही है, उनको मध्यम रखते हुए तो हमने ये डबल डबल कंसेप्ट कराया हुआ था।
1: ठीक है,
2: इसका क्या है, कई चीज़ें ऐसी है, चीकू की भी लाइफ लंबी है
1: जी,
2: 30 से 40 साल तक मतलब जब ये मेच्योर होता है तो इसके अंदर नीचे ऐसा कुछ नहीं है भी कोई भी इंटरक्रॉप आप ले सकते हैं। और

0: फार्मर मरेगा नहीं
1: जी,
0: 3 साल उसको हर घर से खिलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है
1: जी।
0: 3 साल के बाद में जब उसमें थोड़ा थोड़ा फ्रूट स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें क्या है, एक बीच में रो के हिसाब से भी हम बो सकते हैं। जैसे आलू बो दिया
1: जी,
0: भाई, उस पौधे के अंदर भी पानी नहीं गया, वो हमारा ड्रिप सिस्टम से चलता रहा, और बीच में हमने काश्त आलू की कर दी, जैसे कोई भी और फसल कर दी जो बीच में कंद की सब्जी है,
1: जी
0: तो उससे भी हमारे को कुछ ना कुछ मतलब
1: इनकम
0: इनकम सोर्स रहेगा
1: जी।
0: उसमें हमारा क्या रहा, पौधा भी बच गया, और बीच में काश्त करने से हमारा खर्चा भी निकल गया, और कुछ कुछ क्या है कि भाई हमारा हर पौधे का एक आना जाना रहता है, उसके अंदर देख रेख रहती है
1: जी।
0: अकेला हम बाग लगा के छोड़ देते हैं, उसमें पूरा प्रॉपर एरिया को हम संभाल नहीं पाते हैं
1: जी।
0: तो इससे क्या है, थोड़ा सा मतलब 8-10 आदमियों का रोजगार चलता रहता है
1: जी
0: परमानेंट। हम किसी को एक रोजगार दे रहे हैं, उसके सहारे किसी का पेट चल रहा है, कई घर घर अपना खाना खाते हैं
1: जी।
0: उसी से, उसी की कमाई से उसी में लग जाता है, उसी में अपना एक फार्मर प्रोग्रेस करता है
1: जी।
0: जैसे जैसे उसमें करेगा कुछ ना कुछ उसमें पाएगा। ऐसा नहीं है कि फार्मर्स को, मैं एक अपील भी करना चाहूँगा, कोई भी फार्मर्स अगर अपनी खेती करना चाहता है, बागवानी खेती करना चाहता है, सबसे पहले उसको सजेशन ये दूंगा कि वो पहले प्रॉपर आप खुद ज्ञान ले, अपना कहीं से भी ट्रेनिंग ले, जानकारी ले, किसी फार्मर से मिलें, एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, 10 जगह सबके पास जाएं, मिलें, हर कोई ना कोई फार्मर उनको अलग अलग गाइड करेगा
1: जी,
0: सुने सबकी और करे मन की।
1: सुरेंद्र भाई, इस तरह की जो फसलें हैं भाई लगा लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या उनको आती है मार्केटिंग की, यानी कि बाजार में बेचने की
0: जी। जी,
1: तो आपकी क्या व्यवस्था रहती है?
0: व्यवस्था सर ये है कि इसमें आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन बहुत बढ़िया कराया, मार्केट वैल्यू जो है
1: जी,
0: इसमें बिचौलिए जो हैं, पूरी साल मेहनत करता है किसान, किन्नू संतरा की पूरी साल की ये खेती है, फरवरी के अंदर उसका हार्वेस्टिंग होती है
1: जी,
0: मार्च में उसके फ्लावरिंग आती है, तो पूरा एक सेकुलर जो है साल का होता है
1: जी।
0: साल तक पौधा, एक पौधे के ऊपर पौधा फल तैयार करना बहुत कठिनाई की बात है, बहुत सारे खर्चे हैं, सब चीज़ें इंसेक्टिसाइड हैं और हैं, तो उसमें भी मतलब उसकी वैल्यू मिल नहीं पाती
1: जी।
0: मार्केट में जब ले जाते हैं तो उसमें क्या है, उसके औने पौने दाम में वो बिक जाता है। एक फार्मर को मतलब एक अपना पर्सनली वो करना चाहिए कहीं भी स्टैंड, तो वहाँ अपना अगर रोड है, कहीं भी अपना दुकान है और है, तो एक पर्सनली अगर आप खुद बेचोगे, अपनी खुद की
1: बिक्री
0: करोगे तो
1: जी,
0: तो उसमें उससे लिए बढ़िया रहेगा, कोई फर्म बनाए अपने नाम से स्पेशल
1: जी,
0: उसके लिए एक बढ़िया सजेशन है।
1: और तो इसमें एक मोटा सा अंदाज़ा हम चाहेंगे कि जो हमारी परंपरागत खेती है उसमें और जो हमारी बागवानी की है, इन दोनों में कितना अंतर रहता है, कितना लाभ हम इसमें ले सकते हैं?
0: जी, सही कहा आपने, इसमें लाभ की जो बात है, हम जो परंपरागत खेती जो करते हैं उसमें एक लिमिटेशन है
1: जी,
0: भाई हम इस लेवल से ही मतलब इतना जोर मार के इतना निकाल सकते हैं, खर्चा काट के 50,000 रुपये मतलब पर एकड़ के हम बचा सकते हैं जो मार के
1: जी।
0: और इसके अंदर बागवानी के अंदर क्या है कि जैसे जैसे पौधा बड़ा होएगा, जैसे जैसे उम्र वो खाएगा
1: जी,
0: उसकी बढ़िया तरीके से मैनेजमेंट होके क्रॉपिंग कटिंग छटिंग सब उसका प्रॉपर चलता है, तो वो हर साल का इनकम सोर्स उसका बढ़ता जाता है,
1: बढ़ता रहेगा।
0: फिर दूसरी बात उसकी ये रही कि जब उसका प्रोडक्शन तो बढ़ गया, उसको बेचना कहाँ है
1: जी,
0: सबसे पहले उसको ये मंडी जो है ये अगर प्रॉपर तरीके से उसकी मैनेज हो जाए, और मैं इसमें एक सरकार का भी मतलब बहुत चाहूँगा कि सरकार भी हमारा सहयोग दे, अपने जहाँ जहाँ एरिया है जो हब है इस जगह में ये काम होना चाहिए, वहाँ अगर जे मंडियाँ हो जाए प्रॉपर रेट से मतलब बिकने लग जाए

0: तो किसान नहीं मरेगा।
1: देखिए, मंडियां तो आसपास तकरीबन सभी जगह हैं,
0: जी
1: लेकिन अपनी जो वो प्रोडक्ट, अपना जो उत्पाद है, उसकी वैल्यू बनाना, और ये तो अपने हाथ में है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, अपना कोई ठिकाना बनाए, या बहुत से किसान भाई ऐसे हैं कि उनके खेत से फल है, सब्जी है, वो चले जाते हैं,
0: जी
1: लेकिन उसके लिए थोड़ी सी मेहनत ये रहेगी कि अपना एक ब्रांड बनाएं, अपना एक नाम है वो बनाएं। ज़्यादातर किसान भाइयों की ये एक बात रहती है कि हम ऑर्गेनिक करें, और जो उपभोक्ता हैं उनकी भी यही एक फरमाइश रहती है कि हमें बिना खाद के और बिना दवाई के जो प्रोडक्ट हैं, जो फल सब्जी हैं, वो हमें मिले। तो इस तरह का अगर काम करके और किसान भाई अपना कोई एक नाम बनाता है, अपना एक एक तौर तरीका बेचने का बना लेता है, तो उससे काफ़ी लाभ उसको हो सकता है।
0: जी,
1: तो इस तरह का काम है, वो किया जा सकता है। तो एक मोटा सा अंदाज़ा आप थोड़ा बता पाएँ कि गेहूं की फसल है और या धान की फसल है, उनको मिला के कितना फ़ायदा होता है और इसमें आपको कितना लाभ मिल सकता है।
0: इसमें सर क्या है कि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है,
1: जी
0: हमने बाग की वैल्यू क्या बनाई है, उसकी क्वालिटी क्या बनाई है, हर तरीके से तो बहुत डिफरेंस है। मतलब आम खेत में हम लाख रुपए निकाल रहे हैं सब खर्चा समेत, तो इसमें हम, मैं मानता हूं कि 2 से 2.5 लाख रुपए मतलब पर इनकम ज्यादा है,
1: यानी दुगनी से ज़्यादा
0: दुगनी
1: फायदा इसमें
0: जी
1: हो सकता है।
0: हो सकता,
1: जी
0: हो क्या सकता है।
1: जी
0: उसमें भी एक फर्क है ना सर, क्यों,
1: जी
0: फर्क ये है कि उसमें मेहनत की कितनी की है,
1: जी
0: उस पौधे के ऊपर हमने प्रॉपर तरीके से क्या किया, कितना पौधा लिया, कितना प्रोडक्शन निकाला।
1: जी
0: प्रोडक्शन निकालना तो हमारा काम है ना सर,
1: बिल्कुल
0: वो प्रकृति के ऊपर भी कई बार चीज़ें हैं, कई बार प्रकृति ये कर देती है, कई बार ओलावृष्टि है,
1: जी
0: कई बारिश है, कई तूफान है, कुछ है, तो उन हालातों में भी तो एक जमींदार फेस करता है ना सर।
1: बिल्कुल। तो यानी कि कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इन सब दिक्कतों को देखते हुए, इन सब परेशानियों को देखते हुए भी अच्छा उत्पादन
0: ले सकते
1: ले
0: हैं
1: सकते हैं।
0: जी।
1: इसके बाद में आपका हम थोड़ा सा जानकारी चाहेंगे कि कहीं आपने किसी प्रतियोगिता में भाग लिया हो, कहीं कोई पुरस्कार, कोई इनाम आपको मिला हो।
0: हाँ सर, मैंने पुरस्कार मैंने कई बार मिल चुके हैं
1: जी
0: प्रगतिशील किसान के। 2021 में मैंने अपना बुन्ना के अंदर, फतेहवाज के अंदर आता है,
1: जी
0: वहाँ मैं सम्मानित हुआ MLA दुड़ाराम जी से और डॉक्टर अर्जुन सिंह सैनी से। तो सबसे पहला स्टेज मेरा वही था,
1: जी
0: फिर उसके बाद में मैंने और भी एक दो जगह किया, फिर मेरा उपराष्ट्रपति से सम्मानित हुआ दिल्ली
1: जी
0: 2023 में। उसके बाद में सर मैं गिगनाऊ लुआरू के अंदर आता, भिवाणी के अंदर आता है,
1: जी
0: वहाँ सम्मानित हुआ। हमारे हिसार यूनिवर्सिटी के अंदर मैं सम्मानित हुआ, तो कई जगह से मतलब मेरे को बहुत से अच्छा मान मिला है,
1: जी
0: और प्राइवेट जो संस्थाएं हैं कई, तो वहाँ भी मैं सम्मानित हुआ हूँ।
1: जी सुरेंद्र भाई, जो फसल का उत्पादन करते हैं उसमें ये देखा गया है कि अगर उसका मूल्य संवर्धन करें, यानी कि उसकी कोई ना कोई चीज़ बना के बेचें, तो उसके ज़्यादा भाव मिलेंगे। तो क्या इस दिशा में आपने कुछ सोचा है?
0: जी, ये आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर फार्मर अगर आपका सेटअप लगाता है
1: जी
0: कोई भी किसी प्रकार का, हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट है, उसी लिए तो मैंने आपसे कहा था, अगर कुछ गवर्नमेंट हमारे को किसी प्रकार का बेनिफिट दें, तो उस बेनिफिट से हम कुछ ना कुछ अपना अलग से कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी अचार है, कोई भी पपड़ी है, सुखा के मसाला बना के उसको ग्रेडिंग पैकिंग करके हम बेच सकते हैं,
1: जी
0: मतलब उसका भी मेरा ये पूरा वो है। मैं ये सरकार से अनुरोध करूँगा कि ये एक थोड़ा सा फार्मर को जो इन चीज़ों में आगे आ रहे हैं उनका थोड़ी सी हेल्प करें।
1: बिल्कुल। देखिए, बागवानी विभाग है और दूसरे बहुत सारे विभाग हैं जो कि आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते आप थोड़ा सा मन बनाएं कि हमने ये काम करना है। उसका पहले प्रशिक्षण लें, प्रशिक्षण लेने के बाद आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी विभाग से ज़रूर सहायता मिलेगी, बस थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, थोड़ी सी आपने मेहनत करनी है, थोड़ी सी जागरूक होना है
0: जी।
1: तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये मिला के और एक अच्छी आय मिल सकती है। और आप जैसे युवा अगर खेती में बागवानी में आगे आएंगे तो नवाचार उसमें होते रहेंगे, कुछ ना कुछ नई चीज़ें हैं उसमें जोड़ते रहेंगे और अपने एक्सपीरियंस वो साझा करेंगे, अपने एक्सपेरिमेंट है वो भी उसमें करते रहेंगे, खोजबीन करेंगे तो अच्छा एक आय का साधन बन सकता है। और जैसे आपने बताया कि आपके साथ में और भी लोग काम कर रहे हैं तो उनकी रोजी रोटी है वो भी चल पड़ेगी और एक अच्छा मुनाफा है
0: जी
1: वो ले पाएंगे। सुरेंद्र जी, आप स्टूडियो में आए और आपने अपनी विचार, अपने अनुभव साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: तो भाइयों, ई वापन का मनोरंजन करवा दें और रागनी सुनवाएंगे बलबीर सिंह बोबला की गाइड।
6: बात उस मौके की है जिस टाइम पवन अपनी फौज को सजा कर लड़ाई करने के लिए चल देता है और रास्ते में फौज ठहर जाती है। रात का टाइम हो जाता है और चकवा चकवी बोलते हैं और पवन उनकी बातों को सुनकर अंजना की याद आ जाती है और क्या कहता है, चकवा चकवी सुने बोलते

0: तो भाई ये तो आपने रागनी सुनी, गायक कलाकार थे बलबीर सिंह बोबला। और ये कुछ बाजार भाव आ रहे हैं, आपने मुँह बता दें। गेहूँ का भाव रोहतक में रहा है 2500 रुपये क्विंटल, पानीपत में 2550, गुड़गांव में 2570 और नरवाना में 2550। चने का भाव रोहतक में रहा 6100 रुपये क्विंटल, पानीपत में 6950, गुड़गांव में 6800 और नरवाना में 6600 रुपये क्विंटल रहा है। और चीनी का भाव रोहतक में रहा है 4350 रुपये, पानीपत में 4400, गुड़गांव में 4400 और नरवाना में 4500। खांड का भाव रहा रोहतक में 4800, पानीपत में 5000 और नरवाना में 4800 रुपये फी क्विंटल। प्याज का भाव रोहतक में रहा है 1450, पानीपत में 1350, गुड़गांव में 1450 और नरवाना में 1500 रुपये क्विंटल है। आलू का भाव रोहतक में 700 रुपये क्विंटल, पानीपत में 850, गुड़गांव में 780 और नरवाना में 750 रुपये फी क्विंटल रहा है। आलू का भाव रहा है 750 रुपये रोहतक में और 800 रुपये पानीपत में। तेल का भाव रहा है रोहतक में रहा है 16300 रुपये क्विंटल, पानीपत में 16600 रुपये, गुड़गांव में 16400 और नरवाना में 16500 रुपये फी क्विंटल। तो ये तो भाई थे कुछ बाजार भाव। इसी के साथ आज ये कृषि जगत कार्यक्रम का तो समय समाप्त। ई बाई सुने कार्यक्रम ग्रामीण संसार, और ग्रामीण संसार में आज बालक मंडली फोन इन प्रोग्राम। तो बच्चे तैयार होंगे भाई, उसमें अपना फ़ोन लेकर ना, तो जो जो भी आप तैयार करें बच्चों जल्दी जल्दी ले आओ और अपना कम से कम समय में पूरी चीज़ सुना दो। हेलो
1: हेलो
0: हेलो,
1: हेलो, नमस्कार जी। मैं
0: नमस्कार जी, नमस्कार। बोलो कहाँ से बोल
1: बोल
0: रहे
1: रहा
0: हो,
1: था जी
0: कौन बोल रहे
1: बच्चों
0: हो? है
1: का।
0: बच्चा तो बात करवाओ जी। हेलो
1: लो जी, हेलो, नमस्ते अंकल जी।
0: नमस्ते बेटा, नाम बताओ।
1: मेरा नाम आरती है, मैं गांव डालमिटी से बोल रही हूँ, श्री शिवराम जी की पोती।
0: अच्छा, दादा की पोती, सोनम जी पोती। बेटा ये बताओ, फिर आप दादा की सेवा करते हो?
1: हाँ
0: अच्छा,
1: हाँ
0: जब भी दादाजी को पानी चाहिए और खाना चाहिए लाते हो बराबर?
1: हाँ ला के देते हैं।
0: चलो बहुत बढ़िया बेटा, बताओ आज क्या सुना रहे हो?
1: मैं आज कविता सुनाना चाहती हूँ।
0: तो स्वागत है बेटा, सुनाओ।
1: कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल, लीक पर तो सब चल लेते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चल। बिना काम के मुकाम कैसा, बिन मेहनत के दाम कैसा, जब तक नाव हासिल हो मंजिल तो राह में आराम कैसा। अर्जुन सा निशाना रख, लक्ष्य सामने है, बस उसी पे अपना ठिकाना रख। सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर, मिलेगा तेरी मेहनत का फल, किसी और का ना इंतजार कर। जो चले थे अकेले उनके पीछे आज मेले हैं, जो करते हैं इंतजार उनकी जिंदगी में आज भी झमेले हैं। धन्यवाद अंकल।
0: बहुत बढ़िया बेटे आशीष, इस तरह आपने एक मेहनत के बारे में ये बताया, उसके मेहनत का फल किस तरह होता है और मेहनत से क्या क्या कर सकते हैं। धन्यवाद बेटे।
1: ठीक,
0: हेलो हेलो, तो भाई बच्चों ऐसा है, देखो गर्मी का मौसम चल रहा है और आपकी छुट्टियां हो रही हैं। हेलो हेलो, तो बेटा चलो फोन नहीं लग रहा या बोल नहीं रहा बेटा, बोलो। देखो गर्मियाँ चल रही हैं और गर्मी में साथ में आपकी छुट्टियाँ चल रही हैं। अब घर पे रह के ना उससे गर्मी से बचना, लू से बचना, ये नहीं है कि भाई मान लिया आप बाहर खेलते रहोगे और वो करते रहोगे। और बेटा ज़्यादा से ज़्यादा अपना पानी पीना है जितना उसके, और अब जो अपने देसी पेय पदार्थ आते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना, जिस तरह ये लस्सी है या राबड़ी बनाया रहते अपने, ये चीज़ें करे रहते, वो चीज़ें बहुत बढ़िया रहती। और लेकिन आधुनिक काल में आजकल बच्चे ने ये देखा भाइयों कि वो क्या करते हैं, ये जिस तरह बाजार की चीज़ें पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गई, ये चीज़ें हो गई, ये तो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है बच्चों। इन चीज़ों की तरफ तो हमें जाने नहीं चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, शुगर जैसी बीमारियां हो जाती हैं, और फिर न तो हमारा इसमें पढ़ाई में मन करता है और न हमारे फिर कुछ याद रहता है। तो बच्चे ये ध्यान रखना है, अपना जो दादी मम्मी रबड़ी बना के दे हुए हैं वो पियो आप, और आपने कभी भी इसमें गर्मी नहीं
1: बोलो।
0: लगाई। हेलो हेलो,
1: नमस्कार भाई साहब।
0: नमस्कार जी। हाँ
1: जो जी बच्चा तो बात करियो। नमस्कार
0: बच्चे तो बात करवा दो जी।
1: अंकल जी। नमस्कार अंकल जी।
0: नमस्ते बेटू, अपना नाम बताओ। नमस्ते बेटा, नाम बता दो अपना और कहाँ से बोल रहे हो?
1: पूर्वी जाबिर की पोती।
0: पूर्वी। अरे वाह बेटा पूर्वी, और तेरे दादाजी कैसे हैं?
1: संगत बोल रही।
0: अच्छा संगत बोल बेटा। हाँ कौन सी क्लास में पढ़ते हो?
1: मेरे दादा की क्लास
0: क्लास बताओ बेटा आपकी कौन सी क्लास है?
1: मैं सेकंड में।
0: सेकंड में। बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया। क्या सुना रहे हो, सुनाओ।
1: सेकंड वर्ल्ड।
0: हाँ बताओ बेटा क्या सुनाओगे? हाँ
1: पोयम।
0: शाबाश, सुनाओ।
1: चंदा मामा दूर के पूरे पकाए पूर के। चंदा मामा दूर के
0: शाबाश
1: पूरे
0: बेटे,
1: पकाए पूर के। आप खाओ थाली में, मुन्ना को दो प्याली में।
0: शाबाश।
1: दो पहली में, पहली गई टूट, मुन्ना गया रूस। पहली
0: हाँ चलो ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। और अच्छी तरह याद करके आया करो, ठीक है ना? अगला फोन देखते हैं। हेलो हेलो। तो बच्चों जिस तरह ये बता रहे थे ना आपने, जो बाजार की चीजें हैं ना वो तो बिल्कुल भी नहीं पीनी है, और एक बासी चीज़ है, बासी चीज़ तो कोई भी नहीं लेनी है। कई बार ये क्या होता है अपने उसमें फ्रिज वगैरह हम रख देते हैं, मान लिया शाम की सब्जी है वो कर दे सुबह उसमें फ्रिज में रख देंगे और सुबह उसको इस्तेमाल करने गर्म करके। नहीं बच्चों इसमें ये निको, अपने मम्मी को भी पापा को भी ये बताओ कि इससे बासी चीज़ गर्मियों में खानी बिल्कुल भी ठीक नहीं होती, इससे बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। आपके खांसी हो जाएगी, फिर जुकाम हो जाएगा, और फिर आप खेल नहीं पाओगे, न अपना स्कूल का काम कर पाओगे। इसलिए इन चीज़ों से बचना है, और ये ठंडी चीज़ें तो आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी है, और बाज़ार की तो खास कर ये चीज़ें। अपने घर में फ्रिज है उसमें ठीक है उससे करो, और जिस तरह जितने देसी चीज़ें आप लोगे ना उतनी बहुत बढ़िया रहेंगी। दादी से मम्मी से वो चीज़ें बनवाओ देसी चीज़ें, और वो लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। और देखो जो हमें बच्चों देसी खाना खाते हैं ना, देसी खानों में से बहुत बढ़िया रहते हैं, अपने हरियाणा वालों की तो पहचान है कि भाई दूध दही का खाना, और वो हरियाणा। इस तरह रहोगे तो आप देखो अपने हरियाणा वालों की हर जगह बच्चों पहचान हो जाती है, क्योंकि दूर से पता चल जाता है कि ये हरियाणा का है, उसका कैसे वो अष्टपुष्ट है, उसने खूब खाया पिया है, इसलिए तो आपने भी ऐसे ही करना है, और अपने हरियाणा के खेलों में या शिक्षा में हर जगह अपना नाम रोशन करना है आपने। हेलो भाई, बच्चे कहाँ चले गए भाई? हेलो। तो बच्चों जिस तरह ये देखे हैं भाई गर्मी में, यह ऐसा लगता है कि सभी बच्चे अपने कहीं मामा के या कहीं बुआ के चले गए हैं इसमें, जो कि गर्मी की छुट्टियों में कर रहे थे। लेकिन फ़ोन पर तो बच्चों आपने तो ज़रूर ये करना चाहिए कि वह जो जो चीज़ें आपके याद हैं हर उसमें, बच्चे ये करते बुधवार को कि हाँ हम कुछ ना कुछ सुनाएंगे, याद करके आएंगे, चाहे कहीं भी गए हुए तो आपको नंबर भी आपके याद हैं, जिस तरह नंबर बता था 255-446, 255-447 और 255-448, और रोहतक का स्टेट कोड है 0-12-62। तो इस पर वैसे तो सभी बच्चे जानते हैं, लेकिन जो नए बच्चे जुड़ना चाह रहे हैं उनके लिए ये नंबर बता दिया भाई, 255-440-47 और 48, ये तीन नंबर, तीनों नंबर काम कर रहे हैं अपने, इसके ऊपर आओ रहे। तो बच्चों जैसे खाने पीने का है, आपको ये बताया कि भाई अपना पीने का। हेलो
1: अंकल।
0: हेलो। हाँ बेटा बोलो।
1: नमस्ते अंकल।
0: नमस्ते बेटा, नाम बता दो।
1: आर्यन मलिक।
0: आर्यन मलिक। कहाँ से बोल रहे हैं आर्यन मलिक?
1: उमरा से। सेकंड।
0: उमरा से। कौन सी क्लास में पढ़ता बेटा? सेकंड। तो भाई आर्यन क्या सुना रहे हैं आज ये? कविता। शाबाश बेटे, स्वागत है, सुनाओ।
1: झंडा ऊंचा रहे हमारा विश्व विजित, तिरंगा प्यारा। आओ प्यारे बच्चे आओ, इसके आगे शीश झुकाओ। ये हमारे देश की शान है, हम वीरों का ये मान है, प्राणों से भी प्यारा है। ये हमारी आंखों का थार,
2: प्यारा है, धन्यवाद।
0: अरे आर्यन मलिक बेटे, बहुत बढ़िया आपने तो पोएम सुनाई है, शाबाश। इस तरह याद करके आया करो और बढ़िया बढ़िया सुनाया करो, धन्यवाद बेटे। हेलो हेलो, लगता है फिर बच्चे नहीं हैं। देखो बच्चों, अब एक काम तो आपने ये करना है, जो अपना स्कूल का काम जो होमवर्क दे रखा है आपको, वो अपना काम करना है, साथ में लिखाई का भी और उसके साथ साथ जो आपने ये करना है यादगिरी का भी, वो भी काम करना है। और बच्चों, आजकल तो आप ये देख रहे हैं जिस तरह शिक्षा है, ऑनलाइन भी हो रही है, साथ में उसमें अपने प्रैक्टिकल करोगे ना, उस कोई भी चीज़ का आप खुद उसका प्रयोग करके देखोगे तो और भी बढ़िया हो रहेगी। और हर क्लास के उसके हिसाब से आप देखोगे तो।
3: हेलो
0: हेलो
3: जी, नमस्ते।
0: नमस्ते बेटा, नाम बताओ और जगह बताओ।
3: गांव दड़ोली, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी।
0: दड़ोली से नाम बताओ बेटा, फिर से क्या नाम बताया आपने?
3: कीर्तिका।
0: कीर्तिका कौन सी क्लास में पढ़ती है बेटा कीर्तिका?
3: सेवंथ
0: में। आज क्या सुनाएगी?
3: मैं आपको एक काम सुनाना चाहती हूँ।
0: शाबाश बेटे, सुनाओ।
3: वो आकाश क्या जिसमें तारे ना हो, वो सागर क्या जिसमें गहराई ना हो, वो पथ क्या जो पथरीले ना हो, वो जीवन क्या क्या जिसमें संघर्ष ना हो, वो सूर्य क्या जिसमें तपन ना हो, वो चांद क्या जिसमें शीतलता ना हो, वो बरसात क्या जिसमें बिजली ना हो, वो जीवन क्या जिसमें प्रकाश ना हो, वो बाग क्या जिसमें हरियाली ना हो, वो डाली क्या जिसमें कांटे ना हो, वो कर्म क्या जिसमें लगन ना हो, वो जन्म क्या जिसका कोई लक्ष्य ना हो। धन्यवाद।
0: शाबाश बेटे, बहुत बढ़िया।
3: बहन भी बात करेगी?
0: हाँ हाँ करूँगा बेटा।
3: हेलो
0: हेलो, नाम बताओ बेटा।
3: दिलसी खोला।
0: दिलसी के?
3: दिलपी खोला।
0: दिलपी खोला, हाँ बेटा, क्या सुनाओगे बताओ?
3: पोयम।
0: शाबाश। और क्लास कौन सी है आपकी?
3: फर्स्ट।
0: तो सुनाओ बेटा।
3: बिटिया आई, बिटिया आई, खटिया पर चादर बिछाई, रात किया था इतना काम, तकिया लगा कर किया आराम, रिम झिम बारिश आई, झिलमिल चिड़िया धनिया लाई, धनिया डालकर टिक्कियां बनाई, गिटार अपना गिटार लाया, गिटार बजाकर गाना गाया, गाना सुनकर टिक्कियां खाई, सबके मन को टिक्कियां भाई। धन्यवाद।
0: धन्यवाद बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हेलो हेलो, लगता है भाई फिर नहीं है बच्चे लाइन पर। तो बच्चों, जिस तरह ये बताया था ना आपको, अपना स्कूल का काम करना, पूरा का पूरा होमवर्क करना है, लिखाई का भी, यादगिरी का भी, और सबसे बढ़िया तो ये रहता है कि आप किसी चीज़ को याद करके लिखोगे ना, फिर अपनी कॉपी में लिखोगे तो वो हमेशा याद रहता है आपको। तो इसलिए बच्चों, आपने पहले याद करना है और फिर उसको लिख के देखना है। एक तो उसमें देखो आपकी हैंडराइटिंग भी बढ़िया होगी लिखोगे तो, और फिर आपको याद भी पूरा रहेगा, फिर क्लास में आप अव्वल आओगे। और यही आपका लक्ष्य है कि हमने क्लास में, अपनी क्लास में मतलब होशियार रहना है, सब सबसे मतलब पर ज़्यादा नंबर लेने हैं, अच्छे लेने, तो ये ज़रूर ध्यान रखना बेटा। और इसमें तो अगर हाँ, कई बार ये होता है बच्चों, देखो हम ये देख लेते कि नहीं अभी नहीं, थोड़े दिन में और पढ़ लेंगे, जो ही छुट्टी तो अभी तो काफ़ी छुट्टी है, जो और जब नज़दीक से आ जाएंगे छुट्टी के दिन फिर हम उसका काम कर लेंगे। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं बच्चों, अब एकदम दबाव ज़्यादा हो जाएगा तो फिर हमें मुश्किल हो जाए, पूरा काम हो नहीं पाएगा, हमारा काम अधूरा रह जाएगा, फिर वहाँ जाके क्लास में और दूसरे बच्चे कर ही पाओगे और हमारा हो नहीं पाओगा। तो ये चीज़ें इसके ध्यान रखना है। और विद्यार्थी जीवन में तो बच्चों देखो, हमेशा ये होता है कि हमने कभी भी ये नहीं करना कि हम कल करेंगे। विद्यार्थी जीवन का तो हमेशा यही एक उद्देश्य होता है, आज अभी और इसी वक्त, कोई भी काम आया हम इसी वक्त से शुरू करेंगे, उसका कल के ऊपर कोई वो नहीं करेंगे। अब अपने बड़े बुजुर्ग तो ये कह रहे कि भाई विद्यार्थी जीवन में कल के तो होता ही नहीं, यानी विद्यार्थी की जो डायरी है उसमें कल होता ही नहीं, आज अभी इसी वक्त होता है। तो हमने इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है। और बच्चों देखो, साथ में हमने ये ध्यान रखना है कि

अपने माता पिता का, अपने बड़े बुजुर्गों का, बड़े भाई बहनों का, सारों का क्या मानना है। कई बार हमें जिद कर बैठते हैं कि टीवी देखेंगे या फोन देखेंगे, तो ये चीज़ें नहीं। जो मम्मी पापा कहते हैं, भाई बहन कहते हैं कि फ़ोन नहीं देखना, टीवी नहीं देखना, तो बस ठीक है, उस टाइम पर आप पढ़ो या अपने उनको कहो कि खेलेंगे, उनके साथ खेलो आप। जो अपने पहले परंपरागत खेल होते थे बच्चों, वो तो अब रहे नहीं खेल। अगर हम फिर से उनकी तरफ जाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, इतना बढ़िया होते थे वो खेल। और एक अड़ोस पड़ोस के सारे, बल्कि गांव के बच्चे इकट्ठे होकर ने जब खेला करते वो खेल। तो इसलिए ये बच्चों ज़रूरी है कि हमने कोई भी खेल, एक तो हमने हमारे अंदर सामाजिकता आती है, दूर दूर तक के पूरे गांव के या आपके मोहल्ले के दूसरे वहाँ तक बच्चे आ जाते हैं, तो उनमें हमारे अंदर एक सामाजिकता आती है, भाईचारा बढ़ता है हमारा, एक दूसरे के स्वभाव को देखने का पता चलता है हमें बच्चों। तो इन चीज़ों का तो हमने पूरा वो रखना पड़ेगा। और जो हमारे अंदर विकास है ना, विकास यहीं से शुरू होता है बच्चों। बोलने का, चलने का, उठने बैठने का सारे ढंग हम यहीं से सीखते हैं और दूसरे साथियों से, बच्चों से, उनसे सीखते हैं। तो ये बढ़िया है, हम पूरा वो करें। कई बार ये तो ज़रूर हो जाता है कि बच्चे मतलब लड़ाकू हो जाते हैं कि एक दूसरे से ये करते हैं। नहीं, वो लड़ाकू सिर्फ ऐसे ऐसा हो रहना चाहिए आपने कि मान लिया कोई हमारा मतभेद हो गए, उसी टाइम पर नहीं भाई ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, और न जोर से और न उसमें कोई धक्का मुक्की कुछ नहीं होना चाहिए। सीधा आपने उसमें एक विचारों से उसको करके या अपने तर्क से उसको समझा के दूसरे साथी को कि भाई नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, तो फिर इसमें वो करें। तो उसमें आप ना आप आगे जाके देखो जी, उनमें कुछ भी बन सकते हो, बहुत बड़े बड़े पदों पर जाएंगे, कोई राजनेता बन सकता है, कोई बड़ा अधिकारी बन सकता है, कोई भी होता है। तो अब इसी टाइम से अगर आप उन चीज़ों का, गुणों का अपने अंदर विकास करोगे, तो फिर आगे जाके आपने कोई समस्या नहीं होगी। तो इसलिए अपना ये ध्यान रखना है कि वह खाने पीने का है, उठने बैठने का है, अपने मम्मी पापा के क्या सुनी का, सारी चीज़ों की मतलब उनके बात मानना है, सारी चीज़ों का करना। बड़े बुजुर्ग देखो बच्चों, कई बार ये होता है अपने मोहल्ले में, या यूँ कहें कि वह आस पड़ोस में, गांव में कई बुजुर्ग ऐसे हो जाते हैं कि वह जो मान लिया ये बैठा है घूम फिर नहीं रहे, और वो कहे बेटा एक बार आपका नाम पूछेंगे वो, भाई एक बार एक गिलास पानी पिला दें। तो हमारा ये फर्ज है, नैतिक गुण है कि हम उनको पानी पिलाएं, उठ के पानी पिला दें। और फिर वो दादाजी से पूछेंगे, उनके पास बैठोगे आप, उनसे कहानियाँ सुनोगे और बड़ी बड़ी वो पुरानी बातें बताओगे उनका। देखो जब ये बताएगा, जो तजुर्बा होता है बच्चों, वो तजुर्बा इस तरह होता है कि उसमें कोई उस तजुर्बे से मतलब बड़ी किताब भी नहीं होती, ये बताते हैं, क्योंकि उसमें खुद उसने करके देख रखे हैं। तो उनका अपना सारा का सारा ये अनुभव हमने लेना है और वो अपने जीवन में डालना है। वो बताओगे कि भाई देखो ऐसा है, मान लिया जैसे अंधेरे में जा रहे हो आप, अंधेरे में डरना नहीं है, और वो उसके लिए तरीका बताएंगे कैसे कि भाई मान लिया कई बार हम अंधेरे में चल रहे हैं और कोई भी कोई छोटा वृक्ष है वो एकदम हवा आ गई, वो हिल गया, तो हम ये डर गए। तो वो चीज़ें वो क्या कहते हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो है कोई पौधा हिल रहा था, न कि कोई वैसी जो चीज़ें थी, तो उसमें हमें पता चल जाता। देखो हमें एक मान लिया किताब में पढ़े ऐसी नहीं, और उसकी बजाय उनका खुद का एक्सपीरियंस रहा, तजुर्बा रहा है, वो अपना बता रहे। तो बच्चों ये आपने पूरा का पूरा उनका ध्यान रखना है, और यही हमारे अंदर जो नैतिक गुण है ना, वो नैतिक गुण आते हैं। बड़ों का, छोटों का जो हम सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं, वो अपने ये देखा जाता है। कई बार देखो पहले हमने ये देखा, जो बच्चे थे अपना दादा दादी से या मम्मी पापा से, उनको सुबह उठकर सलाम करते, प्रणाम करते हैं या गुड मॉर्निंग बोलते हैं, जो भी अपने उसमें परिवार में हो। कोई बच्चे पैर छूते हैं, दादाजी नमस्कार, दादाजी नमस्ते, मम्मी पापा नमस्ते, वो ऐसे बोलते हैं। वो बच्चों देखो हम संस्कार हैं, वो उनसे हमारे अंदर एक बहुत बढ़िया गुण उत्पन्न होते हैं। कई बार ये बड़े बुजुर्ग ये बताते हैं बच्चों, और अध्यापक भी बताते हैं कि जब मान लिया हम सुबह उठ कर अपने मम्मी पापा दादा दादी से प्रणाम करते हैं, उनके पैर छूते हैं, तो पूरा दिन हम कोई भी जो गलत काम होंगे ना, वो गलत काम नहीं कर सकते, न उसका साथ दे सकते, न वो काम कर सकते। उसका कारण क्या है, जो उन्होंने आशीर्वाद दिया जब हमने उसके पैर छुए, तो वो आशीर्वाद हमारे साथ एक

0: पक्ष का काम करेगा। मान लिया कोई भी शिव ऐसी चीज़ हो रही है तो उसी टाइम पर आपके जो हमारे को आशीर्वाद दे रखा है दादा दादी ने, मम्मी पापा ने या बड़े बुजुर्गों ने, वो आशीर्वाद उसी टाइम पर ये कहेगा नहीं बच्चे ऐसा कुछ नहीं करना, आप सही कर रहे हो, आपने ये काम गलत है। उसी टाइम पर हमारे अंदर समझ आ जाएगी कि ये हाँ ये गलत है और ये हमने नहीं करना है, हम दूर हो जाएंगे उससे। तो सिर्फ ये क्या है जो आशीर्वाद है ना वो दिखाई तो देता नहीं, दादा दादी या मम्मी पापा जिस तरह भगवान वो साथ तो होते नहीं कभी, लेकिन वो हमें हमेशा मार्गदर्शन करते रहते हैं हमारा। तो इसलिए जो ये हमारे अंदर संस्कार है, संस्कारों का जो संचारण हमने करना है अपने अंदर वो इसी तरह करना है। फिर पढ़ाई की बात है बच्चों, देखो पढ़ाई में भी हमने ये ध्यान रखना है कि हमेशा एक कंपटीशन बना रहता है कि माँ बाप या दादा दादी भी अड़ोस पड़ोस के सभी बच्चे ये कहते हैं भाई बड़े बुजुर्ग भी, हाँ भाई कितने नंबर है क्लास में, कौन सी पोजीशन आई तेरी। अब बच्चों देखो आगे आगे जो समय आ रहा है उसमें पोजीशन की बजाय हमारे लिए ये क्या हो रहा है, कंपटीशन टेस्ट हो रहे हैं। वो कंपटीशन टेस्ट ही हमने पास करेंगे तो ही हम उसमें माना जाएगा। अब कोई बच्चा ऐसा है जो मान लिया खूब मेहनत कर रहा है और उस टाइम पर उसका हो सकता है कि इतने अच्छे मार्क्स ना आए हों एग्ज़ाम में, लेकिन कोई कंपटीशन टेस्ट है, कंपटीशन टेस्ट में उसमें वो अच्छे मार्क्स ले गया, उसने क्लियर कर गया और वो उसमें पास हो गया। तो ये चीज़ें भी हैं बच्चों, हमेशा है कि उस चीज़ में नहीं ध्यान रखना है कि मुझे उससे कम नंबर आए या उससे एक ईर्ष्या नहीं, ईर्ष्या की बजाय हमें उसमें एक कंपटीशन के तौर पर लेना है। और छोटे बच्चे तो हमेशा इसमें ये पूरा ध्यान रखेंगे कि वो हाँ उस बच्चे ने आज इतना सुना दिया तो मैं भी इतना सुनाऊंगा, वो इतने यहाँ तक पढ़े जानता है, यहाँ तक गिनती जानता है, इंग्लिश की ये पोएम जानता है, हिंदी की ये पोएम जानता है, सारी चीज़ें ये करता है कि हमने एक ये करना है उससे कंपटीशन तौर इस तरह लेना है कि मैं भी उससे ज़्यादा सुनाऊँगा। वो मान लिया 8 तक पढ़े सुना देता तो मैं उन्हें 10 तक सुनाऊँगा, 12 तक सुनाऊँगा, उसकी इंग्लिश की एक पोएम याद है तो मैं 2 सुनाऊंगा, हिंदी की 2 पोएम याद है तो मैं 4 सुनाऊंगा। ये चीज़ें उसमें भी करनी है। स्कूल टाइम में मैं नहा धो के अच्छी तरह सुबह वो उससे पूछा जाए कि मैं कितने बजे उठता हूँ, इतने बजे उठता, मैं भी सुबह उठ के खुद नहा धो के ने अपना तैयार होकर ने और मैं मम्मी पापा से अपना खाने का टिफिन ले कर और वो ले कर जाता हूँ फिर मैं। तो ये चीज़ें हमने अपने उसमें अपनानी होंगी बच्चों। और साथ में हमें उसमें देखो जहाँ हम क्लास में जाते हैं, क्लास में जाकर ये देख देता है, आपने देखा भी होगा आपके जो टीचर हैं वो आपसे परसेंट पूछते हैं, आपने उसी टाइम पर बता देते तो टीचर भी ये कहता है कि हाँ ये बच्चा है ना पढ़ के आया है, बहुत अच्छा बच्चा है। और जो बच्चे नहीं पढ़ते वो तो देखो फिर वही रहेगा, उसके टीचर के सामने बात नहीं कर पाएंगे। तो यहीं से बच्चों जो अपना जो कॉन्फिडेंस है या आत्मविश्वास है ना, वो आत्मविश्वास भी अपना कम हो जाता है। तो इन चीज़ों की तरफ वो नहीं करना, अपने आप को एक अच्छा यूँ मान कर जिस तरह ये हो ना कि एक बहुत बड़ा महान योद्धा हीरो बन के दिखाना है, तो वो चीज़ें आप ये सारी करोगे तो बिल्कुल बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो आपके आदर्श हैं जिन्हें आप ये करते हो कि बहुत बड़ा उसने ये काम किया, तो वैसे भी आप बन सकते। जब हमें बच्चों ये देखो कोई भी मान लिया चीज़ है, हमने ये देखा कि वो आदमी ऐसा था और वो ऐसे बन गया, हम भी ऐसा बन सकते हैं, लेकिन कब, उसके लिए हमने अपना दृढ़ निश्चय करना होगा, लगातार मेहनत करनी होगी, जो उसने क्या क्या किए थे, किस किस तरह अपना उसने कामयाबी हासिल की थी, वो चीज़ें हमने अपनानी होंगी। और फिर कई बार ऐसा होता है बच्चों जो ये छोटे बच्चे हैं ना, या कई बच्चे बुरी आदतों में पड़ जाते हैं, बुरी आदतों में जैसे ये है सुबह उठ कर ने रोने लग जाते हैं भाई हमने स्कूल में नहीं जाना, ये नहीं करना। नहीं, आप ये देखो घर में तो इतना अच्छा माहौल नहीं मिलता, आपने स्कूल में जितना बढ़िया माहौल मिलेगा, जितने अपने आपके दोस्त मिलेंगे छोटे बच्चे सारे के सारे मिलेंगे और वो अपने ये बताएंगे कि हाँ आज मैंने घर में ये किया, आज मैंने ये किया, मैंने ये खाया। तो अब देखते हैं, चलो फोन आया, हेलो
1: हेलो
0: हेलो, हाँ बेटा नाम बताओ।
1: चौधरी
0: वास से, क्या नाम बताया?
1: नितिन।
0: नितिन, हाँ बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो?
1: फोर्थ
0: में। आज क्या सुना रहे हो? क्या सुनाओगे? अच्छा सुनाओ। तो
1: जो चीज आप समझ नहीं सकते वो चीज आपको हासिल नहीं कर सकते,
0: जो चीज समझ नहीं सकते वो
1: चीज आप कभी हासिल नहीं कर सकते।
0: हासिल नहीं कर सकते? नहीं बच्चे, तो ऐसा है बेटो, अगर आप मेहनत करोगे तो सारी चीजें हासिल कर सकते हो, कोई सी बड़ी बात नहीं है। हैं? तो और सुनाओ, और क्या सुना रहे हो बताओ?
1: और कुछ नहीं।
0: और कुछ नहीं? चलो ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। हेलो हेलो, अरे भाई बच्चे कहाँ गए, ऐसा वो कर रहे हो। हेलो, तो बच्चों जिस तरह ही हमें जिक्र कर रहे थे कि कोई भी कई बार ऐसा होता है हमारे अंदर उसी बुरी आदतें हो जाती हैं, और दूसरे हमारे अंदर नहीं होती बुरी आदतें, दूसरे साथियों के साथ हो जाती है और वो भी देख लेते हैं उसमें, तो उन चीज़ों से हमें दूर रहना पहले से। बुरी आदत का बच्चों देखो ये हो जाता है कि वो ना आती तो धीरे धीरे, लेकिन जाती नहीं है, फिर एकदम आके ना फिर वो कितना उसको करने छोड़ नहीं पाते। लेकिन वही फिर जो बड़े आदमी महान आदमी ने ये बताया कि कोई भी बुरी आदत है हम उसको 21 दिन के अंदर अंदर छोड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। और उसके लिए देखो आपके अंदर कोई इस तरह की बात हो जाती है तो मम्मी पापा अपने भाई बहन सारे के सारे हमें समझाते हैं, वो करते, उनकी बात मान लेते, मान लेंगे तो वो बातें क्या है, जो मान लिया कोई सी उसी बात हो जाएगी, कोई हमारे अंदर बुरी आदत हो जाए छूट जाएगी हमारे अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे एक हमें रेगुलर ये करते रहे सुबह उठना नहाना है, अब छुट्टियां हो रही है अपनी, छुट्टियों में ये निकलना कि चलो छुट्टी होगी स्कूल में तो जाना नहीं है, अब कोई बात नहीं, मैं मान लिया 6 बजे उठता था तो अब मैं 7 बजे उठूंगा या 8 बजे उठूंगा, नहीं ऐसा नहीं है। वो अपनी आदत को मत छोड़ो, चाहे छुट्टी हो रही, आप और अपना काम करो, साथियों के साथ ज़्यादा समय खेल सकते हो, अब आपके अपना काम कर सकते हो सुबह उठ कर, और फिर अपने घर में रह कर ज़्यादातर बच्चों देखो ये आपने ज़रूर ध्यान रखना, धूप में नहीं खेलना है बिल्कुल भी। धूप में तो आप जाओगे तो आप देखो बीमार हो जाओगे, बीमार हो जाओगे तो फिर आपकी सेहत क्या एकदम कमज़ोर हो जाओगे, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर फिर सुई लगाएगा, तो उन चीज़ों से तो हमने बचना ही है। और आप अगर सही समय पर खाना पीना नहाना धोना ये चीज़ें रखोगे तो न तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, न बीमार होगे, और आपकी जो सेहत है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, आप अच्छे लंबे तगड़े हो जाओगे, और फिर वही पहचान हो जाएगी। हाँ बाहर कहीं भी दुनिया में किसी भी क्षेत्र में चले जाओगे तो ये कहेंगे हाँ भाई ये हरियाणा का रहने वाला है, तो वो पहचान अपनी बनाए रखनी है बच्चों। और जहाँ तक हो सके आपने जो ये बताओ कि भाई जो देसी चीज़ें हैं ना अपनी जो लोकल हैं वही चीज़ें करते, कई बार देखो हमने ये कराया है, कई बच्चे सब्जी नहीं खाते सुबह उठकर, सब्जी खाते नहीं हैं और क्या करते जो ये पैकेट बंद चीज़ें हैं वो खा लेते हैं, वो अच्छी अच्छी खा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, वो बहुत ही नुकसानदायक है हमारे लिए, ऐसा नुकसान कर देंगे वो कि हमें किसी तरह या आप जिस तरह मान लिया न तो आपकी हाइट बढ़ेगी, आप छोटे से के छोटे रह जाओगे दूसरे से टूंगड़े की तरह, और फिर आप न मोटे तगड़े बनोगे, तो फिर फायदा क्या होगा। अब आजकल देख रहे हो बच्चों जिस तरह छोटे छोटे बच्चों के चश्मे लगे हुए हैं, कारण उसका ये है कि आप उसमें ज़्यादातर इसके स्क्रीन के सामने रहते हैं वो बच्चे, तो उनसे दूर रहना है। आजकल तो एक ये जो सोशल मीडिया या फ़ोन है, फ़ोन से तो एकदम दूर रहना बच्चों, ये एक ऐसा जहर है कि इससे तो बड़े भी पीछा नहीं छुटवा पा रहे, तो आपकी तो बात ही है, तो इसलिए आपने फ़ोन से दूर रहना, देखना ही नहीं है। और एक मम्मी पापा या बड़े बुजुर्गों से भी हम ये अपील करें, वह जितना हो सके बच्चों को उससे दूर रखें। कई बार ये देखें कि बच्चे मान लिया झगड़ा कर रहे हैं या रो रहा है बच्चा छोटा बच्चा, मम्मी उसको फ़ोन देखे नहीं और अपना काम कर लेती, नहीं वो तो उस टाइम पर तो हम काम कर रहे हैं लेकिन आगे तक वो बहुत ज़्यादा नुकसान देगा। फ़ोन तो बच्चे को हाथ में बिल्कुल भी नहीं देना है, इस तरह कई जगह ये देखा कि वह उनमें विस्फोट भी हो जाए हैं, या यूँ कह सकता कि वह कई बार करंट भी मार दे हैं, तो इन चीज़ों से तो बचना है। और जो नुकसान लंबे समय तक ये करने लाग रहे हैं फ़ोन वगैरह, ये इनका तो अभी तक पता चल ही नहीं रहा है, क्योंकि आंखें देख देख रहे हो आप कितनी कमज़ोर हो गई हैं, हर बच्चे के मतलब ये कह सकता कि वह आधे से फालतू बच्चों के चश्मे चढ़े हुए, उसका यही कारण है। बच्चे खा पी नहीं पा रहे हैं जितना उसके जिद करते हैं और फ़ोन के लिए उसमें वो करते हैं, तो फ़ोन तो जितना हो सके उनको ना दो, और बच्चों आपने भी उन चीज़ों से बचना है, फ़ोन से तो बिल्कुल ही बचना है, उसको मत देखो ना उसको करो। अब तो आपके लिए ये चीज़

ये आप क्लास में पिछड़ जाओगे अगर फोन चलाते रहोगे, तो क्लास में न आपके कुछ याद रहेगा और फिर न आपकी सेहत रहेगी, न आपको कुछ आपका दिमाग काम करेगा। तो इसलिए तो इन चीज़ों से तो बचो जितना उसके, अपने आज से ही मम्मी पापा को ये को नहीं, फोन हम नहीं देखेंगे और न ही आप देखो, इससे जितना दूर रहेंगे चाहे छोटे बड़े कोई भी है उतना ही बढ़िया रहेगा। ये तो बहुत ज़्यादा नुकसान करने लग रहा है और इस नुकसान की भरपाई किसी प्रकार भी नहीं हो पाओगे। और छोटे बच्चों के तो बड़े मम्मी पापा तो देखो जिस तरह ये ध्यान दे रहे हैं बढ़िया है, क्योंकि बच्चों का, छोटे बच्चों का तो बहुत आगे तक का उसमें नुकसान होगा। और जब उनको के बड़ा है, लंबी पूरी ज़िंदगी पड़ी है उनके सामने, अगर मान ली यहीं से उनके दिक्कत होगी तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इन चीज़ों से तो बचना है। अब बच्चों ने भी खुद ये कहना है अपने मम्मी पापा को, आज से हम फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे और नहीं आपने करना है। यही मम्मी पापा ने कहना, बच्चों देखो फोन तो ना एक ये बहुत बड़ा मतलब ये कैस का दुश्मन है हमारे सभी का, इससे दूर रहना है, ये बिल्कुल नहीं चलाना है, ये देख लेना है। तो बच्चों आज तो फोन तो बहुत ही कम आए, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है आप सभी छुट्टियां मनाने के लिए चले गए और उसमें ध्यान नहीं रहा। चलो ठीक है, ये कार्यक्रम का समय हो रहा है समाप्त। सारे बच्चों को राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्रामीण संसार, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत कार्यक्रम। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को आपके दोस्त शशि का प्यार भरा नमस्कार।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। जानवर फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं उदित नारायण और सुनिधि चौहान की आवाजों में। गीत समीर का है, संगीत आनंद मिनिंद का।

फिल्म संगीत कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं सिर्फ तुम फिल्म से कव्वाली। आवाज़ें हैं अमीन साबरी और फरीद साबरी की, बोल समीर के हैं, संगीत नदीम श्रवण का।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। प्यार कोई खेल नहीं फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं कुमार सानू की आवाज़ में। गीत मजरू सुल्तानपुरी का है, संगीत जतिन ललित का।

फिल्म संगीत का अगला गीत आपको सुनवाते हैं कोयला फिल्म से। आवाज़ें हैं कुमार सानू, प्रीति सिंह और साथियों की। गीत इंदिवर का है, संगीत राजेश रोशन का।

फिल्म संगीत कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म गदर एक प्रेम कथा से। आवाजें हैं उदित नारायण और प्रीति उत्तम की। गीत आनंद बख्शी का है, संगीत उत्तम सिंह का।

गदर फिल्म के इस गीत के साथ ही संपन्न हुआ फिल्म संगीत कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है सुगम संगीत कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं हेमा सरदेसाई के गाए कुछ गैर फिल्मी गीत। ये गीत हमने लिए हैं उनके करियर की पहली एल्बम हिंदुस्तानी गुड़िया से। आइए सुनते हैं ये गीत।

सुगम संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं हेमा सरदेसाई के गाए कुछ गैर फिल्मी गीत।

सुगम संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं हेमा सरदेसाई की एल्बम हिंदुस्तानी गुड़िया के कुछ गीत।

इस गीत के साथ ही अपने दोस्त शशि को दीजिए इजाज़त कार्यक्रम सुगम संगीत संपन्न करने की। आज इस कार्यक्रम में हमने आपको सुनवाई हेमा सरदेसाई की पहली एल्बम हिंदुस्तानी गुड़िया के कुछ गीत। आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर। रात के 8:45 होने को है। थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में उसके बाद अंग्रेजी में। आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचार हम अपने केंद्र से रिले करेंगे।

0: एचपीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी। योजना पर 25,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। कहा, यह प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बढ़ावा देती है। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित। यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। और भारत 2027 एशियाई रिले और 2028 एशियाई इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश के प्रत्येक जरूरतमंद लोगों को समय पर अनाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में इस प्रणाली को और अधिक आधुनिक तथा प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार की मंजूरी का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में एसआईआर की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था।
3: असम में समान नागरिक संहिता विधेयक का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानूनी व्यवस्था स्थापित करना है। संवैधानिक संरक्षण और पारंपरिक रीति रिवाजों को सुरक्षित रखने के लिए अनुसूचित जनजातियों को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। वहीं विभिन्न धर्मों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक समान कानूनी ढांचा लागू करने का प्रावधान किया गया है। विवाह संबंधी प्रावधानों के तहत विधेयक में एक विवाह की व्यवस्था अनिवार्य की गई है तथा वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और वधु की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता पारित होने पर असम की जनता को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि समान नागरिक संहिता भाजपा का स्थापना दिवस से ही संकल्प रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी के और लू के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। एक रिपोर्ट।
3: आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ मौजूदा लू की स्थिति पर चर्चा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उन विशेष कदमों पर चर्चा हुई जिन्हें प्रत्येक मंत्रालय और विभाग अपने अपने कार्यक्षेत्र में उठा सकते हैं।
4: प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में मौसम की जो हीट वेव की परिस्थिति है उसका भी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है उसी आह्वान के तहत सभी से अपने अपने मंत्रालय में सुविधा पहुंचाने की किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है उसके ऊपर भी चर्चा हुई।
3: आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर विक्रम ने लोगों को लू से बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना और ORS जैसे इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थों का सेवन करना और दिन के समय तपती धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: उधर राजस्थान में भी राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: दिन और रात के बढ़ते तापमान से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में जनजीवन पर असर पड़ा है। दिन के समय गांवों और शहरों में सड़कों और बाजारों में लोगों की आवाजाही सीमित हो गई है। विभिन्न जिलों में प्रशासन की ओर से गर्मी से निपटने के लिए कई स्तरों पर इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही विभिन्न संस्थाएं भी ठंडे पेय का वितरण कर लोगों को राहत पहुंचाने के जतन में जुटी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करने की भी अपील

0: की है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज सभी न्यायाधीशों से अपील की कि वे भीषण गर्मी को देखते हुए मामलों की सुनवाई ऑनलाइन करें। न्यायालय ने कहा कि वह इस संबंध में न्यायिक निर्देश जारी नहीं कर सकता। न्यायालय दिल्ली में बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए सभी अदालतों में ऑनलाइन कार्यवाही करने के निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सरकार द्वारा पूर्व प्रभावी 28% जीएसटी को बरकरार रखते हुए इसे वैध बताया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म केवल मध्यस्थ नहीं है बल्कि उन्हें आपूर्तिकर्ता माना जाना चाहिए और उन पर वस्तु तथा सेवा कर जीएसटी लागू होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upssconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से 5 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: Assam Assembly passes Uniform Civil Code Bill, becoming third state in the country to adopt the legislation. Indian shooter Aisha Singh breaks world record in women's 25-meter pistol event, clinching gold at ISSF World Cup in Munich. That is all in the news at 9. Good night.
1: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक फिल्म से। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सन 1962 में प्रदर्शित हुई फिल्म आशिक के कुछ गीत।

शैलेंद्र का लिखा ये गीत था, आवाज़ें थी लता मंगेशकर और मुकेश की, गीत संगीत शंकर जयकिशन का। एक फिल्म से कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं सन 1962 में प्रदर्शित हुई फिल्म आशिक के कुछ गीत। इस फिल्म का निर्माण किया था वी के दुबे ने और निर्देशन किया था ऋषिकेश मुखर्जी ने। इस फिल्म को लिखा था विश्वामित्र आदिल ने। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी राज कपूर, नंदा, पद्मिनी, हनी ईरानी, राज मेहरा, केशटो मुखर्जी, मुकरी, अभी भट्टाचार्य, लीला चिटनिस, नाना पालसीकर, अचला सचदेव, विश्वा मेहरा, मधुमति, परशुराम और नज़ीर कश्मीरी ने। आइए सुनते हैं अगला गीत, शैलेंद्र का लिखा हुआ है, आवाज़ें हैं मुकेश और लता मंगेशकर की।

आशिक फिल्म में बतौर गीतकार काम किया था शैलेंद्र ने और हसरत जयपुरी ने, और इस फिल्म के गीतों को संगीतबद्ध किया था शंकर जयकिशन ने। आइए सुनते हैं अंतिम गीत मुकेश की आवाज़ में।

इस गीत के साथ ही संपन्न हुआ कार्यक्रम एक फिल्म से। आज इस कार्यक्रम में हमने आपको सुनवाई सन 1962 में प्रदर्शित हुई फिल्म आशिक के कुछ गीत। आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर। रात के 9:30 होने को हैं। कुछ ही क्षणों बाद आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: चर्चा का विषय है।
1: सीमाएं सिर्फ नक्शों पर खींची गई रेखाएं नहीं होती, ये किसी देश की पहचान होती हैं, उसकी सुरक्षा, उसकी संस्कृति और उसके भविष्य की सबसे मजबूत दीवार होती हैं। लेकिन जब इन्हीं सीमाओं को पार कर अवैध घुसपैठ देश के भीतर प्रवेश करती है तो सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं रह जाता, सवाल उठता है जनसंख्या संतुलन का, सामाजिक ढांचे का, रोजगार, संसाधनों और राष्ट्रीय पहचान का। क्या बदलती जनसंख्या तस्वीर भारत के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को प्रभावित कर रही है? क्या सीमाओं से शुरू होने वाली ये चुनौती अब शहरों और गांवों तक पहुंच चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले वर्षों में ये भारत की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता के लिए गंभीर संकट भी बन सकती है? इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे हमारे विशेष कार्यक्रम चर्चा का विषय है में। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। हमारा आज का विषय है जनसंख्या परिवर्तन का सामाजिक आर्थिक ढांचे पर प्रभाव। आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर और सीमा सुरक्षा की चुनौतियों को बेहद करीब से देखने वाले पूर्व बीएसएफ प्रमुख और असम के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी नमस्कार।
3: नमस्कार
1: प्रकाश जी। आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो सबसे बड़ी चुनौती इस समय भारत के सामने है वो दूसरे देशों से आए लोग हैं। दो तरह के लोग हैं, एक शरणार्थी हैं और दूसरे घुसपैठिए हैं। इसको लेकर जो हमारे बॉर्डर स्टेट हैं वहां पर कई तरह की समस्याएं देखने को मिल रही है, क्या लगता है? चूंकि आप खुद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के प्रमुख रह चुके हैं, असम एक ऐसे राज्य के आप डीजीपी थे जहां पर इस तरह की बहुत बड़ी समस्या है, कैसे देखते हैं आप इसे भारत के नजरिए से?
3: देखिए, भारत के नजरिए से तो बहुत साफ है और अलग अलग समय पे बड़े बड़े हस्तियों ने इस विषय पे रोशनी डाली है कि ये देश की सामाजिक ढांचे के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए और देश की सुरक्षा के लिए, तीनों ही दृष्टिकोण से ये बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत बड़ा खतरा है। घुसपैठिए जो है आज से नहीं, ये स्वतंत्रता के बाद से, इंडिपेंडेंस के बाद से ही शुरू हो गया था, पर यह है कि इसकी प्रक्रिया अगर हम 1971 के बाद देखें, 1971 में बांग्लादेश बन गया तो उसके पहले जो कुछ उत्पीड़न हुआ था पाकिस्तान आर्मी द्वारा, उस समय आप जानते हैं लाखों की तादाद में बांग्लादेशी आए थे और यहाँ पे उन्होंने शरण ली थी। बाद में बहुतों को वापस भेजा गया, कुछ गए, शायद कुछ नहीं भी गए होंगे, परंतु 1971 के बाद भी ये समस्या ऐसा नहीं है कि इसका समाधान हो गया। हम लोग ये समझते थे कि अब बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हो गया और भारत के सहयोग से हुआ है तो अब हिंदू वहां पे सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे, मुस्लिम तो वहां पे रहेंगे ही, परंतु बहुत सारे कारण ऐसे हुए जिसकी वजह से ये घुसपैठ की समस्या बराबर बनी रही। सबसे बड़ा कारण जो था आर्थिक था, वो बांग्लादेश तो बन गया पर उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो इतनी बड़ी जनसंख्या को सबको एम्प्लॉयमेंट दे सके, सबको रोजी रोटी की व्यवस्था हो सके। नतीजा ये हुआ कि आर्थिक कारणों से बहुत भारी संख्या में 1971 में बांग्लादेश के बनने के बाद भी यहाँ पलायन होता रहा, लोग आते रहे सीमा पार से और जितने बॉर्डरिंग स्टेट से वहां पे बढ़ते गए। इस समस्या से सारी सरकारें अवगत थी। आपको याद होगा कारगिल युद्ध के बाद 4 टास्क फोर्सेस बनी थी बॉर्डर की समस्या देखने के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी की, डिफेंस की, इंटेलिजेंस की, और चारों टास्क फोर्स बड़े हाई पावर्ड बॉडीज थी। इसमें एक बॉर्डर मैनेजमेंट वाली जो बॉडी थी वो माधव गोडबोले उसका नेतृत्व कर रहे थे, जो भारत सरकार के गृह सचिव थे और बड़े योग्य आईएएस अधिकारी थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो अगस्त 2000 में प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट में ये लिखा कि हर वर्ष करीब 3 लाख बांग्लादेशी भारत में घुसपैठ कर रहे हैं और इस समय वर्तमान में 2000 में उनकी संख्या 1,50,00,000 है। ये 2000 की बात है, उसके बाद भी बढ़ता ही रहा होगा। आज की तारीख में 3 करोड़ हो गया हो, 3.5 करोड़ हो गया, कुछ कहा नहीं जा सकता। अलग अलग समय पे भारत सरकार ने इसका अलग अलग एस्टिमेट दिया है। 2001 में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना था, ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने चारों टास्क फोर्सेज के रिपोर्ट को इवेल्युएट किया था, उसका आकलन किया था और इन्होंने भी बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठियों को होना देश की सुरक्षा, सामाजिक सौहार्द और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा है। फिर बाद में आ जाइए, 2005 में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला गया, सोनोवाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस था एक 2005 में, उसमें उन्होंने कहा था कि दिस इज ए डेमोग्राफिक एग्रेशन और एक्सटर्नल एग्रेशन में इसको उन्होंने क्लासिफाई किया था, ये एक्सटर्नल एग्रेशन है ऑन इंडिया, और कहा था इसके लिए भारत की संप्रभुता,

0: आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो ये समस्या आज से नहीं, बहुत पहले से चली आ रही है। और अगर आप और पहले जाना चाहें तो 1998 में जब जनरल सिन्हा आसाम के राज्यपाल थे, तो उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को 8 नवंबर 1998 में एक रिपोर्ट भेजी थी जिसमें लिखा था कि असम में जो घुसपैठ हो रही है उससे जनसंख्या में जो परिवर्तन हो रहे हैं, हो सकता है कि कालांतर में मतलब बहुत कुछ वर्षों बाद बांग्लादेश ये मांग करे कि असम के जो सीमावर्ती मुस्लिम बाहुल्य प्रदेश है इन्हें बांग्लादेश में मिला दिया जाए क्योंकि ये मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो ये तो स्थिति है, ये आज से नहीं, कम से कम 1998 से बराबर चेतावनी हमको मिल रही है। अब 26-27 साल हो गए हैं। वर्तमान सरकार को इस बात का श्रेय तो हम देंगे कि इन्होंने इस समस्या की नोटिस ली है और मोदी जी ने अपने इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में कहा है कि एक डेमोग्राफिक कमीशन बनाएंगे, तो इस समस्या को गंभीरता से उसको स्टडी करके अपने रिकमेंडेशन देंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई अवसरों पर कहा है कि घुसपैठिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है।
2: जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है। तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें, उनके सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित सुनिश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।
1: जी हाँ, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को उच्च स्तरीय जनसांख्यिकी मिशन की घोषणा की थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर 2025 को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी और अब न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नवेलकर सेवानिवृत्त समिति के अध्यक्ष होंगे। जनगणना आयुक्त के अतिरिक्त 3 विशिष्ट विशेषज्ञ श्री दुर्गा शंकर मिश्रा सेवानिवृत्त IAS, श्री बालाजी श्रीवास्तव सेवानिवृत्त IPS और डॉक्टर शमिका रवि समिति के सदस्य होंगे और गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव भी समिति के सदस्य सचिव होंगे। ये समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। आवश्यकता पड़ने पर गृह मंत्रालय समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 15 अगस्त 2025 को घोषणा की थी उच्च स्तरीय कमेटी की, अब उसका गठन हो गया है और घुसपैठियों के बुरे दिन की शुरुआत भी इसी के साथ हो गई है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
3: भारत सरकार ने ये तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे और हमारी जनसांख्यिकी में अकृत्रिम बदलाव नहीं होने देंगे। ये जो जनसांख्यिकी का बदलाव करने का षड्यंत्र है, इसको सीमा सुरक्षा बल ने रोकना है। और आज मैं बड़ी शांति से, निश्चिंत मन से आपको कह रहा हूं कि अब त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल तीनों जगह ऐसी सरकारें हैं जो नीतिगत रूप से मानती है कि देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए।
1: प्रफुल्ल जी, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि सीमावर्ती जिलों और देश के कुछ चुनिंदा महानगरों में अचानक आई इस जनसांख्यिकी बदलाव के संकेत जो मिल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को ये प्रभावित कर रहा है?
4: जी निश्चित, वैसे तो ये अचानक नहीं आया है, लेकिन समस्या के रूप में अचानक उसको अभी देखा जा रहा है। जैसे हमने हाल ही में देखा, नोएडा में अचानक से एक इरप्शन हुआ मूवमेंट के रूप में, और बहुत सारे सोसाइटीज में, क्रिमिनल एक्टिविटीज में जब भी नाम आता था तो शुरू में इसके बारे में चर्चा जरूर होती थी लेकिन कोई एक्शन नहीं होता था। हमको ये ध्यान में रखना चाहिए, अभी IMDT एक्ट 1983 में बना, उस एक्ट का नाम ही था इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल। इसका मतलब पहली बार तो समस्या उस समय से शुरू कम से कम मानी गई कि इलीगल माइग्रेंट्स है। अब इसमें दो तरीके के अलग अलग थे, एक जो 1971 से पहले या 1971 के बाद, फिर 1990 के दशक में भी, 92 के बाद खास करके अयोध्या के आंदोलन के रिएक्शन में वहां पे जो मंदिर गिरा गए, और केवल हिंदू ही नहीं, हिंदू बुद्धिस्ट वहां की सो कॉल्ड जिनको हम माइनॉरिटीज बांग्लादेश के संदर्भ में कह सकते हैं, ऐसे लोग भारत में उनको शरण लेनी पड़ी, जिनके लिए CAA जैसा प्रावधान करना पड़ा। लेकिन दूसरा एक बहुत बड़ा वर्ग था जिसने इलीगल इमिग्रेंट

0: बांग्लादेश के जहां पे बाढ़ की स्थिति आती है और वहां से माइग्रेशन होता है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे एक सोची समझी राजनीति थी, एक सोची समझी रणनीति भी थी। काउंटरफिट करेंसी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क, जब कालियाचक की पुलिस चौकी को जलाया गया था बंगाल में, तो उस समय उजागर हुआ था, ये साफ साफ दिखाता है। या इलीगल जो आर्म्स का ट्रेडिंग है उसका एक इम्पॉर्टेंट रूट रहा है, ड्रग ट्रैफिकिंग का ये एक इम्पॉर्टेंट रूट रहा है। यही रास्ता है जहां म्यांमार से बांग्लादेश में गए हुए रोहिंग्या रेफ्यूजीज भी सीधे आकर उसी रूट से कोई जम्मू कश्मीर तक, कोई हैदराबाद तक पहुंच गया। वो यदि रेफ्यूजी थे तो वो वहीं पे शरण ले सकते थे, उनको जम्मू कश्मीर तक जाने की क्या जरूरत थी, किसने पहुंचने के लिए उनको मदद की। उनके कार्ड्स भी बन जाते थे वहां, बॉर्डर क्रॉस करने से पहले उनको सारे आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट्स बनाने की प्रक्रिया एक चलाने का प्रयास शुरू हुआ, और उसके बहुत सारे नेटवर्क भी भारत के अन्य शहरों से एक्सपोज हुए। क्या हुआ दुर्भाग्य से, 1980 के बाद मुझे याद है उस समय ममता बनर्जी का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट पार्लियामेंट में था 2005 में शायद, और उस समय वो लेफ्ट गवर्नमेंट को और बुद्धदेव भट्टाचार्य को घेर रही थी, और उस समय वो पूछ रही थी कि कब तक इन इलीगल माइग्रेंट्स को वोट बैंक बनाकर अपने लिए पोसोगे। दुर्भाग्य से वही ममता बनर्जी बाद में वही नीति आगे बढ़ाने लगी, तो सामाजिक ताना बाना बिगड़ता है, वहां की सांस्कृतिक स्थिति खराब होती है, वहां के रिसोर्सेस पर अतिरिक्त भार पैदा होता है, और ये इलीगल एक्टिविटीज को बढ़ावा भी मिलता है। तो एक समग्र दृष्टि से आंकड़े अलग अलग होंगे, क्वेश्चन ये है कि पहली बात किस कारण से इसको बढ़ावा मिला, दूसरा उसको रोकने की, तीसरा जो भारत में आ गए हैं उनको आइडेंटिफाई करने की। तो डिटेक्शन इज द फर्स्ट स्टेज, एक्सेप्टेंस एंड डिटेंशन जब तक डिटेक्ट नहीं होंगे उसके बाद तो बाकी सारी प्रोसेस आएंगी कि उनको वोटर्स लिस्ट से डिलीट करना है या डिपोर्ट करना है, ये तो बाद की स्टेज है। उनको वर्क परमिट्स भी दिए जा सकते हैं, लेकिन कम से कम आइडेंटिफाइड हो कि विदेशी मूल का नागरिक है, बिना पासपोर्ट के आया है, और हमारे पास उसका एक ठोस डेटा है। और पूरे विश्व भर में ये होता है, उसमें भारत को अलग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हमने यदि बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये दो अलग अलग बॉर्डर्स पार्टीशन के बाद एक्सेप्ट किए हैं, तो वैश्विक नियमों के अनुसार उनको भारत में आना है तो वीजा लेकर ही आना चाहिए, लीगल तरीके से ही आना चाहिए, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन उसका रास्ता नहीं हो सकता। तो इसके नेटवर्क को डिसमेंटल करना, ये राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर भी एक महत्वपूर्ण विषय है, और मुझे लगता है आने वाले समय में ये जो समिति बनी है वो उस दिशा में एक साल के अंदर समग्र रिपोर्ट भी देगी और इसके आधार पर नीति भी बनेगी।
1: जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि शरणार्थी और घुसपैठियों को अलग अलग तरह से देखना चाहिए, क्योंकि दोनों के साथ अलग तरह की चुनौतियां हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: शरणार्थी और घुसपैठिया दोनों को एक पेज पर रखकर नहीं सोचना चाहिए। जो हमारे संविधान को जानते हैं, जो हमारे इतिहास को जानते हैं, हमारे देश की राजनीतिक इतिहास को जानते हैं, उन्होंने कम से कम ये गलती नहीं करनी चाहिए। हमारा संविधान बहुत स्पष्ट है, घुसपैठ कर आते हो, अलग अलग उद्देश्यों से आते हो, तो आपको जरूर घुसपैठ का लेबल लगेगा और वो लगाना चाहिए शासन में। फिर कुछ लोग दलील करते हैं कि अगर वो भारत में ही रहना चाहते हैं तो हम क्यों सीमित कर दें, कुछ सीमित नहीं करते हैं। इसके लिए भी कानून है, किसी भी धर्म का व्यक्ति एप्लीकेशन करे और एप्लीकेशन करके वैध तरीके से पासपोर्ट लेकर वीजा लेकर आए, हम उनके क्रेडेंशियल देखकर उनको नागरिकता देंगे, ये रास्ता खुला ही है। मगर आप अवैध तरीके से घुसपैठ करोगे तो सीमाएं पोरस नहीं हो सकती, सीमाओं से घुसपैठ नहीं होनी चाहिए और उनको संभालना भी चाहिए।
1: प्रकाश जी, चूंकि इन चुनौतियों को आपने काफी करीब से देखा है और अक्सर देखा जाता है कि सीमा पार करने के बाद जो घुसपैठिए हैं वो स्थानीय आबादी में घुल मिल जाते हैं, सुरक्षा बलों और स्थानीय राज्य पुलिस या खुफिया एजेंसियों के बीच जो तालमेल है उसको आप कैसे देखते हैं इस समस्या के निराकरण में?
3: देखिये, तालमेल तो बहुत जरूरी है, पर मेरा अपना अनुभव यह है कि जो सिक्योरिटी एजेंसी है अगर वो डिटरमिंड है तो इसका बहुत तरह से उपाय है। मैंने एज आईजी बीएसएफ पंजाब कुछ ऐसा काम किया है, इसको 25 साल तक तो उसको गोपनीय रखा मैंने, उसके बाद उसकी किताब में मैंने खोल के रख दिया। बहुत सारे भारी बांग्लादेशी जो थे, भारी मुसलमान बांग्लादेश से चलते थे और वो पंजाब में आ जाते थे और पंजाब में गुरुद्वारों में लंगर खाते थे, फिर जब उनको मौका मिला तो बॉर्डर पार करते थे। अब मेरे जाने के पहले बीएसएफ क्या करती थी, उसको बॉर्डर पे रोकती थी, उनको पंजाब पुलिस को हैंडओवर करती थी, पंजाब पुलिस दो चार दिन रखते थे, उसके बाद कहते थे हम आतंकवाद से लड़ें कि इनको कलकत्ते पहुंचाएं, ये छोड़ दो इनको, फिर थोड़े दिन बाद फिर वो वापस जा रहे हैं। तो मैंने अपने जिम्मे

0: पे बिना किसी होम मिनिस्ट्री के सैंक्शन के चिदम्बरम साहब से जब मैंने पूछा तो उनका यू विल बी डूइंग दिस एट योर ओन रिस्क, आई कैन नॉट परमिट दैट ऑफिशियली. मैंने अपने कहा जितने लोग हैं इनको अपने बीएसएफ के कैंप्स में रात भर रखो और जब अंधेरी रात हो तो इनको सीमा पार से इनको पाकिस्तान भेज दो. मैंने कम से कम 25-30 हजार आदमी तो भेज दिए. इसका उपाय है, हर आदमी अपने लेवल पे काम कर सकता है. मैंने पर इसका ढिंढोरा नहीं पीटा, कोई इनाम नहीं मांगा, इसका ढोल नहीं बजाया, चुपचाप ये काम हो गया. फिर 25 साल बाद मैंने कहा कि मैंने इस तरह का काम मैंने किया था. पर यह है कि अभी भी इस समस्या का देखिए कुछ निदान हमें ढूंढना पड़ेगा. कुछ सुझाव तो गोडबोले साहब ने अपने कमेटी की रिपोर्ट में दे रखा है. मैं कहूंगा कि उस रिपोर्ट को फिर से अध्ययन किया जाए सरकार द्वारा, और जिन समस्याओं के लिए ये डेमोग्राफी कमीशन बन रहा है उन समस्याओं पे गोडबोले साहब ने बहुत गहन चिंतन किया है. इसके अलावा देखिए अभी जैसे प्रफुल्ल जी ने कहा उनको हमें डिटेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करके उसके बाद उनको डिपोर्ट करना है. अब डिपोर्टेशन में दिक्कत आ सकती है, बांग्लादेश उसको नहीं मानेगा तो उसका क्या करना होगा ये हमें बाद में देखेंगे. पर अगर मान लीजिए एक संख्या कोई आपने रखी है जो होल्डिंग सेंटर्स बनाए हैं उनको कहिए कि भाई अगर तुम हिंदुस्तान में रहना है तो हम तुम्हें रहने देंगे पर तुम्हें अपना सिटीजनशिप कार्ड या आधार कार्ड तो सरेंडर करना पड़ेगा और तुम्हें एक बांग्लादेश का एक कार्ड दिया जाएगा कि तुम बांग्लादेश के नागरिक हो, इस देश में तुम्हें 2 साल रहने की और काम करने की इजाजत दी जाती है, 2 साल बाद फिर हम इसको रिव्यू करेंगे कि तुम्हारा क्या किया जाए. और पर इन आदमियों को जिनको ये बांग्लादेश का कार्ड दिया जाता है ये हमारे आई कार्ड से रंग में फर्क होना चाहिए, केवल कार्ड को देख कर ही मालूम हो जाए कि ये बांग्लादेश का ये आदमी. और इस आदमी को दो कंडीशन होनी चाहिए कि तुम हिंदुस्तान में रह सकते हो और अपनी जीविका उपार्जन कर सकते हो परंतु तुम वोट नहीं दे सकते और कोई अचल संपत्ति नहीं खरीद सकते. ये दो कंडीशन उस पर इम्पोज की जाए और उसको सख्ती से लागू किया जाए कि मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीदोगे और तुम्हारा नाम इलेक्टोरल लिस्ट में नहीं होगा. तो इसमें हमें थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन भी रखना पड़ेगा और कालांतर में मैं कहता हूँ कि इस पे हमें बांग्लादेश से सख्ती से कहना पड़ेगा देखिए आपके अभी भी हमारे पास 2.5 करोड़ 2 करोड़ जितना भारत सरकार का आकलन हो ये इतने आदमी है, या तो आप इन्हें वापस लीजिए या इसके बदले में हमें जमीन दीजिए. और वो जमीन हम मांगे ठीक चिकन नेक के अगल बगल रंगपुर डिवीजन में मांगे, हमारा चिकन नेक की समस्या भी हल हो जाएगी और इन आदमियों को हम वहां बसाएं या जहां भी बसाएं, पर हम कहीं इतने आदमियों को रहने के लिए इतने वर्ग फुट हमें जमीन चाहिए, इतनी जमीन आपको देना पड़ेगा, तो सख्ती तो करनी पड़ेगी, या तो इनको वापस लो. तो एक स्ट्रिक्ट लाइन ऑफ एक्शन लेना पड़ेगा हमें और उसकी भी शायद नौबत कालांतर में आएगी. पर यह है कि इस समस्या का हमें निदान ढूंढना है वरना ये तो हमारे ऊपर बोझ है आज की तारीख में.
1: जी प्रफुल्ल सर, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो अवैध रूप से जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं जब स्थानीय श्रम बाजार यानी लेबर मार्केट में शामिल होते हैं तो रोजगार, सब्सिडी, राशन और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे सीमित सरकारी संसाधनों पर इसका जो असर पड़ रहा है वो एक राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए चुनौती है और वो कितनी गंभीर समस्या बनते जा रही है भारत जैसे देश में जहाँ की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है.
2: देखिए आज की भाषा में जैसे कहा जाता है कि डेमोग्राफी इज डेस्टिनी, और डेमोग्राफी इज डेस्टिनी ये मोर रिलेवेंट हो जाता है जब आपकी डेमोक्रेसी हो, क्योंकि उस डेमोक्रेसी में आपको सरकार चुनने का भी अधिकार मिल जाता है और उस सरकार से दिए हुए योजनाओं का लाभ लेने का भी. मैं उस पर आऊंगा लेकिन उससे पहले और एक बिंदु मैं श्रोताओं के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूं.
1: जी
2: 1983 में जो IMDT एक्ट बना जनरल सिन्हा की रिपोर्ट में उस पर बहुत डिटेल में ये दिया था और वेंकैया नायडू उस समय मंत्री थे, मुझे स्मरण है शायद ठीक बता रहा हूं, तो उन्होंने पार्लियामेंट में उसको लेकर स्टेटमेंट भी दिया था, गोडबोले कमेटी ने भी उसका रेफरेंस लिया था. IMDT एक्ट ने एक बहुत बड़ा लूपहोल था. IMDT एक्ट में जो इलीगल व्यक्ति जो आया है वहां से उसको अपनी नागरिकता प्रूव करने का कोई भी बंधन नहीं था. जो कंप्लेन उसके विरोध में करेगा कि ये बाहर से आया हुआ है और ये भारत का नागरिक नहीं है उस पर ओनस था कि वो ये प्रूव करे कि ये भारत का नहीं है. और ऐसे में भारत में स्वाभाविक रूप से मानसिकता होती है और इसने भारत में कॉम्पिटिटिव वोट बैंक पॉलिटिक्स को जन्म दिया. शायद मुझे पता नहीं है जानबूझकर रखा गया था उस समय का उसका क्या लॉजिक था क्या कारण थे, लेकिन इसने इस समस्या को बढ़ाया. अब आपने जो पूछा कि सरकार की योजनाएं हो चाहे वो खाद्यान्न से जुड़ी हुई हो या अन्य योजनाओं का लाभ हो, इन सबके लिए अल्टीमेटली बेनिफिशियरी कौन होता है जिसका हक ये मारते हैं? भारत का जो गरीब तबका है उसके अधिकारों का, उनके रिसोर्सेस का एक तरीके से ये इलीगल माइग्रेंट जो है जो रोजगार के नाम पर या अन्य किसी नाम पर आते हैं. मैं नहीं मानता रोजगार पर, भारत के लोग नहीं जाते क्या रोजगार के लिए बाहर? लेकिन क्या वो इलीगल बाउंड्री क्रॉस करके जाते हैं? बाउंड्री क्रॉस करके जाते हैं तो भी भारत उनको स्वीकार करता है. ऐसी कुछ घटनाएं बाहर के देशों में हुई तो हमने कहा कि भाई हम उनको कोई भारत बढ़ावा नहीं देता है, तो हमको वही नीति हमारे पड़ोसी देशों के बारे में या भारत और नेपाल के बीच में बहुत सारे लोग आते जाते हैं लेकिन उसके लिए भी एक प्रावधान बना हुआ है, एक आई कार्ड दिखाकर वो आते हैं, वर्क परमिट के नाते यहाँ पे रहते भी है। तो मुझे लगता है इसका जो परिणाम होता है वो स्थानिक संसाधनों पर होता है, सरकारी योजनाओं के लाभ लेने के कारण होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा पर होता है, और खास करके असम में जो समस्या आई स्थानिक संस्कृति, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे जंगलों के, और अभी पूर्वोत्तर के बहुत राज्यों में ये आ रहा है जहां पे भारत के सामान्य व्यक्ति को भी जाने के लिए एक परमिट लेना पड़ता है, इनर लाइन परमिट जिसको कहते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां पर आकर बैठ गए हैं, वहां के जंगल संसाधनों का नुकसान कर रहे हैं। तो ये हमारा मल्टीपल रिसोर्सेस का एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन भी है, उन पर स्ट्रेन भी है। तो मुझे लगता है कि ये भी डायमेंशन हमको, जब हम रिलीजियस इम्बैलेंस तो है ही, वो इम्बैलेंस क्रिएट होता है जिसके कारण समाज में एक तनाव पैदा होता है, लेकिन सांस्कृतिक और आर्थिक साधनों के आधार पर भी ये घुसपैठ बहुत बड़ी समस्या सीमावर्ती क्षेत्र में बनी हुई है जिसके कारण इस समिति का गठन करना पड़ा है।
1: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने भी कहा है कि बाहर से आए हुए लोग देश की समस्या के साथ साथ असम के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
3: I think challenge has become more grave that demographic pattern is changing fast. Today almost 40% of our total population will be from those who has come from Bangladesh at some point of time. Legalities apart, today Assamese is marginalized in our own land. Our culture is marginalized in our own land. Economy is fast shifting to those people who were never associated with our culture and with our history. So the challenge continue, but one good thing is that there is a collective spirit today to face the challenge, and I am sure that our new generation will fight, will keep on fighting, and God will bless us, will survive.
1: प्रफुल्ल जी, आप बहुत समय से भारत के अलग अलग विषयों पर पैनी नजर रखते हैं। ये जो समिति बनी है और प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले के प्राचीर से इसकी घोषणा की थी, क्या लगता है कि इस समिति के बनने से क्या कुछ बदलने वाला है निकट भविष्य में?
2: देखिए, मुझे इसमें सबसे बड़ा जो बदलाव लग रहा है बंगाल के चुनाव के बाद, मुझे लगता है एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन से भी ज्यादा इसमें अलग अलग स्टेट्स की कोऑर्डिनेशन की बड़ी समस्या रहती थी। बांग्लादेश से एंटर कर रहे हैं असम में जा रहे हैं, असम से एंटर कर रहे हैं बिहार तक पहुंच रहे हैं या झारखंड तक पहुंच रहे हैं, और ऐसे में फिर एक राज्य दूसरे राज्य पर ये चीज झकेल देता था कि ये तो हमारी समस्या नहीं है, ये तो आपको रोकना है, और फिर ये वहां का राज्य ये केंद्र पर कि ये तो आपको बीएसएफ के लेवल पर हैंडल करना चाहिए, लेकिन बॉर्डर की जो लैंड है वो पोरस रखेंगे, उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे बीएसएफ को। तो ये सारा कॉम्प्लेक्स सिनारियो था। आज अभी राजनीतिक स्तर पर मुझे लगता है प्रधानमंत्री ये निर्णय ले पाए, उसमें एक महत्वपूर्ण कारण आज ये है कि इस सीमावर्ती क्षेत्र में झारखंड छोड़कर लगभग सारे हिस्सों में सत्ताधारी दल एक ही है, और या वो एनडीए का हिस्सा है या भाजपा से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में ये समन्वय, ऐसे ही हुआ था नक्सलवादी समस्या के बारे में, तुरंत बॉर्डर क्रॉस करके चले जाते थे, और फिर छत्तीसगढ़ का ये कहता था नहीं मध्य प्रदेश की समस्या है, मध्य प्रदेश वाला कहता था तो उसने क्राइम तो हमारे यहाँ पे नहीं किया है, वो तो महाराष्ट्र भाग गया है। तो ऐसे में पहली मीटिंग जब की थी गृहमंत्री, मुझे याद है चारों राज्यों के गृहमंत्री और डीजीपी को लेकर मीटिंग की थी। अब ये समन्वय संभव हो पाएगा केंद्र सरकार ने जब ये समिति बनाई है, तो मुझे लगता है समिति एक तो इसका समग्रता से अध्ययन करेगी, पिछले रिपोर्ट्स के आधार पर इसका एक, जिसको हम कह सकते हैं, क्लियर पिक्चर इसके कारण सामने आएगा। दूसरा, मुझे लगता है कि इसके समस्या के निराकरण के लिए भी नीतिगत सीधा सीधा एक, मुझे लगता है कि क्लियर कट पिक्चर सरकार के सामने भी आएगा कि नीतिगत विषय में इसको आगे कैसे बढ़ाना है, और समन्वय के नाते कौन कौन सी एजेंसीज की क्या क्या भूमिका रहेगी, ये भी स्पष्टता इस समिति के गठन के कारण आने की संभावना है। तो आने वाले जैसे शब्द तीन चले, डिटेक्ट डिलीट एंड डिपोर्ट, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम डिटेक्शन और आने वाले कालखंड में इसको फिर से और आगे ना बढ़े, ये इलीगल माइग्रेशन ना बढ़े, जो है उनको डिटेक्ट करके क्या करना है वो तो है ही, लेकिन वो ना बढ़े इसके लिए क्या हो, इसके लिए निश्चित रूप से हमको एक नीतिगत दिशा मिलने की संभावना इस समिति से बनेगी, यह मेरा विश्वास है।
1: जी हाँ बिल्कुल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल अगर होगा तो इस चुनौती से पार पाया जा सकता है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
4: सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा कर हम देश की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते, हमने क्षेत्रीय सुरक्षा का राज्य सरकारों के साथ रहकर चिंता भी करना पड़ेगा और वो जिम्मेदारी का निर्वहन भी करना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि सीमा से नजदीक 50 किलोमीटर के किसी भी गांव में कोई अवैध निर्माण होता है तो हम सिविल प्रशासन को सूचित कर, कलेक्टर को सूचित करें, एसपी को सूचित करें। हमारी जिम्मेदारी है कि 50 किलोमीटर की बॉर्डर तक के सभी गांवों में जनसांख्यिकी का परिवर्तन हो रहा है, कृत्रिम परिवर्तन हो रहा है, तो उसके प्रति सजग रहकर राज्य सरकार को आगाह करें।
1: प्रकाश जी, एक और सवाल आपसे समझना चाहेंगे कि 2014 के बाद इस समस्या को लेकर वर्तमान केंद्र सरकार ने बहुत सारी कोशिशें की हैं और उसी दिशा में इस समिति का गठन भी है। कैसे देखते हैं पिछले 12 वर्षों के मौजूदा सरकार के प्रयासों को घुसपैठियों और ये जो डेमोग्राफिकल चेंज है इससे पार पाने की दिशा में?
0: देखिए, समस्या की गंभीरता को समझा गया है, उसको स्वीकारा गया है और उसके निदान के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं, ये तो यहाँ तक तो सार्थक है। अब हमें अपनी लॉ एनफोर्समेंट मशीनरी से ये काम लेना पड़ेगा और ये काम मतलब वर्तमान सरकार लेने में सक्षम है। उन्होंने नक्सलियों को कहा कि हम मार्च 2026 तक खत्म कर दें, उन्होंने खत्म कर दिया, ठीक है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इस समस्या के लिए भी उनको कुछ टारगेट रखना पड़ेगा और इसकी मंथली, ईयरली या क्वार्टरली कुछ इसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। हम पहले ये एस्टिमेट बनाए कि हर स्टेट में कितने कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उसके बाद हर स्टेट पे कहें कि इस महीने में आपने इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की, इनको कितने को डिटेक्ट किया, कितने होल्डिंग सेंटर में है, किनको डिपोर्ट करने के लिए क्या कार्रवाई की, इसका रेगुलर मॉनिटरिंग होनी पड़ेगी। इसमें सख्ती बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ कि वर्तमान सरकार करने में सक्षम है, इन्होंने नक्सल समस्या पे विजय पा ली है, तो इस समस्या का भी ये समाधान प्रभावी ढंग से ढूंढ सकते हैं। इसके लिए सख्ती करनी पड़ेगी और मैं समझता हूँ कि सरकार ये सख्ती कर सकती है।
1: प्रफुल्ल जी, कार्यक्रम के अंत में एक और सवाल बहुत संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे कि आज के दौर में जब सोशल मीडिया का जमाना है तो सोशल मीडिया और फेक डॉक्यूमेंट नेटवर्क, आपको क्या लगता है ये घुसपैठ को बढ़ाने में कितनी भूमिका निभा रहे हैं?
2: देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि इसके जुड़ी हुई एक इकोनॉमी है, ये केवल फेक डॉक्यूमेंट नेटवर्क नहीं है, ये फेक करेंसी नेटवर्क है, ये ड्रग ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है, इसमें आर्म्स के ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है और एक क्रिमिनल सिंडिकेट के रूप में ये काम करता है। तो मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से जिम्मेदार है और आज के जमाने में सोशल मीडिया इसको एम्पलीफाई करता है ह्यूमैनिटेरियन के नाम पर। जैसे ही ऐसी कुछ केसेस होती है, डिपोर्टेशन के लिए कुछ बात बढ़ती है तो सोशल मीडिया में एक्टिविज्म चलता है, राजनीतिक कारणों से भी चलता है, कुछ धार्मिक कारणों से भी चलता है, कुछ इंटरनेशनल कॉन्स्पिरसीज के द्वारा भी चलता है। तो ऐसे में एक बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी देश के लिए किसी भी इलीगल माइग्रेंट्स के विरोध में सख्त कदम लेना। और आज जब टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग एक अच्छा उपयोग हो सकता है गवर्नेंस में आइडेंटिफाई करने के लिए, चाहे सीसीटीवी कैमरेज के रूप में, चाहे सेंसर्स के रूप में, हम बहुत सारी चीजों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये सिंडिकेट्स डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मुझे लगता है कि जब अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज के बारे में सोचा जाएगा तो इसके टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, मीडिया एक्टिविज्म के एस्पेक्ट्स और अन्य जो इससे जुड़े हुए सिंडिकेट और क्रिमिनल एस्पेक्ट्स है, इस पर भी मुझे लगता है ये समिति सोचेगी भी और उस पर कुछ उपाय योजना भी सरकार को बताएगी।
1: सीमाओं की सुरक्षा सिर्फ जवानों की जिम्मेदारी नहीं होती, ये पूरे राष्ट्र की सामूहिक चेतना का विषय है। जनसंख्या परिवर्तन और अवैध घुसपैठ जैसे मुद्दे केवल आंकड़ों की बहस नहीं है, इनका सीधा संबंध देश की सामाजिक स्थिरता, आर्थिक संसाधनों और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से है। आज की चर्चा ने यह साफ कर दिया है कि चुनौती केवल सीमा पार से आने वालों की नहीं बल्कि उस सोच की भी है जो राष्ट्रीय हित से ऊपर व्यक्तिगत और राजनीतिक लाभ को रख देती है। जरूरत है सजग नीति की, मजबूत सीमा प्रबंधन की और सबसे बढ़कर जागरूक समाज की। प्रफुल्ल केतकर जी आपका, प्रकाश सिंह जी आपका, आकाशवाणी के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
5: चर्चा का विषय है।

आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है आपके भेजे गए पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत।

मन चाहे गीत सुन रहे सभी श्रोताओं को आपके दोस्त शशि का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, लेकर हाजिर हूँ आपके भेजे गए खत और उनमें बसी कुछ फरमाइशें।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीत अभी आपने सुना फिल्म तीसरी मंजिल से। गीत मजरू सुल्तानपुरी का था, संगीत आर डी बर्मन का। पसंद आप सभी की पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप और आरजू जाजोरिया। मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से खत लिखा अभिजीत गौहणकर राही, सरिता और प्रिंस एकांश गौहणकर ने। बहादुरा नागपुर से फरमाइश भेजी वैशाली शैलेश गौहणकर, श्वेता सुमित गौहणकर और ध्वनि गौहणकर परी ने। बदलापुर मुंबई से आप हैं सिद्धांत गौहणकर, प्रणीता गौहणकर। धामणी मानीरा से खत लिखा है पेंटर तुलसी राम डेरे, मायावती डेरे, अमोल डेरे, संदेश डेरे, आदेश डेरे, किरण डेरे, प्रज्वल दादुल्या और सभी डेरे परिवार। वाशिम से खत लिखा है वच्छल भाई, राजेंद्र, राखी और यंदा नगराले। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन से इसी गीत को सुनना चाहता जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार ने। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से चिट्ठी लिखी गुरविंदर सिंह पांथा, इंद्रजीत कौर, मनमीत और मनविंदर सिंह पांथा ने। कार्यक्रम में अगले गीत के लिए मैं फरमाइश लिख भेजी है पुणे से पंकज वाड़ोदे, आर्या प्रियंका ने। जरूड़ वरूड़ से आप हैं बाबा साहेब वाड़ोदे, मीनाक्षी, रजनी, कानीरे। मुकाम हिपरसोगा तालुका ओसा जिला लातूर से आप हैं उस्मान शेख फौजी, सायरा बानो शेख, दस्तगीर शेख, फैजनबी, शाकिर इस्लामबी, बाबा शेख, करिश्मा शेख, सिमर शेख, सानिया शाकिल पठान, बिस्मिलाबी शेख, गदर शेख और नीलोफर शेख। हिपरसोगा तालुका बिलोली जिला नांदेड़ से खत लिखा है चांदनी अयूब सैयद, बाल राजे अमन सैयद और माहिरा सैयद ने। डबवाली हरियाणा से फरमाइश भेजी है जेके बोकोलिया, सुनीता बोकोलिया, संजय, अनिल और मीनू बोकोलिया ने। अनारकली बाजार जगराऊं से आप हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, गाव्या और सुच्चा पाठक। रिंगनी छत्तीसगढ़ से खत लिखा दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने। आप सभी ने सुना चाहा है आशा भोसले की आवाज में जुअल थीफ का गीत। गीत मजरू सुल्तानपुरी का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

मनचह गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से चिट्ठी लिखी है हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयदत्त बिरक और मीका बिरक ने। सूर्यवाड़ी औरंगाबाद से आप हैं प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा, प्राजक्ता, प्रांजलि और सोहम बोरगांवकर। और ये खत लिखा है जलगांव सोमनाथ जिला जालना से। लिखने वालों के नाम है डॉक्टर नामदेव भूतेकर, अभिषेक भूतेकर, गणेश, कार्तिक, अश्विनी भूतेकर। औरंगाबाद से आप है वैष्णवी जगदाले और हरसुल सावंगी। औरंगाबाद भाव सिंहपुरा औरंगाबाद से आप हैं वैभव गौरव लोखंडे। और बदनापुर से चिट्ठी लिखी है मेघराज युवराज कोलते, रिधोरा देवी, रुद्र कोलकर और आप सभी ने। और ये खत लिखा है कन्या विद्यालय मानोरा जिला वाशिम से। लिखने वालों के नाम है डॉक्टर विशाल कवाणी, तुलसीराम कवाणी, ललिता पायल और पीयूष कवाणी। मुक्तसर से आप हैं बब्बू सिंह धीमान, बलजिंदर कौर धीमान, रवनीत और निशु। सीताराम बाजार पुरानी दिल्ली से चिट्ठी लिखी है नरेश देवी ने। आप सभी ने सुनना चाहा है महेंद्र कपूर की आवाज़ में गुमराह फिल्म का गीत। गीत साहिर का है, संगीत रवि का।

आपके भेजे गए पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। गांव गोविंदगढ़ माजीवाला श्री कर्णपुर राजस्थान से चिट्ठी लिखी है राजू टूटेजा, खुशदिल, उर्मिला, गुड्डू, जीनू, मन्नू, आदित्य, भूमि, राखी, अमृत वडवाल, शिव सेठी, कर्णपुरी और स्माइल टूटेजा ने। गांव नथाना पंजाब से खत लिखा हरजिंदर छिंदा, जसवीर, रेखा, गगन, सोनी, सीता और गीता। डीएलएफ कॉलोनी रोहतक से फरमाइश भेजी है महेंद्र शाह, हरेंद्र शाह, जितेंद्र, मानसी, हर्षित, हिमांशु, वंशिका, ज्योति बत्रा, मयंक शाह, कार्तिक और गौतम शाह ने। छत्रपति संभाजीनगर से आप हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। मॉडल टाउन करनाल से फरमाइश लिख भेजी है सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, सुनीता जैन, सुनीता शर्मा और नरेंद्र तनेजा ने। आप सभी ने सुना चाहा है हिमालय की गोद में, इस फिल्म का गीत मुकेश की आवाज़ में। गीत कमर जलालाबादी का है, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

मन चाहे गीत सुन रहे हैं आप आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से चिट्ठी लिखी है ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय ने। दुबीहा निवादा गाजीपुर से आप हैं प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय। चंडीगढ़ से खत लिखा है सतीश अनेजा और विमला अनेजा ने। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरिंगी से आप हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार वर्मा। गांव बलियाली जिला भिवानी हरियाणा से आप हैं दर्शन लाल बंसल, सुदेश रानी, प्रवीण, ममता, कमल और साथ ही गर्विश और तमन्ना बंसल। आदर्श नगर मलोट से चिट्ठी लिखी है राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शाइना और निवान शर्मा ने। आप सबको आपकी पसंद पर सुनवा रहे हैं जब प्यार किसी से होता है फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत हसरत जयपुरी का है, संगीत शंकर जयकिशन का।

बेरड़ी से चिट्ठी हमें लिखी है हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक प्राची और तन्नू करमरकर ने। नया पारा भिरई से आप हैं बसंत कुमार सूर्यवंशी, सरोज, ईशर राज, चंद्रकांत, प्राची और टीयूषी सूर्यवंशी। प्रमिलागंज अलूट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से खत लिखा है बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश और ऋषि वर्मा। छत्तीसगढ़ बेमेतरा से आप हैं पूर्णिमा सारथी, पूजा, आरती, भव्या और सुषमा सारथी। नवागढ़ कटाई से आप हैं नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा, शारदा और दामिनी वर्मा। और ये चिट्ठी हमें लिखी है भटिंडा रोड डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग ने। खुर्जा उत्तर प्रदेश से खत लिखा तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन और अंकुश अरोड़ा ने। आप सबको आपकी पसंद पर सुनवा रहे हैं तीसरी कसम फिल्म का गीत। गीत शैलेंद्र का लिखा है, आवाज लता मंगेशकर की है, संगीत शंकर जयकिशन का।

आपके फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत आप सुन रही हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। गोला बाजार बक्सर से चिट्ठी लिखी है श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित ने। अलीका डबवाली से आप है बसंत सिंह चन्न, राजकुमार, सुनीता और कुलदीप गांधी। चकला बाजार सामाना से खत लिखा है पप्पू राजा खुशदिल, संगीता जिंदल, हसमुख जिंदल और समस्त खुशदिल परिवार ने। महादेव घाट अमलेश्वर से फरमाइश लिख भेजी है डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी, सूरज, सुजला, ज्योति और रियांश ठाकुर ने। गांव कैरों जिला तरन तारण पंजाब से आप हैं गुरदर्शन लाल चरोत्रा, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहत और गुरशब्द। आप सबने सुनना चाहा है मेरे सनम फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत मजरू सुल्तानपुरी का है, संगीत ओपी नैयर का।

मनचाहे गीत कार्यक्रम में ये अगली चिट्ठी हमें मिली है कैथल से। लिखने वाले श्रोता का नाम है सागर। ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से आप हैं मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकी पवार, मोहम्मद हसनैन पवार। बाजार चौक ग्राम दीवाल से शंकर लाल गंगराड़े, वनीता गंगराड़े, छोटू, पूजा, रोशनी, अजय और वामिका गंगराड़े। ग्राम छैगांव देवी से जिला खंडवा से अशोक कुमार वाघे, वंदना वाघे, भूपेंद्र, झावर, तनुश्री, आरोही और कान्हा वाघे। मलोट पंजाब से आप हैं राजकुमार इंदौरा, बिमला इंदौरा, गैरी, विकास, प्रियंका, रमन, रितु, भविंश, मिशेल, किंशुक और दीपांशी इंदौरा। और ये खत हमें मिला है संबलपुर कांकेर से। खत लिखने वालों के नाम हैं फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी, इशिका और तेजल यादव। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से आप हैं गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत और मनविंदर सिंह पांधा। आप सभी ने सुनना चाहा है तेरे मेरे सपने फिल्म का गीत। आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से खत लिखा है राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, अनिष्का और तन्मय गजभिये ने। वैष्णव कॉलोनी सनावत से आप हैं मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमश खत्री, रमेश गौड और मोहम्मद शादाब खत्री। ताज मंच से आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से आप हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां। महाराष्ट्र हिंगोली से खत लिखा है शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे, उत्तम जमदाड़े और स्वराज जमदाड़े ने। आप सभी को आपकी पसंद पर सुनवा रहे हैं मुबारक बेगम और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में हमराही फिल्म का गीत। गीत हसरत जयपुरी का है, संगीत शंकर जयकिशन का।

आपके भेजे गए पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत आप सुन रही हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से चिट्ठी हमें मिली है विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू और धनक्ष आरु साहू की। राजनगर मधुबनी से आप हैं कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, शारदा गुप्ता, रंका रानी, मौसम गुप्ता, संगीता गुप्ता, रुद्र गुप्ता, रिद्धि गुप्ता। ऐशबाग पीली कॉलोनी लखनऊ से हैं मुकेश गुप्ता, रानी गुप्ता, कुसुम गुप्ता, पलक गुप्ता और पंखुरी गुप्ता। राजनगर गांधी चौक कांति निकेतन से खत लिखा है मंजीत गुप्ता, सोनाली गुप्ता, सूर्यांशी गुप्ता, कोमल गुप्ता, मीनका गुप्ता, माधवी, साध्वी, तन्मय राज और गुनगुन ने। जामभ्रून अर्धापुर से आप हैं दुर्गादास जोशी, गंगाधर जोशी, गजानन जोशी, संजय, आशीष, पृथ्वीराज जोशी, साध्वी जोशी परभणिहुन और गणेश हारगांवकर। आप सबको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर लता मंगेशकर का गाया गीत फिल्म नागिन से। गीत राजेंद्र कृष्ण का है, संगीत हेमंत कुमार का।

मन चाहे गीत कार्यक्रम में ये चिट्ठी हमें लिखी है गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से। लिखने वालों के नाम हैं बबलेश पंवार, डैनी पंवार और मनीष। और ये ख़त हमें मिला है गौतम नगर नांदेड़ से। लिखने वालों के नाम हैं प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले। आपने सुनना चाहा है दुलारी फिल्म का गीत। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की। गीत शकील बदायूनी का है, संगीत नौशाद का।

इस गीत के साथ ही अपने दोस्त शशि को दीजिए इजाजत कार्यक्रम मन चाहे गीत संपन्न करने की। आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर। रात के 11 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में उसके बाद अंग्रेजी में, हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में आज 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों को तेजी से पूरा करने को कहा। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपये लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत SIR कराने का अधिकार रखता है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
0: असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है। राष्ट्रपति ने ईद उल जुहा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि यह पर्व समर्पण, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर जरूरतमंद वरिष्ठजन और बच्चों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। रात के 11:10 और 7 सेकंड हुए हैं।